आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

रेडियो FM ग्रीन आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: लोग धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखार पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा।
2: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
3: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो

0: बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इन लोगों की इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
1: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
1: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
0: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30-40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15-20% होती है एवं पोटाशियम का 60-70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है जो 1-5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा और तो हमारी जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
1: जी, तो मैम अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
0: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है। तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा। तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
1: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी, बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो

0: विकसित कर चुके हैं, जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा भी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि है, या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके के पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको, उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग, तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर उन अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था। तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीक है, तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है। नानो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक तक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीज़ें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे, लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद उमा आपको।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात।

0: रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
4: हर घर सूर्यघर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर

एक किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड नेम, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाए और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से

समय से पहले दूर चली जाती है, तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है, और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को, या फिर कुछ तरह की अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं, जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है, और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है, और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है, और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो, आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है, और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, नींद आने में
परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर

मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से यह नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, या आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें, और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचें।
तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि

0: 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं खरीफ तिल के बारे में, किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम आप हैं अनुवांशिकी पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
6: तो मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि खरीफ में तिल की खेती क्यों करनी चाहिए?
7: जैसे आप जानते हो कि खरीफ एक ऐसा सीजन है जहाँ पे आप सबके दिमाग में खरीफ सुनने के बाद सबसे पहले आता है कि हम राइस की खेती, पैडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वैसे किसान भाई जिनके पास राइस लगाने के बाद, पैडी लगाने के बाद कुछ ज़मीनें बच जाती हैं, या कुछ वैसे इलाके बिहार के जो पूरे खरीफ में लगातार वर्षा नहीं हो पा रही है, मतलब आप कह लो वहाँ पे रेनफेड कंडीशन है, उनको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वैसे जगह के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप तिल को भी एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तिल बेसिकली आप देखोगे कि ये कम पानी में बहुत अच्छा पैदावार देती है, आप इसमें देखोगे तो तेल की मात्रा 45-50% होती है। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं तिल की, काले और सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल में जैसे आप देखोगे कि उसकी हम बहुत प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे तिलकुट बना सकते हैं, तिल पट्टी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं।

0: हैं, तो इन्हीं विषयों की वजह से आप देखोगे कि जो तिल है हमारा वो खरीफ सीजन में एक प्रमुख तिलहनी क्रॉप के रूप में इसको हम ले सकते हैं।
1: तो मैम, तिल की खेती के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है?
0: बिल्कुल, जैसे आप देखोगे तिल तिल बेसिकली गर्मा तिल भी लगाते हैं, खरीफ में भी लगाते हैं। खरीफ में भी आप देखोगे कि नॉर्मली खरीफ में बिल्कुल टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता जाता है। आप देखोगे 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है पूरे खरीफ सीजन में, तो ये एक उपयुक्त तापमान है। उसके बाद आप देखोगे कि जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो हमें इसमें एक आप कह लोगे कि एक तरह की बलवाई दोमट मिट्टी चाहिए जिसमें कि पानी का रुकाव ज्यादा ना हो सके, तो इस प्रकार की मिट्टी है। और जहां पे आप देख लोगे सिंचाई की प्रबंधन सिंचाई करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, आप सिर्फ बारिश के पानी पे भी आधारित हो, और वैसे कुछ इलाके जहां पे कम बारिश हो रही है वहां पे इस फसल को आप ऑप्शन के रूप में ले सकते हो।
1: और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
0: हाँ, खेत की तैयारी की बात जैसे आप करें तो देखो, आप बीज इसकी बहुत छोटी होती है, बिल्कुल, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि ऐसे छोटे बीज किस्म वाले फसलों के लिए जो आपकी मिट्टी होनी चाहिए, हाथ में जैसे आप उठा के देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम रेतीला भुरभुरा होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले एक बार आप मिट्टी को कल्टीवेटर जो आता है जिसको आप हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दें पहले एक बार, उसके बाद लगातार से 2-3 बार आप हैरो या कल्टीवेटर लगा करके बिल्कुल से कर दे। एक बार पहली गहरी जुताई हो गई, फिर 2-3 बार हमने कल्टीवेटर चला दिया, उसके बाद अंतिम जुताई जब हम पाटा लगा करके उसको प्लेन समतल करते हैं, उसके बाद आप हाथ में मिट्टी उठा के देखोगे जब भुरभुरा हो गया है तो अब आपका खेत तैयार हो गया है तिल के लिए।
1: मैम, जब हम खरीफ तिल की बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती है?
0: बिल्कुल, जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोगों ने खरीफ और समर में जब हमने सर्वे किया तो जो जो आपका किसान है उनके लिए सबसे पॉपुलर वैरायटी जो हमने उनके खेत में जाकर के देखा वो हमारी GT5 थी, GT6 है जो हमारी सफ़ेद तिल है, GT10 है और कृष्णा ये हमारी काली तिल की वैरायटी है। उसके अलावा हमारा जो प्रगति जो किसान MTU 75 के नाम से मार्केट में खरीद के लाते हैं ये भी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, शेखर हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, फिर TKG 22 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, और RT 351 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है। तो मतलब आप देखोगे अमूमन यहाँ जो हमारा बिहार का इलाका है मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से किसान का जो रुझान रहता है वो आपका सफ़ेद तिल की तरफ ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत काले तिल के।
1: तो मैम, अब बात करते हैं बुआई की, बुआई कब करनी चाहिए और बीज की दर क्या होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, जब हम बुआई की बात करें तो जैसे हमारा आपका जून शुरुआत हो गया तो जून के 15 दिन आप अपने खेत की तैयारी में लगा दो, उसके बाद 15 जून से 15 जुलाई का जो महीना होता है जो आप बोलते हो कि सही समय पे बुआई, ठीक है, ये बिल्कुल सही समय है तिल की बुआई करने का। किसी वजह से अगर सपोज आपका जून से जुलाई के बीच में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर बारिश बार बार आ रही है तो आप क्या कर सकते हो 10-15 दिन पीछे भी जा सकते हो, 15 जुलाई से आप कह लो 16 जुलाई से 20 जुलाई 25 जुलाई तक भी आप अपनी फसल को ले जा सकते हो। और जहां तक बीज की दर की बात हुई तो हम 4 से 5 kg पर हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ इसमें कतार से कतार की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और गहरा एक तो छोटा छोटा बीज होता है तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ऊपर सतह पे छोड़ नहीं सकते हो, कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर उंगली से देख लोगे, उसके नीचे जाकर के फिर मिट्टी से ढकोगे। और सबसे बड़ी बात है जब भी आप बुआई करें ना तो हमेशा कतार में करें, बिल्कुल ऐसे छीट देने से ब्रॉडकास्टिंग करने से ना वो उपज नहीं मिलती है आपको बाद में कुछ एक्टिविटीज करने में, जैसे आपको वीडिंग करना है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो गए, कुछ भी करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है।
1: और मैम, कई बार हमें लगता है कि बीजोपचार नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या बीजोपचार करना जरूरी होता है?
0: बिल्कुल, बीज उपचार करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं गर्मी में ना कि हमारे पर्यावरण का जबकि मिट्टी का भी तापमान कुछ बढ़ा हुआ होता है, तो उस तरह की जो मिट्टी के तापमान होती है तो उस केस में हमारे जो कीट हैं मकोड़े हैं जो हमारे डिजीज है उत्पन्न करने वाले कुछ मक्खियां हैं तो वो उस समय उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब हम खरीफ की बात करें तो बिल्कुल ये एकदम एक हमारा डिजीज ट्रायंगल आपने सुना होगा, होस्ट पैथोजन और इन्वायरमेंट, ये तीनों बिल्कुल

0: बिल्कुल. अब जैसे हम ही हम लोगों को ही हम लोग तभी तक एक्टिव हो सकते हैं जब हम भोजन ले, तो वैसे ही खाद की बात जब हम करेंगे तो पौधों के लिए ये एक भोजन है. चलो मिट्टी में जितना हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम है वो तो रूट के रूट से पौधों में जा रहा है, लेकिन हमें बाहरी जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर होता है वो भी देना आवश्यक होता है. तो अगर हम देखा जाए तो जैसे हमने शुरू में जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो कुछ लोग उसी में गोबर या FYM लगा करके ही जुताई पाटा लगवा देते हैं. उसके बाद जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो आप कह लो कि नाइट्रोजन 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस आपका 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर आप डाल सकते हो. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारा यहाँ पे 40 केजी जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसको हम एक बार तो शुरुआत में डालें, और एक बार जब पौधा हमारा कुछ एक महीने का करीब हो जाए, 1 से 1.5 महीने का, तब हम दूसरी बार भी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा तिलहनी फसल है, ऑयल सीड. इसके लिए सल्फर का कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑयल का यील्ड, ऑयल का कंटेंट ज्यादा होगा. तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिप्सम जो है 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका यूज कर सकते हैं, ताकि क्रॉप में जो उच्च तेल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बराबर बरकरार रहे.
1: मैम, खरपतवार कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: बिल्कुल, इसमें जैसे आपको मैंने बताया, जैसे आपने बुआई करी 7 से 8 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन हो जाता है, और बिल्कुल आपके सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उतने जैसा छोटा छोटा पौधा होता है. इस समय तो आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हो, तो आपको ठीक जब से आपने बुआई की है ठीक उसके 20-25 दिन के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहली निराई और गुड़ाई का. ठीक है, 15 से 20 दिन में सबसे पहली. उसके बाद है कि जब पौधा कुछ थोड़ी दिन और हो जाए, मतलब पहली निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद फिर से आप 30 से 35 दिन के बाद आप दोबारा से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं. इससे ये हुआ कि आपस में जो पौधे हैं जैसे आपने अगर एक लाइन में कतार की जो बुआई मैंने बोला जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, तो एक ही पौधे आसपास में 3-4 पौधे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको आप हटाओगे, और उसके बाद जो आप जितने भी खरपतवार हैं उनको हटाओगे तो सरफेस पे पूरा अच्छे तरीके से पौधे तक धूप जाएगी. उसके बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से अब्सॉर्ब होगा और आपका जो पौधा है वो बहुत हेल्दी होगा.
1: मैम, खरीफ तिल के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं?
0: बिल्कुल
1: जी मैम, और इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? हाँ,
0: जैसे आपको मैं बताऊं कि खरीफ में जैसे एक तो आप सबसे बड़ी देख लो, खरीफ तिल के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि किसान भाई ये ध्यान देंगे कि जो हमारा तिल है ये एक ऐसा तिलहनी फसल है कि जहां पानी जमा हो गया आपके खेतों में तो बिल्कुल आप देखोगे कि पौधा जो है बिल्कुल झुक जाएगा और एकदम ऐसे अधमरा सा झुलसा हुआ हो जाएगा. बिल्कुल आप जैसे देखोगे जैसे इसमें झुलसा रोग लगती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं. तो आप एक बार पहले देखोगे, कोई भी दवाई डालने से पहले देखोगे कि या तो बारिश की वजह से खेत में जल जमाव तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से पौधा जो है हमारा वो पीला पड़ गया है, उसमें झुलसा रोग की तरह कुछ निशानियां दिख रही हैं. तो ये कंफर्म करने के बाद ही आप जो भी प्रमुख दवाई हैं वो डालोगे. उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं फाइलोडी डिजीज, तो फाइलोडी जो गुम्मा बीमारी है वो आपका हमारा गर्मा में और खरीफ में दोनों में होता है. ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि खरीफ में नहीं होता, गर्मा में अपेक्षाकृत गर्मा में ज्यादा होता है, बट खरीफ के मौसम में वैसे इलाके जहां पे आपको लगातार 2-3 दिन बारिश हुई उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है 25 से 30 डिग्री, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर आप देखोगे कि 8-10-15 दिन के बाद फिर बारिश हो जाती है. तो ये जो जिस तरीके का जो से भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के इस तरीके का टेम्परेचर और क्लाइमेट का सिनेरियो बनता है वहां पे आपको गुम्मा बीमारी देखने को मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद कुछ आप देखोगे कि जब पौधा हमारा बन गया उसमें फलियां बनने लगी तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वेबर की तरह होते हैं जो पत्तियों में छेद कर देते हैं, कभी कभी कैप्सूल बनने के बाद कैप्सूल में भी छेद कर देते हैं. तो ये कुछ प्रमुख रोग और कीट हैं जो आप खरीफ तिल में आपको देखने को मिलेंगे.
1: मैम, अब बात करते हैं कटाई और भंडारण की. भंडारण का और कटाई का सही तरीका क्या है?
0: बिल्कुल, जैसे आप किसी भी फसल को आप देखो तो आप जाते हो जब देखते हो कि पौधा हरे से थोड़ा पीला पड़ गया, सूखा पड़ गया,

0: जैसे आप खेत में पहुंचो और देखो तिल के पौधे जो हैं आपके पीले पड़ गए हैं और पत्ते झड़ने लग गए हैं, और देखोगे इसमें जो जो फूल बनती है ना वो एक बार में पहले नीचे बनती है, नीचे से होते होते ऊपर की तरफ जाती है, तो नीचे की जो फूल हमारे पहले बन जाती है उनमें हमारा जो कैप्सूल होता है वो पहले बन जाता है, तो वो ज्यादा सूख जाता है, झड़ जाता है। तो अगर अभी तक इसमें कोई मशीनी कटाई का कोई इस तरीके का हमारे पास कोई प्रयोग अभी नहीं हुआ है और कोई उस तरीके की हमारे पास कोई मशीन भी नहीं है कि हम मशीन से एक ही बार में कटाई कर ले, क्योंकि इसमें जो पौधे में फलियां हैं वो नीचे में पहले पक के तैयार हो जाती हैं, ऊपर लेट से तैयार होती हैं। तो या तो आप देख लो, या तो आप मैनुअली उसको जो पक के तैयार हो गई हैं उनको एक एक करके आप निकाल लो, और नहीं तो अगर उस तरीके से देखो आप कि अगर मध्य जो पौधे का मध्य भाग है और निचला भाग है वो पूरी तरीके से पत्तियां सूख गई हैं, पीला पड़ गया है, तो आप उनको काट सकते हो। काटने के बाद आप छोटे छोटे बंडलों से रस्सियों से बांध करके छोटा छोटा बंडल बना ले। बंडल बनाने के बाद उसको कहीं ऐसे जमीन पे ऐसे नहीं डाल देंगे, क्योंकि देखो आप जान रहे हो कि खरीफ का सीजन है, कि अगर आपने जून जुलाई में बुआई कर ली है तो कम से कम आप सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में काटोगे, और बारिश उस समय भी होती है, तो जमीन पे आप जब डाल दोगे तो आप देखोगे कि कभी कभी अगर बारिश आ गया तो आपके कैप्सूल्स में और पौधों में एक तरीके का सफेद रंग का फफूंद लग जाता है। तो हमें वो नहीं करना, हमें कटाई करने के बाद पौधे को रस्सी से बांध करके खड़ा करके हमें जो भी हमारा थ्रेशिंग फ्लोर है उस पे रखना है, ताकि ऊपर से उस पे धूप चारों बगल से पड़ते रह जाए, ठीक है। उसके बाद फलियां, जैसे आप देखोगे कि जो बाकी बची हुई फलियां थी वो भी धूप से सूख गई हैं, अब खुलने लगी हैं, तो आप उसको तिरपाल के ऊपर डाल करके पौधे को झाड़ोगे तो सारी जो आपकी बीज हैं तिल की वो बाहर आ जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी उमा, कि जब भी गर्मी में आप देखोगे कि तापमान वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो जो हमारे बीज होती है ना उसको मॉइस्चर उसमें कमी होता है, लेकिन जब हम खरीफ की बात करेंगे ना तो मॉइस्चर उसमें बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे कि कटाई करने के बाद बीज जो आप रखो तो बिल्कुल कहीं बांध के किसी पोटली या बोरे में ना रख दो, उसको ध्यान दोगे कि बारिश के बीच में भी अगर कुछ कुछ ऐसा है कि अगर 10-15 दिन के बाद अगर तेज धूप आ रही है तो आप अपना जिस भी बोरे में आपने उसको रखा है उसको बाहर निकाल करके धूप में फैलाए बीच बीच में, ये बहुत जरूरी है ताकि आप के कटे हुए जमा किए हुए बीज के अंदर फफूंद ना लगे।
1: तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं किसान भाई बहनों को यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप जो किस्में चुनते हैं उसको ध्यान से चुने, कौन सा गर्मा तिल का है वैरायटी, कौन सा आपका जो खरीफ तिल का वैरायटी है, उसके बाद समय पे बुआई करें। किसी वजह से अगर बुआई लेट हो जाती है तो 15 जुलाई के बाद आप एक दो हफ्ता ले लें, उससे ज्यादा पीछे ना जाएं, क्योंकि आप देखोगे कि टेम्परेचर के हिसाब से भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और कैप्सूल जो उसमें जो फलियां बनती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जितना आपको है खाद डालने का उतना ही डालें। कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई, बहुत ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, बोलते हैं कि, तो उस केस में क्या हो जाता है, तिल के पौधे पूरे झुलस के सूख जाते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि हो सकता है झुलसा बीमारी लग गई है, नहीं। और खरीफ के समय में एक बात जरूर बोलूंगी कि खेत में जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां जब भी आप लगाएं, या तो आप बंड ये बना करके लगाएं, बेड बना के रेस्ड बेड पे लगाएं, ठीक है, या रेस्ड बंड बना करके लगाए, जैसे आप गन्ना आलू ये सब लगाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके खेत में पानी नहीं जमेगा और आपकी तिल की जो खेती होगी वो बहुत बढ़िया होगी।
1: तो किसान भाई बहनों, जिस तरीके से मैम ने बताया उन तरीके का इस्तेमाल करके आप तिल की खेती कर सकते हैं, और कुछ बातों का ध्यान जो मैम ने कहा उन बातों का ध्यान रखिए, आपको खरीफ तिल की अच्छी फसल मिलेगी, आपका मुनाफा अच्छा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू उमा, नमस्कार।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है

0: कुपोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
6: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। ये है FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। तो आज जब फिर से एक बार उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में, या फिर यूँ कहें कि मौसमी फल जो होते हैं उसका परिरक्षण हम कैसे करें, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनीता मैम। मैं आपको बता दूँ, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर, और साथ ही सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद अनु।
11: मैम, मौसमी फल के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएँ।
12: सबसे बड़ी बात तो है, जो मौसमी फल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शरीर के लिए फल का नियमित सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये फल जो होते हैं विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। इन्हें विटामिन एवं खनिज का आहार में खजाना भी कहा जाता है। और लेकिन ये फल जो होते हैं वो मौसमी होते हैं
11: जी।
12: वो सिर्फ न किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, और यदि उचित रख रखाव नहीं रखा जाए तो वो शीघ्र ही खराब भी हो जाता है। उस मौसम में भी तुराई के बाद यदि हम सही प्रबंधन ना करें, उचित रख रखाव ना करें, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो डाटा है वो आंकड़ा बताता है कि लगभग 33% फल बिना प्रयोग हुए बर्बाद हो जाता है। और यह हम लोग सभी जानते हैं कि फल का उत्पादन में बहुत खर्च लगता है, लेकिन उससे काफ़ी कम लागत करके हम उसको परिरक्षित करके उपयोग योग्य बना सकते हैं। परिरक्षित फल का हम वर्ष भर सेवन करते हैं। मान लो जैसे अभी कोई सीजन है, जो कोई अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी अमरूद का सीजन है, तो हम सिर्फ मौसम भर अमरूद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके हम उत्पाद बना लें तो वर्ष भर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनावश्यक जो हमारी बर्बादी हो रहा था वो बर्बादी को बचा सकते हैं। प्लस ये जो हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि साल भर उसका हम सेवन करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो हम पौष्टिक सुरक्षा है वो भी हम हासिल कर सकते।

0: करते हैं। फल का विविधता का परिरक्षित उत्पाद जैसे हम अचार, चटनी, मुरब्बा, सुखौता, स्क्वैश, जेली, जैम, ये सब बनाकर घर में आराम से रख सकते हैं। और इन सब के अलावा ये सब उत्पाद को यदि हम अपने प्रयोग के अलावा बेचते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी साधन होता है। और ग्रामीण महिलाएँ बड़े आराम से इन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उनको विभिन्न तरह का उत्पाद बना सकती है। यदि उनको अपना पेड़ बाग नहीं हो तो वो चूँकि मौसम में सस्ता होता है वो सस्ता खरीद कर भी उसके उत्पाद को बना करके रख सकती हैं और विविध तरह तरीके से अपने व्यक्तिगत उपयोग में या फिर बाज़ार में बेच करके उसका उपयोग करके फ़ायदा ले सकती।
1: जी जी मैडम, अब बात आती है फल परिरक्षण में उपयोग होने वाले परिरक्षक के विषय में जाना, तो क्यों कौन कौन से परिरक्षक होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
0: हाँ, कुछ जो परिरक्षक है जो कि यदि आप फल सब्जी परिरक्षण में काम करना चाहते हैं, साल भर विभिन्न तरह के जो मौसमी फल हैं उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, परिरक्षण करना चाहते हैं, विविध तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो कुछ परिरक्षक है जिसकी की जानकारी रखना चाहिए और आप आवश्यकता अनुसार उसे मार्केट से ले भी सकते हैं। जैसे कि एक साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड का उपयोग हम जो जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश सब बनाने में किया जाता है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड की जगह पे हम नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास नींबू का रस है तो नींबू का रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये इसका अचार, चटनी, सॉस ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग सॉस, चटनी, स्क्वैश तैयार करने में किया जाता है। मतलब सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग जनरली जो गहरे रंगीन खाद्य पदार्थ होता है उसको परिरक्षण में करते हैं। इसके पोटासियम मेटाबासल्फाइड, इसका जो भी हल्के रंगीन स्क्वैश वगैरह होता है उसमें हम लोग पोटासियम मेटाबासल्फाइड का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः यही चार तरह के परिरक्षक हैं जो कि घरेलू स्तर पे हम लोग यदि फल का परिरक्षण करना चाहें तो इनका उपयोग होता है,
1: कर सकते हैं। जी, तो परिरक्षित उत्पाद को रखना बहुत ज़रूरी होता है मैडम, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो कैसे रखें, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इन उत्पादों को रखने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परिरक्षित उत्पाद है इसके लिए जो हम जिसमें हम भंडारण इसका करेंगे उस बोतल को उसको बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उन बोतलों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़े से बर्तन में, जितना आपके पास बोतल है उसके अनुसार वो बड़े से बर्तन में उसका ढक्कन को हटा करके और ढक्कन हटा कर उसमें ढक्कन डाल देते हैं और ढक्कन सहित उसको लगभग आधा घंटा उबालते हैं, फिर उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं। और बोतल जब सूख जाता है तो उसके बाद ही उसमें हम लोग उत्पाद को रखते हैं और हल्के गर्म अवस्था में ही उसको हम लोग सील भी करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास सीलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो पिघले हुए मोम में मोम पिघला जो दिवाली वगैरह में जो मोम बच जाता है या मार्केट में भी मोम मिलता है उस मोम को ले आइए, उसको पिघला दीजिए और पिघले हुए मोम का उपयोग करके हम लोग बोतल को ढक्कन को बंद करते हैं तो वो बिल्कुल शील्ड हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है उसके अंदर और हमारा उत्पाद खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग बोतल में उत्पाद को भरते हैं तो लगभग एक इंच जगह ऊपर खाली रहना चाहिए। और मान लीजिए कभी किसी तरह का उसमें अशुद्धि रह जाता है तो फर्मेंटेशन वगैरह होता है तो उससे बोतल टूटे नहीं, इसलिए हमेशा ऊपर में एक इंच का जगह आपको खाली रखना चाहिए। और इस तरह से आप बोतल में यदि साफ सुथरा करके भंडारित करते हैं तो उत्पाद आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए धूप नहीं है, आप नहीं सुखा पा रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो आपको एक पोटासियम मेटाबासल्फाइट है उसके घोल से भी बोतल को हम लोग अच्छे तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं तो फिर वो भी काम हो सकता है। लेकिन बेहतर होगा कि हम गर्म पानी में खौला करके तेज धूप में उसको सुखा लें। इसके अलावा फल संरक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिस फल का भी हम लोग संरक्षण करें उसका जो परिरक्षित उत्पाद बनाना चाहते हैं वो स्वस्थ हो, अच्छे किस्म को हो और सड़े गले या चोट खाए फल का प्रयोग ना करें। उसके बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लोहे का चाकू या बर्तन का प्रयोग ना करें, संरक्षित उत्पाद को हाथ व गीले चम्मच से ना निकालें और बर्तन जिसमें या जार जिसमें कि आपका उत्पाद उसको बार बार ना खोलें और बोतलें जो है हमेशा साफ धुली और सुखी रहना चाहिए। और जो मान लीजिए कि कोई बोतल का ढक्कन है यदि आप पुराना बोतल उपयोग कर रही हैं उसमें यदि छेद हो या जंग लगा हो तो उसका प्रयोग नहीं कीजिए, उसके जगह पे प्लास्टिक का जो सिंथेटिक फ्लैप है उसका उपयोग कीजिए। फिर प्लास्टिक या धातु के बर्तन में परिरक्षण ना करें, इसके लिए कांच की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एयर टाइट बोतलों का ही इस्तेमाल

0: इस्तेमाल करें। जी मैम, अब बात करते हैं अमरूद के बारे में, तो अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में बताएं, जैसे कि अमरूद के जेली भी बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी।
1: अमरूद का तो जो मुख्य रूप से जो जो प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि जनरली यूज करते हैं वो अमरूद की जेली है। और अमरूद की जेली हम लोग उसके जो जूस है उससे हम लोग बनाते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से डेवलप मैच्योर विकसित फल का चयन करते हैं, जो कि बिल्कुल जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डम्भक फल, वो डम्भक फल हमें लेना चाहिए। और इसको खूब या खूब पका भी अमरूद नहीं होना चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का जो फल हो वो डम्भक होना चाहिए। उसको थोड़ा सा काट के हम खाएं तो वो थोड़ा मीठा स्वाद लगना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद उस अमरूद को अच्छी तरह से पानी से हम लोग धो लेते हैं और गोल गोलाई में उसके टुकड़ों को काटते हैं। फिर इसमें जो बर्तन में हम उसको उबाल रहे हैं उस बर्तन में अमरूद के टुकड़ों को डाल देते हैं, उसके ऊपर से पानी इतना डालते हैं कि वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद उसको हम लोग पकाते हैं, जब वो पूरा सीज जाता है, पक जाता है, हम हाथ से टच करके देखते हैं कि अमरूद के टुकड़े अच्छी तरह से गलकर पानी में मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग कपड़े से उसको छान करके
0: मतलब पेस्ट बन जाता है।
1: नहीं पेस्ट नहीं, उसको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अमरूद को उबाल रहे हैं तो उसको चलाना नहीं है, उसमें पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तब जो यदि पेस्ट बनेगा तो अमरूद का जो जेली बनेगा वो थोड़ा गंदा धुंधला टाइप का बनेगा। यह ध्यान रखना है कि अमरूद उसका टुकड़ा उसमें गले नहीं, टूटे नहीं, लेकिन वो पक जाए गलने लायक। उसको हाथ में निकाल करके हम ऐसे देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको बार बार चलाना नहीं है, यदि उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूटेगा तो हमारा जेली का गुणवत्ता खराब होगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट जेली नहीं बनेगा, है ना। और बीच बीच में हल्का सा चलाना है कि वो पेंदा में वो सटे नहीं, जले नहीं, आपका जो अमरूद है टुकड़ा है वो जले नहीं, उस तरह से उसको हल्का सा उसको चलाना है बीच बीच में।
0: जी
1: इसके बाद अब इस टुकड़ों को हम लोग अच्छे से कपड़े से छान लेते हैं। छानने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि रस जितना देर लगे उतना देर आपको अपने से लगने दीजिए रस को चूने में, उसको दबा करके रस निकालने की कोशिश नहीं कीजिए।
0: अच्छा,
1: वो जनरली से गांव में कोई मेज है, टेबल है, टेबल को उलट दीजिए, उसका जो चारों पाया है उसमें कपड़े को बांध दीजिए और उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए और जो कपड़े को बांधे हैं उसमें आप अमरूद के टुकड़े को डाल दीजिए, टप टप धीरे धीरे धीरे जूस नीचे जो बर्तन रखे उसमें गिरेगा और उसको रस को गार करके नहीं निकालना, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि यह भी यदि आप करेंगे तो भी आपका जेली का गुणवत्ता सही नहीं होगा, जेली थोड़ा गंदला हो जाएगा, ठीक है। और चाहे आपको जितना समय लगे उसको अपने से होने दीजिए, ठीक है। उसका जब पूरा रस निकल गया तो अब रस का मात्रा को ज्ञात कर ले, नाप लें कि कितना रस है। यदि आप उसके पेक्टिन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं। पेक्टिन का टेस्ट करने के लिए शीशे का ग्लास या परखनली लें, घर में तो शीशे का ग्लास ही रहता है, वो ले लीजिए। उसमें एक चम्मच रस लेते हैं, उन पर रस का दुगुना स्प्रिट डाल देते हैं। रस जब मिल जाए तो उसमें बाहर टेबल पर उड़ेल देते हैं। गिरा हुआ जो उसमें अवक्षेप देखेंगे, जो अवक्षेप बना है, यदि अवक्षेप बड़ा हो तो जूस में 900 ग्राम, यदि साधारण हो तो 700 ग्राम और टूटा फूटा पतला हो तो 400-500 ग्राम के लगभग चीनी डालते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह देखिए कि रस में अपने हाथ से लेके देखिए चटचटापन है क्या नहीं। यदि रस में चटचटापन है तो बरसाती अमरूद में, जैसे कहीं बरसाती अमरूद का समय है, तो जनरली आप यह ध्यान रखिए कि 500 से 600 ग्राम चीनी हम लोग एक लीटर जूस में देंगे। यदि आपके पास यह साधन है कि यदि हम पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये इतना थोड़ा चीनी की मात्रा हम लोग 500 से 600 ग्राम डालेंगे, या नहीं तो आप अलग से पेक्टिन थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं तो आपका अमरूद का जेली सही जमेगा, ठीक है। इसके बाद आप हम लोग जो चीनी की मात्रा दे के उसको पकाते हैं, जब जूस और एक थर्मामीटर मिलता है, उस थर्मामीटर को से आप उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं। जब जूस का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुँच जाए तो उसमें हम लोग जितना चीनी है उसमें हम लोग डालते हैं, चीनी और रस डाल करके उसको उबालते हैं और 100 डिग्री पहुंच जाए, मान लीजिए नहीं थर्मामीटर है, तो जब अच्छे से वो खोलने लगे तो समझिए वो टेम्परेचर पहुंच

0: गया है। तो 4 से 5 ग्राम सैट्रिक एसिड प्रति केजी के हिसाब से हम लोग जूस में मिला देते हैं। इसके बाद उसका जब टेम्परेचर 106 से 107 डिग्री पहुंच जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं। और यदि मान लीजिए थर्मामीटर नहीं है तो कैसे उतारेंगे, तो उसका है कि एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप जो जेली पका रही हैं उस जेली को थोड़ा डालिए। यदि वो उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके जम जाएगा और सॉफ्ट रहेगा, तो इसका मतलब वो रेडी है। यदि इससे ज़्यादा पका देंगी तो जेली जम जाएगा, कड़ा हार्ड हो जाएगा। इसलिए उतारने का तापमान बहुत ध्यान से देना होता है कि इस तरह से हम लोग उसका चेक करें। दूसरा है कि यदि प्लेट में उसको डालेंगे तो उसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं होना चाहिए, तो भी हमारा जेली तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये हम लोग जांच करेंगे कि हमारा जेली का उतारने लायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये 2 पॉइंट पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम जेली का अंतिम बिंदु का कैसे जांच करें। दूसरा कि जब जेली को चला रहे हों या फिर जब जेली का जब अमरूद का रस निकाल रहे हैं, पका रहे हैं जब, उस वक्त और रस जब निकाल रहे हैं तो उस वक्त उसको दबाए नहीं। ये 2 चीज़ का जेली की गुणवत्ता को सही रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको उतार करके और जेली को स्वच्छ चौड़ी मुंह वाले बोतल के शीशे में भर देते हैं और उसके बाद उसमें मोम को पिघला करके उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका एक लेयर हो जाता है। और फिर जब मोम जमने वाला हो, देखिए जब जेली ठंडा जाए तब हम लोग मोम डालते हैं, और जब मोम जमने से पहले, मोम को पूरा जमने नहीं देंगे। मोम यदि पूरा जम गया तो साइड से छोड़ देता है। मोम को पूरा जमने के पहले उसके ढक्कन को लगा देते हैं और किसी सूखे व ठंडे जगह पर उसको हम लोग भंडारित करते हैं। इस तरह से हमारा अमरूद का जेली तैयार हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा यदि अमरूद का आप जो जेली का जो ऊपर आपका पल्प बच गया, इसका यदि कुछ आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, और एक दिन उसे छोड़ने के बाद उसको आटे के साथ, जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो, शक्तिमान मक्का हो या फिर मिश्रित आटा हो, उसके साथ जैसे आप घरों में खजूर बनाते हैं उस तरह से चीनी वगैरह या गुड़ डाल करके छान के बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं और बहुत पौष्टिक भी है। इसके अलावा आपके पास यदि बेकिंग की सुविधा है तो उसके आप बिस्किट भी इसका बना सकती हैं, और यदि इसके किसी मच्छरदानी में डाल करके उसके बीज को हटा देते हैं तो उसका जो पल्प बचा उस पल्प से को आप चीनी के साथ पका करके जैम के रूप में ही बना सकते हैं। और पूरे उत्पाद को बीज सहित यदि उसको आप पीस देते हैं तो उसको भी आप चीनी या गुड़ के साथ पका करके संरक्षित करके रख सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद है। मतलब कि यदि आपके पास पशु है तो ये जो बचा है उसको आप पशु को भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसके उत्पाद बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारी महिलाओं खास तौर पर आप भी ये बना सकते हैं अपने घर पर ही। और तो आज का हमारा विषय था अमरूद का परिरक्षित उत्पाद, तो इसके बारे में आज आपने जाना। साथ ही गार्डन में बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी फल का परिरक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों

के लिए 2x2 मीटर और बौनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूले और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।

0: संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
1: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
1: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
1: जी,
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा

0: रण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
1: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है, जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
0: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदरदास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
1: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
0: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
0: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
1: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
0: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जानें।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम।

0: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
1: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
0: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
1: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
0: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
1: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान, मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूं।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई।

0: इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह तीन भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
1: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम,

0: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त।

0: बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और कृषि में आज हम किसी फल या सब्जी के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के फसल के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती से आय के नए अवसर के बारे में। हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है, लेकिन खेती नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या वजह है?

0: है कि फूलों की खेती सिर्फ एक पारंपरिक कृषि गतिविधि नहीं रह गया है। अभी क्या है कि तेज़ी से ये जो फूलों का डिमांड है हमारा, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और ये उद्यमशीलता आधारित क्षेत्र बन चुका है। यदि हम कुछ वर्ष पहले की बात करते हैं तो फूलों का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ धार्मिक कार्यों या फिर पूजा पाठ या फिर घर की सजावट, इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता था। यहीं तक सीमित था हमारा फूलों का उपयोग। लेकिन अगर अब वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो समाज में जो हमारा है या फिर समाज में और बाज़ार में इसकी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं। अभी इसकी उपयोगिता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी फूलों की मांग हमारी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो हमारा शादी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट्स हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सब में हमें फूलों की सजावट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके साथ साथ कोई भी शादी होती है हमारे घर में या फिर कोई पूजा का समारोह हो रहा है, उस समय भी हमारा जो फूल है वो एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे ज़िंदगी का, जीवन शैली का। इसी प्रकार होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जो कट फ्लावर्स होते हैं, जो डेंटल वाले फूल होते हैं, जो ताज़े होते हैं, उनकी उपयोग से वातावरण जो है वो आकर्षक होता है, साथ ही साथ प्रीमियम लुक देता है वो होटल्स में। तो इससे क्या है कि जो वो होटल का जो भाव है वो भी बढ़ जाता है, जो कमरे का रेंट, वो सब चीज़ें भी हम फूलों की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें। इसके अलावा हाँ, साथ ही साथ जो फूल है उसका सिर्फ हम सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परफ्यूम या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी इसका कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ फूलों की, गुलाब हो गया हमारा, रजनीगंधा है, जैस्मिन है जिसे हमारे प्रदेश में चमेली के नाम से हम जानते हैं, तो इनका इत्र या फिर इनसे जो गुलाब जल बनाते हैं हम, जल या फिर इत्र, उसका उपयोग हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हम इसके साथ साथ गुलाब या फिर गुलाब हो गया, कार्नेशन हो गए, ऑर्किड हो गए, इन सब के डंठल भी हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अर्जित हो रही है और किसानों की जो आय है वो सिर्फ हमारा सीमित नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ देशी मुद्रा के लिए, वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसानों की जो आय है वो भी हमारी वृद्धि हो रही है। तो इसी बढ़ती मांग को अगर देखा जाए तो किसान को जो पारंपरिक फसलें हैं हमारे, उसके तुलना में अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो वो आपको अधिक लाभ दे रहा है, क्योंकि ये कम समय में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और साल भर आप खेती कर सकते हैं। आप बार बार फूल तोड़ सकते हैं, 4-6 महीने में ही आपने कितनी बार डंठल तोड़े, कितनी बार आपने फूल तोड़े। तो इस वजह से जो है हमारा डिमांड जो है, जो मार्केट में जो उपलब्धता है फूलों की, हमेशा बरकरार रह रही है और हमारे किसान इसे अच्छा अर्जित कर रहे हैं, अच्छी कमाई उनकी हो रही है।
1: तो मैम, हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन कौन से फूलों की ऐसी किस्में हैं जो सबसे अधिक लाभदायक माने जाते
0: हैं? ये सबसे ज़रूरी है हमारे किसी भी प्रकार की, जब हम खेती करते हैं किसान भाई, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में हम कौन सा कहाँ पर ये अनुकूल है, कौन सा ताप, ये एरिया जो है हमारा, वो बिहार प्रदेश जो है हमारा, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हैं। तो इसमें आप कम लागत में, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास सबसे जो प्रमुख हमारा जो फसल है, जो सबसे प्रमुख जो फूल है वो है गेंदा, जिसकी मांग जो है वो हमारी पूरे वर्ष किसान भाई बनी रहती है। चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, सजावट हो, किसी भी चीज़ों में हमारा गेंदा जो है वो हमेशा उसकी मांग बनी रहती है। इसको लगाना भी, और सबसे है कि ये तीनों सीज़न में, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये तीनों सीज़न में हमें इसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसे प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो है वो है गुलाब। गुलाब भी बहुत अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका जो कट फ्लावर है वो हमारा ईस्टर में, क्रिसमस में, मदर्स डे में या फिर न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में, इन सब समय में हमारा कट फ्लावर जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे साल कोई ना कोई फंक्शंस, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, या फिर शादियों का समारोह चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उन सब में भी हमें कट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका डिमांड हमको पूरे साल मिलती रहता है। गुलाब में ही आपको जो देसी गुलाब है उसकी भी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे गुलाब जल बना सकते हैं, या फिर आप उसे एक पंखुड़ी बना सकते हैं, फिर आप उसको मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं, उसका

0: फिर रोज़ शरबत बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये फसल भी। एक बार आप इस फसल को लगाएंगे और आपको 7 वर्षों तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी जो फसल है किसान भाई वो है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस साल में एक बार आप लगा सकते हैं, सितंबर माह से हम लगाना उसको शुरू करते हैं, लेकिन आप 6 से 8 महीनों तक इसके स्पाइक को काट के बेच करके आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आपका आता है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी एक बहुत प्रमुख फसल है और इसकी खेती बहुत ही आसान होती है। इसे आपने एक बार लगाने के बाद में आप 3 वर्षों तक इसमें फूल ले सकते हैं, जिसमें आप कट के फ्लावर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लूज़ में यानी खुले यानी ढीले फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत माला बनता है शादियों में, जो हमारे वरमाले होते हैं वो भी होता है, वो आप बना करके इसको बेच सकते हैं, या फिर भगवान को अर्पित करने के लिए भी फूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये है। उसके अतिरिक्त रजनीगंधा और ग्लैडियोलस में 2 प्रमुख चीज़ें हैं, जो कि है कौर्म और इसका कंद। उसे भी आप बेच करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत प्रमुख फसल, एक ऑर्किड है, जरबेरा है। इन दोनों की खेती हम पॉली हाउस में करते हैं और ये और ताकि पॉली हाउस में करके और फिर इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्लावर होता है, जो फूलों की गुणवत्ता होती है, वो पॉली हाउस में बहुत अच्छी रहती है। तो इसी वजह से हम इनकी खेती पॉली हाउस में करते हैं और फिर हम इसे बाज़ार में बेचते हैं, जो कि सजावट के रूप में काफ़ी काम आता है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्किड एक ऐसा फूल है जिसकी जो वास लाइफ यानी जो आप उसको रखते हैं या फिर उसको आप कहीं सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम वो 10 से 15 दिनों तक वो फूल बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब फूलों की खेती आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो मैम, क्या छोटे और सीमांत किसान भी फूलों की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
0: हाँ जी माँ जी, बिल्कुल। हमारे किसान भाई, आप किसी भी कोई भी सीमांत हो या फिर कोई भी छोटे किसान हो, कितनी भी भूमि आपके पास हो, आप उसमें खेती करके आराम से अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसान भाइयों के पास, हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर भूमि नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 1 से 2 बीघा भी ज़मीन है, उसमें भी आप गेंदा या रजनीगंधा जो मैंने आपको बताया, अगर उन फसलों की आप खेती करते हैं, तो जो आप पारंपरिक खेती जो आप कर रहे हैं दलहन का, तिलहन का, गेहूं, ये सब चीज़ों का, उसकी तुलना में हमारे किसान भाई आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण, सबसे ज़रूरी जो कारण है वो ये है कि इन फूलों की अगर हम तुलना करें किसी भी प्रकार की फसलों से, तो इनका जो डिमांड है, इनकी जो बाज़ार में मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मूल्य बहुत बेहतर होता है। और अगर हम किसी सीज़न से अतिरिक्त इसको हम उगा पा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छा भाव आपको बाज़ार में मिलता है। साथ ही साथ इसकी तुड़ाई, कोई फसल जब हमारा होता है जैसे दलहन या तिलहन, उसकी तुड़ाई हम एक ही बार कर पाते हैं, किंतु इन फूलों की खेती में क्या है, आप जितना उनकी तुड़ाई करेंगे आपको उतने फूल आपको प्राप्त होते जाते हैं। तो इनकी तुड़ाई आप बार बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, 3 से 4 कटाई तो आप कर ही लेंगे। तो इसकी वजह से आपको नियमित आय भी मिलते रहता है। आपको आय सिर्फ एक बार नहीं डिपेंड होना पड़ता है, आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके अलावा हम पॉली हाउस या फिर नेट हाउस के उपयोग से भी किसान हमारे जो हैं वो नियंत्रित वातावरण में, जो कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप उच्च गुणवत्ता वाले फूल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इससे मौसम जो है वो निर्भर नहीं, मौसम पे कम निर्भर करेगा हमारा फूल का जो है, और उससे आप ऑफ सीज़न जब हम उसको उगाते हैं तो आपको कीमत बहुत अच्छी मिलती है मार्केट में।
1: तो मैम, फूलों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ जी उमा, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है कि मिट्टी और जलवायु, क्योंकि मिट्टी और जलवायु का अगर वो सही चयन कर रहे हैं, तभी हमारे जो कोई भी फूल है या फिर कोई भी फूलों की फसल है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस ज़मीन में। क्योंकि क्या है कि हर फसल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी को सैंडी लोम जो बोलते हैं हम, उस वो मिट्टी चाहिए, किसी को क्ले मिट्टी चाहिए होता है, लेकिन हमारा जो प्रदेश है उसमें हमारी जो मिट्टी है, जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती है ना, बहुत अच्छी

अच्छी मानी जाती हैं। इसमें अगर हम फूलों की खेती किसान भाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले आपको फूल प्राप्त होंगे। उससे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपके जो बीज होंगे वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही बीज होने चाहिए, या फिर बीज नहीं तो अगर आप पौधे खरीद कर ला रहे हैं मार्केट से तो वो जो पौधा भी है उसका वो पौधा काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब भी हम बीज या फिर पौधा लेकर आते हैं तो एक प्रिकॉशनरी के तौर पर हम किसान भाई क्या करेंगे कि उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे कोई भी फफूंद नाशक। वैसे तो जो हम बीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो बैवेस्टीन या फिर थायरम के साथ में वो ट्रीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी

0: और जो भी मिट्टी से जनित आपकी बीमारी होगी वो पौधों में आपकी नहीं लगती हैं। साथ ही आपको सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि जो आपके पौधे हैं उनकी जो उनका जो विकास है उनकी जो वृद्धि है वो संतुलित रहे और फूलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती रहे। इसके अलावा जो आपकी एक सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाज़ार में मांग और मूल्य, ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। उसी के तहत हमारी कौन सी चीज़ किस एरिया में हमारी कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है उसी के बेसिस पर उसी पर्टिकुलर फसल का खेती चयन करना चाहिए करने के लिए। और जो लास्ट में अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कटाई के बाद जो प्रबंधन वो कैसे करेंगे, उसमें पैकिंग आपको करनी होती है। कटाई के बाद हम कोई भी फूल को तुरंत पानी में डालते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे दूर मार्केट में भेज रहे हैं तो आपके पास परिवहन उसके आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए उसे दूर मार्केट में भेजने के लिए। उसके बाद तुराई का समय आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब तुराई करें। अगर आपको बहुत दूर मार्केट में भेजना है तो आप कोशिश करें कि रात में ही शाम में ढलते ही तुराई कर ले ताकि रातों रात आपका फूल चला जाए मार्केट में और सुबह होते ही आपकी फूल बिक्री के लिए शुरू हो जाए। अगर आप लोकल मार्केट में उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप अपनी तुराई कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसे स्थानीय मार्केट में भेज करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम, फूलों की खेती से जुड़े जो नए अवसर हैं वो कौन कौन से हैं?
0: हाँ, ये जो एक किसान भाई हमारा जो एक सेक्टर है वो थोड़ा पीछे रह गया है, जिसके बारे में जानकारी जो है वो अब नहीं है। सिर्फ फूलों की खेती जो है वो सिर्फ फूलों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है। हमारा जो फ्लोरिकल्चर का जो क्षेत्र है वो अब आय के कई नए आय के यानी कि जो हमारा कमाने का बहुत अच्छा अवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी से पैदा कर रहा है। और हमारे किसान और युवाओं इस चीज़ की थोड़ी उन्हें कम जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कट फ्लावर का इंडस्ट्री। कट फ्लावर यानी कि हमारा डंठल वाली जो फूल होते हैं उस फूलों की आवश्यकता महानगरों में जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा मांग है उनकी। अब महानगरों के अलावा भी अब छोटे छोटे शहरों में भी धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ने लगी है क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलों की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसी भी फंक्शन में कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, शादी हो, गाड़ियों को ही सजावट करना हो क्योंकि शादियों में, तो उस समय अब क्या है कि लोगों को देखने के लिए लोगों की आंखों को वो अच्छा लगना चाहिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे कट फूलों की आवश्यकता जो है वो बढ़ते जा रही है। दूसरा जो हमारा लूज़ फ्लावर होता है, किसान भाई लूज़ फ्लावर मतलब कि जो खुले फूल होते हैं, जैसे कि हमारी ये गेंदे की, तो गेंदे का माला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक्री होता है, तो गेंदे का माला या फिर गुलाब के माले शादियों के लिए भगवान पे चढ़ाने के लिए या फिर किसी भी त्यौहार, किसी भी समाव, किसी भी पूजे वाले कार्यक्रम में सजावट के लिए हमारा इन खुले फूलों का काफ़ी डिमांड है। तो ये दो चीज़ों की तो सब लोगों को आइडिया है कि हाँ, कट फ्लावर भी होता है, क्लूज भी होता है, पर तीसरा हमारा आता है वैल्यू एडिशन, जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही इसमें ये सबसे अच्छा आय का स्रोत है और विशेष करके हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं जब खेत से फूल कट जाते हैं उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन का यही मतलब हो गया, जब हमने तुराई कर लिया उसके बाद हम उस फूल में क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे गुलाब है तो गुलाब जल, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में आप उसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चाहे तो ड्राई करके ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि मेहंदी में, शादियों में मेहंदी में या फिर संगीत में या फिर हल्दियों में, हल्दी के कार्यक्रम में आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती हैं। फिर चौथा जो हमारा सेक्टर है लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है क्योंकि इसमें क्या है कि अभी पार्क हो गया या फिर होटल हो गया या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री भी होते हैं या फिर सरकारी

0: किट, जो भी चीज हम कर रहे हैं अगर हमारी अच्छी क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता आ रही है तो हम एक्सपोर्ट करके और हम उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम मतलब ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है जिनके पास खास तौर से छोटे ज़मीन है, छोटा छोटी जगह है, वो फूलों की खेती से बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जिनके पास भी छोटा जगह हो, कम भूमि हो, आप छोटे मोटे फूल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है। हमारा गेंदा हो गया, आप गेंदे से शुरुआत कर सकते हैं, आप रजनीगंधा से शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की हो रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कम कम

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के

इकोनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना न भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर

सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

FM Green. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM Green.

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना?

0: लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
1: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्य की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है?
1: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में, तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं BBF से, ब्रॉड बेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी

0: होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं वहाँ। अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है। हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रोपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके जमीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया है, और 20 सितंबर को ये पककर तैयार हो गया। 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
1: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
0: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए। 2 से 3 बार जुताई करके पट्टा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पर लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहाँ BBF पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा। जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
1: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
0: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चेना की बात कर रहे हैं, तो चेना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये तमिलनाडु की, हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151 TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7 जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7, इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियाँ हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम में

0: खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है। हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को, जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे, उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं, वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार, साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है। 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्य की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
1: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है। क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इसमें 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलीन देना पड़ता है। या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,4-D दवा नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,4-D हम लेकर के जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,4-D जो 58% इसी का आता है, उसकी बात करें तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मिलता है। बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में, जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए 1 बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी 1 बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को 2 भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, चूंकि

0: फसल मात्र 65 दिन की है, इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है। तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस तरह देखा जाए, एक बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद, और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा,
1: जा रहा है जी। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आय कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बिल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बा।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष

आर्द्रता सुबह में 80-90% और दोपहर में 55-60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है। ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दे कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करे, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15-20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूले। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं, तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत।

0: सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज NCERT के ऑडियो बुक में हम सुनने वाले हैं कथा सम्राट प्रेमचंद। आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती होती है। 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। हालांकि प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब वो नवाब राय के नाम से भी लिखा करते थे और बाद में वो प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनकी कहानी हम सभी ने अपनी किताबों में पढ़ी होगी और जिन्हें उपन्यास कहानी पढ़ने का शौक है उन्होंने प्रेमचंद की बहुत सी कहानियां, बहुत से उपन्यास पढ़े होंगे। गोदान, गवन या कुछ छोटी कहानियों की बात करें तो ईदगाह, कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी जैसी बहुत सी कहानियां हैं। तो आइए आज यानी कि प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर NCERT की विशेष प्रस्तुति सुनते हैं कथा सम्राट

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कथा सम्राट प्रेमचंद।
1: प्रेमचंद हिंदुस्तान से परे विश्व भाषाओं में हैं। प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव ने कहा था,
2: प्रेमचंद हमारे समाज की यात्रा, संघर्ष और स्वप्न को चित्रित करने वाले सबसे बड़े कथाकार हैं। उन्होंने आनंद, मोक्ष, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कहानी लिखने की परंपरा को तोड़ा और उन्हें सामाजिक समस्याओं से जोड़ा।
3: आने वाला जमाना किसानों और मजदूरों का है, दुनिया की रफ्तार इसका साफ सबूत दे रही है। हिंदुस्तान इस हवा से भी असर नहीं रह सकता।
2: प्रेमचंद ने 1910 में सवा शेर गेहूं लिखी थी, जो एक बंधुआ मजदूर की कहानी है।
1: गोदान के नायक होरी के मरने के बाद उसकी पत्नी धनिया होरी की हथेली पर 20 आने रखकर गोदान कराती है। ये है उस समय के किसान का बेइंतहा दर्द।
4: मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ।
5: ऐसा मत कहो।
4: गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो ये रुपए क्रियाकर्म में ही जाएंगे।
5: ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो।
4: धनिया रो मत, अब कब तक जलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे।
6: गोदान करा दे धनिया, गोदान करा दे, गोदान करा दे।
5: महाराज, घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा, यही 20 आने पैसे

0: का गोदान है।
1: प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में अन्याय का विरोध किया है। समाज के यथार्थ वर्णन के जादूगर थे प्रेमचंद।
2: जी हाँ, ये बहुत साधारण निरा ठेठ देहाती आदमी कथा सम्राट प्रेमचंद है।
1: कथा सम्राट प्रेमचंद की कृतियों का विश्व साहित्य में विशेष स्थान है। विश्व की अनेक भाषाओं में उनकी कृतियों को अनुदित किया गया है।
2: प्रेमचंद से पहले हिंदी उर्दू में उपन्यास लिखना प्रारंभ हो चुका था। इस युग में उपन्यास लेखन की दो धाराएं थीं, तिलिस्मी जासूसी और सामाजिक। प्रेमचंद ने सामाजिक धारा को अपनाया।
1: ये इस समय नवाब राय के नाम से उर्दू में साहित्य रच रहे थे।
2: उन दिनों देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष छिड़ा था। प्रेमचंद ने अपने लेखन से योगदान देना चाहा। उन्होंने देश प्रेम की कहानियां लिखी। ये कहानियां सोजे वतन पुस्तक में नवाब राय के नाम से छपी। किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे। उन दिनों प्रेमचंद हमीरपुर जिले के स्कूल में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे। एक दिन रात में इन्हें वहां के अंग्रेज कलेक्टर ने बुलवाया।
3: नवाब राय, तुम्हारा नाम है?
4: जी हाँ।
3: यह किताब तुमने लिखी है?
4: जी हाँ।
3: इस तरह की और भी कोई किताब छपवाने वाले हो?
4: जी नहीं हुजूर।
3: झूठ बोलते हो। खैर मनाओ कि अंग्रेजों की अमलदारी है, वरना आज तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाते।
4: लेकिन
3: जानते हो बगावत फैलाने वालों को क्या सजा मिलती है? गोली से उड़ा देते हैं। इन किताबों में आग लगा दो, यो छुटकारा नहीं मिलेगा।
1: बेशक उस समय सोजे वतन पुस्तक की 600 प्रतियों का ढेर जला दिया गया। प्रेमचंद ने लेखन का रास्ता चुना था और वो इसी रास्ते पर चलने पर आमादा थे। अब नवाब राय ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और लिखना बदस्तूर जारी रखा।
2: इस समय प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। सरस्वती के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास एक कहानी पंचों में ईश्वर भेजी, जिसे जून 1916 में पंच परमेश्वर नाम से प्रकाशित किया। गांव के जीवन में सरपंच की क्या अहमियत है, प्रेमचंद ने इसे बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है।
5: सच्चाई से चौ भर भी टलना ठीक नहीं होगा।
6: अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह सोचा है। ये ठीक जान पड़ता है कि साहू बैल का पूरा दाम दे।
7: क्या बात है, जुम्मन को पूरा दाम देने की बात कर रहे हैं।
6: जिस वक्त साहू ने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी,

0: मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए ना
1: भाई। ये तो अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है।
0: अलगू चौधरी
1: वो रियायत करें तो उनकी भल मनसी।
2: इसे कहते हैं न्याय।
3: हाँ भैया, पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है।
4: मेरे दोस्त चुमन, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की थी ना, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था। आज मुझे एहसास हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है।
5: चुंगन मेरे भाई, तुम ठीक कहते हो। आज हमारी दोस्ती की बेल

0: 1918 में उनका हिंदी में पहला उपन्यास छपा सेवा सदन। छात्रों के साथ वो सहज और आत्मीय रहते मगर सरकारी अफसरों का विरोध करते। एक बार इनके स्कूल की जांच करने के लिए एक अंग्रेज इंस्पेक्टर आया। जांच के दूसरे दिन प्रेमचंद अपने घर के सामने कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे।
1: इंस्पेक्टर को उठकर सलाम करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी और ये बात इंस्पेक्टर को बहुत नागवार गुजरी।
2: Hey you, hey Tom, मैं Tom से कह रहा हूँ। Tom जो कुर्सी पर बैठा है।
3: हाँ हाँ कहिए क्या बात है।
2: Tom पर एक घमंडी हो। तुम्हारा अफसर तुम्हारे दरवाजे के सामने से निकल जाता है और तुम उठकर सलाम भी नहीं करता।
3: ये जरूरी नहीं है जनाब। मैं जब स्कूल में रहता हूँ तब नौकर हूँ। स्कूल से बाहर मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। आपने जो कहा ये कहकर अच्छा नहीं किया। इस पर मुझे अधिकार है कि मैं आप पर केस चलाऊं।
1: ये सुनकर इंस्पेक्टर चुपचाप चला गया।
0: गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी को तिलांजलि दी और स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में समाज के वर्गों ने क्या भूमिका निभाई इसका अंकन रंगभूमि में हुआ है। सूरदास इस उपन्यास का वो चरित्र है जो अकेला है, दृश्य शक्ति से अक्षम है, लेकिन हिम्मत वाला है। सत्य के पक्ष में अकेला खड़ा हो सकता है, अन्याय का विरोध करता है। बस्ती के कुछ लोग उसका झोपड़ा जला देते हैं। सूरदास और मिठुआ जले हुए झोपड़े के पास बैठे हैं। उनकी बातचीत का अंश सुनिए।
4: दादा, अब हम रहेंगे कहाँ?
5: मिठुआ, दूसरा घर बनाएंगे।
4: और जो कोई फिर आग लगा दे?
5: तो हम फिर बनाएंगे।
4: और फिर आग लगा दे?
5: तो हम फिर बनाएंगे।
4: और जो कोई हजार बार आग लगा दे?
5: तो हम हजार बार, 100,00,000 बार घर बनाएंगे।

0: अरे तो क्या मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की? जरा दम ले लेने दो, हार हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक ना एक दिन हमारी जीत जरूर होगी, जरूर होगी।
1: प्रेमचंद अब अपनी प्रेस की स्थापना करना चाहते थे। 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1927 में हिंदी और उर्दू साहित्य के विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की। तब तक प्रेमचंद साहित्य सम्राट बन गए थे।
2: प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना चाहते थे।

0: पत्नी शिवरानी इनके स्वास्थ्य को देखकर चिंतित रहती थी। ये जेल जाएंगे तो घर कौन चलाएगा? लेकिन प्रेमचंद की इसमें नहीं चली, दोनों में नोक झोंक चली।
1: जेल जाएंगे? अपनी शक्ल तो देखिए शीशे में हजरत, रात दिन पेट थामे रहते हैं अपना।
2: अब की बार देखना कैसे ठाट से जेल जाता हूँ और कैसी शान से बाहर निकल आता हूँ।
1: आपका नाम तो कलम के जरिए फैल ही रहा है, अब क्या सारी शोहरत आप ही लूट लेंगे? मैं नहीं जाने दूंगी, कह देती हूँ। हाँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा। जेल न जाने दोगी, जेल की कहानी तो नहीं रोक पाओगी।
0: जेल कहानी में रोज जुलूस निकलता है, गोली चार्ज होता है, लोग मारे जाते हैं। अगले दिन फिर जुलूस निकलता है। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये प्रमाणित होता है कि लोग जिंदा हैं, अटल अडिग हैं और मैदान में डटे हैं।
3: जुलूस कहानी का पात्र बीरबल, जो अंग्रेजों की फौज में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जुलूस में भाग लेने वालों पर डंडे बरसाता है। उसकी अपनी पत्नी मिट्ठन बाई इसके खिलाफ थी। उसी दिन एक सिपाही ने आकर कहा,
4: हुजूर ये लिफाफा लाया हूँ।
5: अच्छा,
6: क्या तरक्की का परवाना आ गया।
5: देखता हूँ। अरे तुम तो बनाती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है, मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है।
6: फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे, खूब बढ़ चढ़कर हाथ देख लाना, डीएसपी जरूर आएंगे। सच?
5: अरे कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा है? कहीं शुभा हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं का नहीं रहूंगा।
3: पर अब जुलूस उस व्यक्ति इब्राहिम अली को कंधे पर उठाया जा रहा था जिसने जुलूस में बीरबल की लाठी खाई थी और जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी के जगाने पर बीरबल शर्मसार हुआ और उसकी विधवा को सांत्वना देने पहुंचा। ये उस दौर की बात है जब ब्रिटिश फौज के भारतीय अपने ही देशवासियों को, अपने ही भाइयों को लाठियों और गोलियों से भून रहे थे।
0: इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचंद को राय साहब की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा। प्रेमचंद ने इसे ठुकरा दिया। वो साहित्य लेखन में किसी तरह का दबाव या पाबंदी नहीं चाहते थे और सृजन की जिम्मेदारियों को बखूबी समझते थे। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है,
1: वे 4:30 बजे ही उठ जाते थे और लिखने पढ़ने लग जाते थे। बेटे धन्नू को पढ़ाते थे, लिखते भी जाते थे। उसके बाद फिर नहा धोकर स्कूल जाते, स्कूल से लौटते हुए तरकारी वगैरह अपने साथ लेते आते थे, बच्चों के साथ खेलते। कांग्रेस की मीटिंग अक्सर चलती रहती, उसमें रोजाना शरीक होते। जिस दिन 10 बजे लौटते, रात को काम ना कर पाते, उस दिन 3 बजे रात को ही जमकर काम में लग जाते। मैं हमेशा आराम के लिए झगड़ती, पर वो कब मानने वाले थे।
0: लखनऊ में प्रेमचंद का प्रेस और उनका प्रकाशन धन के अभाव में चल नहीं पा रहा था। उन्होंने बनारस से हंस नामक पत्र निकालना शुरू किया। वो जागरण नाम से एक नया साप्ताहिक निकालना चाहते थे, पर कहीं कुछ चल नहीं पा रहा था। कभी मजदूरों के लिए पैसा नहीं, कभी कागज वाले को देने के लिए पैसे नहीं। प्रेमचंद ने जीवन के अनुभवों के आधार पर हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था।

0: मुझको ऐसा लगने लगता है कि इस आदमी ने वर्तमान समाज व्यवस्था को, जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर आधारित है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार कोई भी बड़ा नाम जो लक्ष्मी से संपृक्त है, मुझे आकर्षित नहीं करता। हो सकता है कि बैंक में अच्छी रकम रखकर मैं भी औरों जैसा ही हो जाता, उस लोभ का संवरण नहीं कर पाता। लेकिन मैं खुश हूं कि प्रकृति और भाग्य ने मेरी मदद की है, मुझे गरीबों के साथ डाल दिया है। इससे मुझे मानसिक शांति मिलती है।
1: इन्हीं दिनों अजंता सिनेटोन बंबई के मोहन भवनानी ने उनको अपनी फिल्म कंपनी में आने का निमंत्रण दिया। इस दुनिया से अजनबी होते हुए भी प्रेमचंद ने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। पर कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि ये जगह उनके लिए नहीं है। उन्होंने अपने मित्र जैनेन्द्र कुमार को लिखा,
0: ये प्रोड्यूसर जिस ढंग की कहानियां बनाते आए हैं, उसकी लीक से जौ भर भी नहीं हट सकते। राजा रानी, उनके मंत्रियों के षड्यंत्र, नकली लड़ाई, यही इनके मुख्य साधन है। मैंने सामाजिक कहानियां लिखी हैं जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहता है, लेकिन इन लोगों को संदेह होता है कि फिल्म चले या ना चले। मन चाहता है यहां से छुट्टी पाकर अपने पुराने अड्डे पर जा बैठूं। वहां धन नहीं है, पर संतोष जरूर है।
2: प्रेमचंद की पहचान है उनकी सादगी और शायराना अंदाज। प्रेमचंद और समकालीन कवि जयशंकर प्रसाद एक दूसरे को जानते तो थे, पर औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार वो दोनों एक डॉक्टर की दुकान पर बैठे थे।
3: थोड़ा जीभ दिखाइए।
2: डॉक्टर साहब ने प्रेमचंद से पूछा,
4: क्या आप इन महाशयों को जानते हैं?
0: काबा में, कलीसा में, बुतखाने में या दिल में, है होश मुझे इतना, तुझको कहीं देखा है।
5: इस कक्ष में प्रवेश करने के साथ ही परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको।
4: वाह वाह वाह वाह, आइए आइए, इनसे मिलिए। ये हैं कथाकार प्रेमचंद
5: जी,
4: और आप हैं कवि जयशंकर प्रसाद।
0: मैं बहुत खुशनसीब हूं जो आपसे मिलना हुआ।
5: अहो भाग्य मेरा, जो आप जैसे कलम के जादूगर से मेरा परिचय हुआ।
0: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास था मंगलसूत्र, जो अधूरा ही रह गया। उन्होंने स्वयं को समाज के सामने मजदूर के रूप में पेश किया।
0: मैं मजदूर हूं, जिस दिन न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है।
1: एक बार प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी ने उनसे पूछा,
6: हाँ, पर स्वराज हो जाए तो आप किसका साथ देंगे?
0: मजदूरों और काश्तकारों का। मैं पहले ही सबसे कह दूंगा कि मैं तो मजदूर हूं। तुम फावड़ा चलाते हो, मैं कलम चलाता हूं। हम दोनों बराबर हैं।
1: किसान वो है जिसके पास 5 या 6 बीघा जमीन है, कभी न चुकने वाला ऋण है और जीवन भर साथ चलने वाला लगान है।
2: एक और पूस की रात में जब रजाई और अलाव ठंड का सामना नहीं कर पाते, ऐसे में गांव का किसान हल्कू एक कंबल की चाह पूरी नहीं कर पाता और पत्नी मुन्नी सिसक कर रह जाती है, क्योंकि उसकी नियति में महाजन द्वारा सूद के रूप में हर पल कुछ ना कुछ ऐंठते रहना लिखा है।
4: मुन्नी,

0: सेना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो।
1: पूस की रात कैसे कटेगी?
0: अरे अरे ला दे दे, पला छूटे। कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा कुछ।
1: कर चुके दूसरा उपाय, क्या कोई खैरात में दे देगा कंबल? जाने कितना बाकी है जो चुकने में ही नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है।
0: तो क्या गाली खाऊं?
1: ये लो रुपए, तुम छोड़ दो खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी।
0: मुन्नी
1: किसी की धौंस तो न रहेगी।
0: अरे चुप हो जा मुन्नी, चुप हो

एक ही अकेला था, शोषित का, पीड़ित का, सच्चा हमदर्द बन लिख लिख कथाएं दर्द बयां करता था। घोषित कर खुद को मजदूर, कागज पर कलम वो चलाता था, जन जन को सजग किया करता था। एक अदद आदमी था वो।

0: मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी।
1: कथा सम्राट प्रेमचंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध आलेख डॉक्टर कामिनी भटनागर, कलाकार अश्वनी वालिया, रजत सेन गुप्ता, मंजू मैनी, प्रवीण शर्मा, सादिया रहमान, सुनील लोहिया, मुइनुल हसन और अशोक मलकानी। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
2: आप सुन रहे थे NCERT की विशेष प्रस्तुति कथा सम्राट प्रेमचंद। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। तो इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं।

0: हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व स्तनपान दिवस के बारे में। जी हां, माँ का पहला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है ये आज भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सी वजहें होती है जिसकी वजह से माएं आज भी अपने बच्चों को अपना गाढ़ा पीला दूध पिलाने से वंचित रहती है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का दिया सबसे अनमोल उपहार होता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होता है। लेकिन क्या हर नवजात को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिल पाता है? आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दोस्तों विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर स्तनपान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बिहार में मई 2026 में जारी की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट की अगर हम माने तो बिहार में शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिलने की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन फिर भी जीवन शैली में बदलाव चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भागलपुर सहित बिहार में अब भी 91.9% बच्चों को ही उसके जन्म के समय 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। और अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो 56.8% और ग्रामीण क्षेत्र में 91.4% बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध मिल पाता है। और अगर हम वही पिछले सर्वेक्षण जो कि 2019-21 में हुआ था, अगर उसके आंकड़ों को अगर हम समझें तो मात्र 31.1% ही ऐसे बच्चे थे जिन्हें माँ का गाढ़ा पीला दूध पहला मिल पा रहा था। लेकिन अब थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन अब भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 48.1% बच्चे को आज भी जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। जन्म के पहले घंटे में मिलने वाला माँ का दूध शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और राज्य में 62.5% बच्चों को शुरुआती 6 महीने में स्तनपान कराया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, जो जन्म के बाद माँ के पहले दूध से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान क्यों जरूरी होता है। बच्चे के जन्म के बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसे अक्सर बच्चों का पहला टीका भी कहा जाता है, जो उन्हें अनेक बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चों को संक्रमण से बचाने और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसलिए बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए आसानी से पचने वाला संपूर्ण आहार होता है। इसमें बच्चों की जरूरत के अनुसार जो भी पोषण तत्व होते हैं वो मौजूद होते हैं, और शुरुआती महीनों में ये बच्चों के स्वस्थ विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसे 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान उसका शुरू कर देना।

0: लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या बच्चों को जन्म के तुरंत बाद शहद, घुट्टी या कोई दूसरा तरल पदार्थ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसे नियम होते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे शहद देते हैं या कोई भी ऐसे तरल पदार्थ देते हैं। तो विशेषज्ञों की अगर माने तो नवजात को जन्म के बाद शुरुआती समय में केवल माँ का दूध ही देना चाहिए और बिना किसी चिकित्सीय सलाह के कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। माँ और बच्चे को जन्म के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके एक दूसरे के संपर्क में लाना चाहिए और साथ ही स्तनपान शुरू कराना भी बेहद उपयोगी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 6 महीने तक बच्चे की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से माँ का दूध देने की सलाह दी जाती है। अगर हम स्वस्थ शिशु की बात करें तो उन्हें जन्म से 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध देने की ही सलाह दी जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग अब इस बारे में जागरूक होने लगे हैं और इसे विशेष स्तनपान कहा जाता है। इस दौरान बच्चे को पानी की भी सामान्यतः जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ का दूध ही उसकी पोषण और तरल पदार्थ की जरूरत पूरी करती है। यानी कि जो माँ का दूध होता है ना, वो अपने आप में पूरा होता है। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ उसके उम्र के अनुसार पूरक आहार देना शुरू कर दिया जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो फिर भी लेकिन माँ का दूध देना तब भी जरूरी होता है, लेकिन माँ के दूध के साथ वो कुछ आहार बाहरी चीजें खा सकता है। स्तनपान को इसके बाद भी जारी रखना जरूरी होता है। और अगर हम बात करें, स्तनपान सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ये माँ और बच्चे के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत तो करता ही है। आपने देखा होगा बच्चे जब स्तनपान करते हैं तो उनका माँ से लगाव बहुत अधिक होता है। और साथ ही माँ के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रसव के बाद माँ के शरीर में भी बहुत सारी चीजें बदलती है, तो प्रसव के बाद माँ के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में स्तनपान काफी मदद करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को पौष्टिक भोजन मिले और स्तनपान कराने के लिए उचित समय और सहयोग मिले, इसका ध्यान परिवार को पूरी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त माँ के शरीर में बहुत सारी चीजें बदल रही होती है, वो बहुत सारे स्तर पर परेशान होती है। इसलिए परिवार का ये दायित्व बनता है कि वो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखे, माँ की सेहत का ध्यान रखे और इस बात का ध्यान रखे कि एक स्वस्थ माँ बच्चे को स्तनपान जरूर कराए। और अगर माँ या बच्चे को स्तनपान से जुड़ी कोई समस्या हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए, नर्स के पास जाइए या फिर किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है कि बच्चों के लिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो बच्चे का पहला टीका होता है जो उन्हें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है, उनका विकास अच्छा कराता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात को माँ का पहला दूध जरूर मिले, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और माँ का पहला दूध बच्चे की जीवन की मजबूत शुरुआत है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो आइए हम सभी मिलकर ये संदेश घर घर तक पहुँचाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा नवजात बच्चा है तो उसके माता पिता को, उसके घर वालों को ये समझाने की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि स्तनपान कराना कितना जरूरी होता है। हर नवजात को माँ का पहला दूध मिले और हर माँ को स्तनपान के लिए सही जानकारी और परिवार का पूरा सहयोग मिले, हम इसी बात की उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। तो आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखे विशेष ध्यान, और फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि आपके अगर आसपास या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो नवजात है और उसके घर वालों को इस बात की समझ नहीं है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे का आगे आने वाला भविष्य मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। तो मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
1: माँ

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, हाय कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया हो।

0: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बहुत सारे दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में, तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर RN गुप्ता। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें, तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
3: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं, तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है, तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
2: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा।
3: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए। कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं, और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो। अगर

0: जमीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं, खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्व का जो प्रबंधन की समस्या हो उससे ये कमी हो जाती है। तो ये भूमि समिति के लिए समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है, इसलिए हमारा जो जमीन है जो खेत है वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जड़ों में जो है जल की जमने की समस्या ये ना हो। तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें। दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31, ये सब प्रजातियाँ जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है और ये जो है करीब हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है
1: जी।
0: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना जरूरी है ताकि जो है इसमें रोग और रोग की समस्या कीड़ों की समस्या साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है। तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है
1: जी।
0: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा अगर गर्मा उड़द करते हैं गर्मियों में करते हैं जिसका तो अभी समय नहीं है, तो उसमें हमको जो है 20 से 25 केजी प्रति के हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खरीफ के मौसम में करते हैं जिसकी जो है अवधि आपकी जुलाई के 15 जुलाई से लेके प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है। दूसरी बात जो है एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणु या हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं और साथ साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजिम है जो कि मार्केट में वेबिस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है जो बीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर इसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुँचता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहन

0: फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है उन खेतों में जो है 25 किलो जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है, और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है, और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक का प्रयोग करना आवश्यक है, तो इसके साथ उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो इस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बात रही कि जो है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है दो क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने के समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो दो कम से कम आवश्यक रूप से करें ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने, जो दाल बने, उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है, तो कीटों में जो है कुछ कुछ बीमारियां लगती है जो फली में फली मक्खी है जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है, और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमिडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं, और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करनी जो अवस्था निगरानी करना जरूरी है, और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरीपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाजार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है, इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70-80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है इसके रोग वाहक का काम करते हैं, और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितेरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीड दवा आती है उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं, तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियां

0: का नुकसान करते हैं, साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणुजनित रोग होती है, जैसे लीफ क्रिंकल रोग, जिसमें पत्तियाँ जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है और इसमें बहुत कम फलियाँ लगती है और यह है पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होती है, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप्स से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियाँ जो है फफूंद जनक होती है, और ख़ासकर जो उकठा की समस्या है वो प्राय सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसलें में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, लाइन सोइंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारी बीमारियां कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियाँ आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं। पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो इससे हम पता चलता है कि हमारे सर्कोस्पोरा रोग से ग्रसित है और पत्तियां जो है समय से पहले ही झड़ जाती है, इससे भी हमारे उत्पादन में काफ़ी कम होता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें एक दवा आती है, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर आता है, मार्केट में सांप के नाम से भी मिलती है। तो इसका प्रयोग करने से अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है, चूर्णी रोग बोलते हैं, जिसको पाउडरी मिल बोलते हैं, ये प्रायः खेतों में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर जो है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियाँ पर जो है सफ़ेद से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियाँ भी जो है इसमें झड़ना शुरू हो जाती है, ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह का ये बीमारियाँ हैं, कुछ बीमारियाँ जो है और ख़ासकर जितने भी कवक जनित बीमारियां हैं जो पत्तियों पे होती हैं, उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजीव और मैनकोजेब मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियां जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग, ये जेंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और कालांतर में पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए, तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है, उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं। और 1 महीने 3 दिन के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो, तो अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पाद

0: और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे

भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना लें और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ, आर

से 20 दिनों बाद निकोनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक, उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं हूँ आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास बातें होती हैं आपके लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। जानते हैं खेती के बारे में और खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। फिलहाल आज का विषय है हमारा अरहर में लगने वाले कीटों का प्रबंधन। दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ये पौष्टिक से भरे हुए रहते हैं और हमारे शरीर को जो एक पौष्टिकता चाहिए वो मिलता है हमें इन दलहनी फसलों से। लेकिन जब हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं इन्हें उगाने में, इन फसलों को उगाने में, तो कई बार उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और वो वजह है कीटों का। जी हाँ, कीट पतंगे जो ये हमला कर देते हैं, तो नुकसान भी होता है फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को। तो आज हम बातें करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में, यानी कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, और साथ ही मैं बता दूँ कि ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा विषय है मैम, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अरहर फसलों को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट हो सकते हैं?
2: अरहर फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख हैं फली छेदक कीट, दूसरा है प्लूम मॉथ, पॉड फ्लाई, पॉड बग, काला व्रिंग एवं दीमक। ये सभी कीट जो हैं अरहर को हानि पहुंचाते हैं।
0: तो हमने जाना कि कौन कौन से कीट हो सकते हैं जो अरहर को मतलब कि हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद मैम, अगर हमारे किसान भाई अगर इसे पहचान जाएंगे तो आई थिंक इसका जो प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हम इन कीटों को, जो अलग अलग कीटों के नाम आपने कहे, कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। साथ ही ये भी बताएं कि ये जो कीट हैं, जितने भी प्रकार के कीटों के नाम कहे आपने, ये भी बताएं कि ये कैसे हानि पहुँचाते हैं।
2: जी, फली छेदक कीट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यह जो है इसका जो लार्वा है ये लगभग 40-50% तक हानि पहुंचाता है। तो फली छेदक कीट, इसका वयस्क वो एक पतंगा है, यह पत्तियों पर, अरहर की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर अंडे दे देते हैं और इन अंडों से फुटकर फिर इल्लियाँ निकलती हैं, जिसे हम पिल्लू कहते हैं। पिल्लू शिशु, ये जो इनके पिल्लू हैं वो फिर पत्तियों पर खाती हैं, और जब फिर जब ये

0: लगती हैं तो फलियों में घुसकर खाती हैं। और ये पिल्लू जो है शुरू में हरे रंग के होते हैं, बाद में धीरे धीरे भूरे हो जाते हैं। और ये इनका जो पिल्लू के जो शरीर है उस शरीर पर उनके शरीर के बगल में साइड जिसको बोलते हैं साइड में तीन तीन धारियां होती हैं, भूरे रंग की धारियां होती हैं। इससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यह जो है फली छिद्रक कीट का लार्वा है या जिसे पिल्लू कहते हैं। और यह जब फली लगता है तो फली में घुसकर खाता है। जब जैसे ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने आधे शरीर को फली के अंदर घुसा देता है और आधे शरीर को फली के बाहर बाहर रखकर उसे खाता है। और ये जो प्लूम मॉथ है, प्लूम मॉथ जो ये इसका भी वयस्क पतंगा ही होता है और ये भी पत्तियों पर अंडे दे देती हैं और इनसे भी फुट करके अंडों से वो पिल्लू निकलते हैं और जिनके शरीर पर रोएं रहते हैं। और ये जनवरी से फरवरी तक इनका जो प्रकोप अधिक होता है और शुरू में ये तो कलियों और फूलों में छेद कर हानि पहुंचाते हैं, फिर जिससे कि फूल और फलियां भी झड़ जाते हैं। और जब फली बनती हैं तब फली में भी छेद कर ये हरे जो धान दाने होते हैं उनको खा जाते हैं। कभी कभी अधखाए जो दाने होते हैं उन पर सफ़ेद या काले फफूंद भी आ जाते हैं। और जो पॉड फ्लाई है जिसे फली मक्खी कहते हैं, ये काले रंग का और चमकीले पंखों वाली ये मक्खी होती है। और ये जो मादा कीट मक्खी होती है ये फली के अंदर अंडे देती हैं और अंडों से सफ़ेद रंग का वो पिल्लू निकलता है जिसे मैगोट भी हम लोग कहते हैं। ये फली के अंदर ही विकसित होकर जो हरे दाने हैं उनको नष्ट कर खाता है। और जिस ये बारीक छेद कर, मतलब बारीक यानी बहुत ही छोटे छोटे महीन छेद कर फलियों पर छेद बनाकर खाते हैं। और इस इन छेदों को देखकर जब छेद महीन महीन हो जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फली मक्खी का आक्रमण हो गया है।
1: अच्छा,
0: और पॉड बग ये जो है चूसक कीट है। ये भूरे रंग के होते हैं और इसके वयस्क और जो निम्फ होते हैं इसके जो शिशु होते हैं उसको निम्फ कहा जाता है। ये निम्फ भी ये फलियों से रस चूस कर खाते हैं जिससे फलियां सिकुड़ कर छोटी पतली हो जाती हैं। और काला भृंग यह भी एक कीट है जिसे एपियन भी कहते हैं। ये पत्तों एवं फूलों पर इनका ये खाते हैं और जल्द मध्य एवं देर से पकने वाली सभी किस्मों पर जो है अरहर के जो किस्म है इन पर इसका प्रकोप होता है। काला भृंग बहुत ही छोटे आकार का होता है और इसका आगे का मुंह जो वो नुकीला होता है। खरीफ मौसम में यह जो है उड़द और मूंग पर भी दिखाई पड़ता है और जब अरहर के पत्ती फूल जब अरहर फसल लग जाते हैं तब ये अरहर के पत्तियों और फूलों को छेद कर खाते हैं। और इस तरह से जब फूल को छेद कर खाते हैं तो फूल सूखने लगते हैं। इसका शिशु जो है वो गंदे उजले रंग का होता है, उजला रंग होता है परंतु वो थोड़ा गंदा लिए हुए रंग का होता है। और इसका मुंह का रंग जो है ये मुंह का रंग वो गहरा भूरा होता है और इसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, मतलब जैसे सी आकार में मुड़ जाता है उस तरह से इसका शरीर मुड़ा हुआ होता है। और यह फलियों में भी प्रवेश कर जो हरे दाने हैं उनको खाता है जी। और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप देखा गया है, सभी इलाकों में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में जिसमें जिन मिट्टी में थोड़ा सा नमी अधिक होती है उसमें दीमक का भी प्रकोप देखा गया है। ये दीमक जो है जो नवजात जो पौधे होते हैं उनके जड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं।

0: तो किसान भाइयों आपने जाना कि ये कौन कौन से कीट हैं, किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं, और इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनका प्रबंधन करें इनके पहचानने के बाद, ताकि हम अपने फसलों को बचा सकें। तो मैम अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रबंधन के बारे में।
1: जी हम शुरू करते हैं फली छेदक कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो फली छेदक कीट का प्रबंधन जो है वो जैसे ही वो चना ये सॉरी अरहर जो हम लगाते हैं वैसे ही फेरोमोन ट्रैप लगा देना चाहिए, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप जो है इसका फली छेदक जो है ये फली छेदक चना को भी हानि पहुंचाता है, और जब अरहर के फूल आते हैं तो उसमें खेतों में चना भी होता है, तो चना में भी यह कीट जो है आक्रमण करता है, इसलिए इसे चना फली छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे चना में हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, उस तरह से अरहर में भी फेरोमोन ट्रैप, कम से कम जब अरहर में फूल आने लगे, फूल आने के पहले फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य लगा देना चाहिए, और 3 सप्ताह के अंतराल पर जो फेरोमोन का ल्यूर होता है उसे बदल देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए 3-3 सप्ताह के अंतराल पर। और अगर रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना है तो रासायनिक कीटनाशियों में प्रोफेनोफॉस 50 EC दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव 50% जब फूल आ जाए तब करना चाहिए, एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां जब लग जाएं तब करना चाहिए। दूसरा कीटनाशी है स्पिनोसैड दवा कीटनाशी जो है उसका 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही नीम आधारित दवा का भी प्रयोग करना चाहिए। नीम आधारित दवा में निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमाजल, इन कीटनाशियों का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्लूम मॉथ कीट के लिए प्रोफेनोफॉस जो कीटनाशी है उस दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है, प्रोफेनोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसे भी फूल आने 50% फूल आने के पहले 50% फूल आ जाए तब पहला छिड़काव एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां लग जाएं तब करना चाहिए। और पॉड फ्लाई का नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पॉड फ्लाई का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है पॉड बग कीट का प्रबंधन के लिए, चूंकि यह चूसक दवा है इसलिए इस कीट का नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है। नीम आधारित दवाओं में निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमाजल, अचूक या नीम का तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर नीम का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशियों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद फिर इसी कीटनाशी का यानी इमिडाक्लोप्रिड से छिड़काव करना चाहिए। जो मैंने बताया काला भरिंग एपियन, इसके नियंत्रण के लिए भी इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC दवा का 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का भी प्रकोप जिन एरिया में

0: का प्रकोप होता है तो इसके लिए बीजोपचार करके लगाना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर और इसमें 15 ml पानी मिलाकर तब बीज को उपचारित कर लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कीट के प्रकार को जाना, अपने साथ ही ये भी जाना कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वो हानि कैसे पहुंचाते हैं। साथ ही बहुत ज़रूरी बात था प्रबंधन इनका, तो ये भी आपने जाना कि हम कैसे इनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थी स्टूडियो में डॉक्टर किरण कुमारी मैम और ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि अगर आपके अरहर के फसलों में कीट लग चुके हैं या कुछ ऐसे आपको पहचान दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द उसका प्रबंधन करें ताकि आप अपने फसलों को बचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें करूंगी मैं और लेकर आऊंगी एक और भी अलग विषय को। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के।
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं

बहुत ही सारी बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही, और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए, और खीरे को आप कद्दूकस करके, उसका खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है।

0: फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं, और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जेल। तो गुलाब जेल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे, जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें, और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है, या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो, तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
3: जब

0: से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के खास कार्यक्रम, जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
4: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट की जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्णअंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पे भूरा धब्बा आ जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें सीथ ब्लाइट होता है
3: जी।
4: सीथ ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
3: अच्छा।
4: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक के कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक की कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है।

0: तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फॉल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पे वो चीज़ लग जाता है। अच्छा। और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है, तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते
1: जी।
0: इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फॉल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे, और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
0: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूँ तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा, और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया, मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं, तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
1: वो खुद ब खुद मर जाएगा।
0: जी, अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा, तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है, और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे, या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं, आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
1: अच्छा।
0: और धूप लगने कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं।
1: गहरी जुताई से।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
0: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है, जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
1: अच्छा।
0: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है, और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है, और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस

0: जाता है। इसलिए जो दो फफूंद नाशक है उसमें एक फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो बाद के अवस्था में भी जब पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं, बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बिंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
1: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब, कि कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
0: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है जिसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं, और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
1: अधिक जमा हो जाता है।
0: जी, तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है, और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से 2 बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्रायः बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती की, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे ही बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप, उसके बाद जो है आप कार्बिंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए तो कार्बिंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमा, जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में 2 बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है, जिसको कि पर्णअंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी 2 अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंद नाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया सीथ ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था सीथ ब्लाइट के बारे में
1: जी।
0: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो सीथ रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पर ये साँप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी, एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, सीथ ब्लाइट के बचाव करने के लिए आप वेलिडामाइसिन का आप जो है, अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका

0: सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।

तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दे कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: स्वस्थ रहे हम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि उन्हें मोशन सिकनेस होता है और ऐसी स्थिति में घूमना फिरना उनके लिए थोड़ा तो दुभर हो ही जाता है। तो मोशन सिकनेस क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कौन। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आज हम बातें करने वाले हैं ढेर सारी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं मोशन सिकनेस क्या होता है। दोस्तों, मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें सफर के दौरान किसी इंसान को चक्कर आता है, उल्टी होती है या सिर दर्द होता है और कई बार बेचैनी भी होती है। और ये समस्या ज़्यादातर गाड़ी, बस, ट्रेन, जहाज या हवाई जहाज के यात्रा के दौरान होती है। और कुछ लोगों में ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए कोई भी सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर संतुलन सही नहीं बैठ पाता है। मान लीजिए आप कार या बस में बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं और आपकी आंखें आपके दिमाग को क्या बता रही है कि आप स्थिर हैं, आप स्थिर होकर कोई काम कर रहे हैं। लेकिन आपके कानों के अंदर जो मौजूद संतुलन तंत्र है, जो दिमाग को बताता है कि शरीर चल रहा है या नहीं, वो क्या बताएगा? हाँ, शरीर तो चल रहा है, पर आँखों ने बताया है कि नहीं, शरीर तो स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा, स्थिर होकर काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग को दो दो संकेत मिलते हैं, और जब दिमाग को अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं तो उसे लगता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई जहरीली चीज अंदर आ गई है। और हमारा शरीर अपने अंदर गए किसी भी बुरी चीज को कैसे निकालता है? उल्टी करके। तो बस इसी वजह से हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें उल्टी आने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगे तो इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि आप खिड़की के बाहर दूर देखने लग जाएं, ताकि आपकी आंखों को भी पता लगे कि नहीं भाई, हम स्थिर नहीं हैं। तो आपके कानों के संतुलन तंत्र से जो संकेत जाएगा और आपकी आंखों से जो संकेत दिमाग तक पहुंचेगा, दोनों सेम होगा। तो ऐसी स्थिति में जी मिचलाने वाली स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस से जूझने वाले आप अकेले इंसान हैं या बहुत रेयर ये स्थिति होती है, तो ऐसी बात नहीं है। साल 2015 में एक रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी स्थिति है जो हर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। और साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि अनुमान आप ये नहीं लगा सकते हैं कि कौन कब इसकी चपेट में आ जाएगा, और इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि मोशन सिकनेस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला सिस्टम ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाता, और ये सिस्टम मुख्य रूप से कान के अंदर मौजूद होता है, जो बैलेंस ऑर्गन यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। हमारे शरीर के अंदर ना एक खास तरह का सेंसर होता है जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये रिसेप्टर्स बाहरी और अंदरूनी बदलावों को महसूस करके उसकी जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है। और जब जानकारी पहुंचती है और अलग अलग जानकारी पहुंचती है, तो दिमाग को लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और जब दिमाग को ये एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई तो गड़बड़ी हुई है, कुछ जहरीली चीज आ गई है, कुछ हानिकारक चीज आ गई है, तो हमारा दिमाग कहता है कि उल्टी करो और इसे बाहर निकालो। और

सफर के दौरान ये उल्टी वाली समस्या या फिर ऐसी परेशानी सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को ना ये यात्रा शुरू होते ही बेचैनी महसूस होने लगती है, वहीं कुछ लोगों में ये परेशानी लंबे सफर के बाद सामने आती है, और कुछ लोगों को ये परेशानी तब होती है जब वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं या फिर गाड़ी के अंदर दुर्गंध फैली होती है, तो भी लोगों में ऐसी परेशानी आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड होता है, और सफर के दौरान जब ये फ्लूइड हिलता है तो उसमें पैदा होने वाली कंपन यानी कि वाइब्रेशन गर्दन तक पहुंचती है, और गर्दन के मूवमेंट के साथ वो कंपन खोपड़ी तक जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया से दिमाग में संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण चक्कर और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उल्टी भी हो सकती है। तो मोशन सिकनेस का दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर फ्लूइड में कंपन होता है तो भी उल्टी की समस्या हो सकती है। और पहला कारण तो बिल्कुल था ही कि जो संतुलन होता है वो ठीक ठीक नहीं बैठता, दिमाग को आंखें कुछ और बता रही होती है और कान कुछ और बता रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग वजह से परेशानी देखी जा सकती है। और इन सब के अलावा आप जब सफर पर निकलते हैं तो उस दौरान आपके पेट की स्थिति कैसी है, ये भी मोशन सिकनेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खाली पेट सफर करते हैं तो फिर आपके पेट की वेगस नर्व जो कि हार्ट और गर्दन की नर्व से जुड़ी होती है वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और फिर इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ता है और आपको चक्कर जैसा महसूस होता है। और अगर आप खाली पेट नहीं है, आपने पूरा भरकर भोजन किया हुआ है यानी कि काफी ज्यादा आपने खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद आप सफर पर निकल गए हैं, तो ऐसे लोगों में भी उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप सफर पर निकले तो हल्का खाना ही खाएं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पेट जाएं या फिर बहुत ज्यादा खा लें, हल्का खाकर निकले तो आपके पेट में भी ठीक ठाक संतुलन बना रहेगा और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मोशन सिकनेस के बारे में जो अभी तक हमने समझा वो ये कि ये सफर के दौरान होता है, लेकिन कई बार ये सफर से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होती बल्कि दिमाग की किसी बीमारी या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है ऐसा कुछ। कुछ मामले में तो मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे सफर भी आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं या फिर आप सारी सावधानियां अपना रहे हैं इसके बावजूद आपके अंदर मोशन सिकनेस जैसी बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। इसलिए अगर परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिल लेना भी जरूरी होता है, कम से कम आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो कुछ गलत नहीं है। और अब तक हमने बीमारी के बारे में बातें की, बीमारी के कारण के बारे में बातें की, अब हम आपको बताते हैं कि सफर में उल्टी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि भारी भोजन से बचना चाहिए, खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर जरूरी हो तो उल्टी रोकने वाली टेबलेट ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। और ध्यान रखें कि चलती गाड़ी में नहीं सोएं अगर आपको पहले से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। और ध्यान रखें कि अगर आपको मोशन सिकनेस वाली परेशानी है तो सफ़र के दौरान आप अपनी नज़रें नीचे करके फ़ोन न चलाने लग जाएं, या फिर आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं सफ़र के दौरान, तो यहाँ पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी कि सफ़र के दौरान आपको किताब पढ़ने से भी बचना होगा, ताकि आपकी आंखें आपके दिमाग को संकेत दे पाए कि आप चल रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं, और आपके कान जो आपके दिमाग को संकेत देंगे वो संकेत मिलेंगे तो आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा। इसके साथ ही आप अपने शरीर की स्थिति को भी स्थिर रखें, यानी कि सिर, कंधे, कमर और घुटने की हलचल थोड़ा कम करें, और अगर आपको परेशानी हो तो आप आगे की ओर मुड़े हुए सीट पर बैठें या फिर सामने की सीट चुनें, ये आपकी परेशानी को थोड़ा कम करेंगे। और अगर संभव हो तो खुद ही आप ड्राइव करें यानी कि वाहन चलाएं, तो इससे तो बिल्कुल आपका दिमाग, आपके कान, आपकी आंखें, आपके दिमाग तक यही संकेत पहुंचाएंगे कि हमारा शरीर मोशन में है, तो संकेत या संतुलन की वजह से तो मोशन सिकनेस आपको नहीं होंगे फिर। और इसके अलावा निकोटिन से बचें, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें उल्टी की संभावना ज़्यादा होती है। और संगीत तो सबसे अच्छा साथी होता है, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, संगीत सामने आता है और कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर हल्का और सुखद संगीत सुने तो आपको सफर के दौरान मोशन सिकनेस की परेशानी कम होती है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और आता है,

0: कि क्या महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा होती है? तो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है और इसके पीछे शारीरिक और हार्मोनल कारण होते हैं। जानकारों का मानना यह है कि जो महिलाओं की जीवन शैली होती है वो पुरुषों से काफ़ी अलग होती है और यही एक वजह होती है कि महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण होता है महिलाओं का पोस्चर। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर के कामकाज बहुत देर तक खड़ी रहकर करती है, खासकर रसोई में जब वो खाना बनाती है तो लगातार खड़ी रहती है, तो लगातार खड़े होने से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है जिसकी वजह से मोशन सिकनेस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल बदलाव नियमित रूप से होते हैं और ये भी एक अहम वजह है मोशन सिकनेस के लिए। और पीरियड्स के दौरान तो शरीर में नमक, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन लगातार बदलता रहता है जिसकी वजह से भी मोशन सिकनेस जैसी परेशानी। तो मोशन सिकनेस के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की। उम्मीद है कि आप और अगर आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आज जिन भी बातों के बारे में मैंने आपको बताया उन बातों का आप ध्यान रखेंगे और मोशन सिकनेस जैसी परेशानी से आप खुद को बचा पाएंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट उमा को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अपनों का रखे खास ख्याल। नमस्कार। स्वस्थ रहे हम।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम

0: कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
1: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
0: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
1: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया, फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
0: तो मैम, अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है।
1: जी,
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है।
1: जी,
0: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
1: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो मैम, अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
1: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम

0: बीजोपचार करना चाहेंगे तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कि कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल
0: जी। बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत

0: उपयोगी बात बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बेसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
1: मुझे और एक बस जाते जाते बताना था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है, जो बाकी के जैव नियंत्रण कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
0: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की

0: सुविधा पाओ।
1: याद रहे स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर,
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं मैम KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
6: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है आज के डेट में। हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफी उपलब्ध है इसके लिए।
0: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
6: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है, और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार के डिमांड पे, मांग पर, इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
0: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
6: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पूसा अर्पिता है, पूसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के

0: का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
1: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
0: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उससे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं, तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 × 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है। और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें, नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें।
1: जी मैम,
0: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है, लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं। और सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में कि यहाँ का जो बाज़ार है, भागलपुर का जो बाज़ार है फूलों का बाज़ार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे

0: भागलपुर के बाजार पर कलकत्ता के ही बाजार का कब्जा था और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है।
1: जी मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें, क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है, और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसकी लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है और वो अरका भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं, IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र, और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
1: जी मैम,
0: और वो उसको करना प्रारंभ करने, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
1: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाज़ार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए, और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू उमा।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ती उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है। इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी

कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है और इसलिए आपको हॉट फ्लैग्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी होता है और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को ज़रूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। और इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो ज़रूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो।

यो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री

धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड नेम, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है।

0: जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोटे अनाज के बारे में जिसे कि श्री अन्न भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बाजरा के बारे में। बाजरा जो कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वर्षा काफी कम होती है। तो आइए आज हम बाजरा की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर आनंद कुमार से। सर, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: किसान भाइयों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बाजरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और अपनी आय वृद्धि कैसे करें, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
0: जी सर, तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि बाजरा की वैज्ञानिक खेती अपनाने से किसानों का क्या उत्पादन लाभ भी मिलता है किसानों को, और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या इस क्षेत्र में भी लाभ मिलते हैं?
3: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा प्रमुख श्री अन्न फसलों में से एक है और जहां तक वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं तो यह छठी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। इसका जो खेती होता है वो मोस्टली कहाँ होता है, जहां शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए है, जहां पर सूखा की स्थिति रहती है और वहां की भूमि क्या होती है, कम उर्वरा शक्ति वाली होती है और ये उच्च तापमान जहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है वहां जीवित रहने में ये सक्षम होती है। इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वह हल्की मध्य भूमि में सबसे अच्छी उपज देती है, इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक किसानों के लिए एक वरदान है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बदलती जलवायु परिस्थिति में बाजरा एक क्या है, एक जलवायु सहिष्णु फसल के रूप में उभर रहा है और बाजरा अत्यधिक पौष्टिक अनाज है। इसमें देखिएगा प्रोटीन का मात्रा जिसे चावल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, 11.5% होती है, फाइबर होती है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम तथा अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका हरा चना में और भूसा पशुओं के लिए भी उत्तम चारा के रूप में हम लोग किसान भाई उपयोग करते हैं। तो बाजरा की खेती में कम लागत भी बहुत कम लगता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ता है और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए किसानों की आय बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: जी सर, अगर हम बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और बुआई का सही समय क्या है?
3: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा को जो है वह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फसल है। तो बाजरा की खेती कैसे भूमि में है हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसे खेत जो दोमट बलुई एवं बलुई भूमि में है तो उसमें सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। और एक बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि भूमि में जल निकास की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहना फसल को नुकसान पहुँचा सकता है और वर्षा के पश्चात जैसे ही मानसून शुरू हो के पहले प्रथम जुताई में मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से हम लोग खेत को जुताई कर देनी चाहिए। इसके पश्चात हैरो द्वारा एक क्रॉस जुताई करके पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कर देना चाहिए कि कहीं भी पानी नहीं जमे। तो जहां तक हम लोग बीज दर के बारे में बात करेंगे तो बाजरा की बुआई का समय किस्मों के पकने की अवधि पर निर्भर करता है। तो बाजरा में तीन तरह का फसल हम लोग लेते हैं, तो बाजरा में दीर्घायु जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो 80 से 90 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई करते हैं। इसके लिए जो उचित समय होता है वह जुलाई के प्रथम सप्ताह में है तथा मध्यम अवधि जो 70 से 80 दिनों में किस्मों में पकने की होती है उसकी बुआई 10 जुलाई तक हर हालत में कर देनी चाहिए। और जो शीघ्र और जल्दी जो अर्ली जो होती है वो 65 से 70 दिनों में पकने वाली किस्में होती है उसका बुआई हम लोग 10 से 20 जुलाई तक कर सकते हैं। और जहां तक बीज दर का

0: बात है तो बाजरे की फसल के लिए उचित बीज दर 3 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो बाजरा की बुआई हमेशा पंक्ति में करना ज्यादा फायदा होता है। तो बाजरा की यदि बुआई यदि पंक्ति में करते हैं तो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वह 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधा से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बीजों की हम लोग बुआई करेंगे तो उसमें गहराई होना चाहिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई के लगभग एक माह पूर्व 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या सड़ा हुआ जो गोबर हुआ कंपोस्ट का प्रयोग करें। और शुष्क जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है जैसे कि हम लोग जमुई गया ये सब जो क्षेत्र है में अच्छी फसल प्राप्त करने हेतु उर्वरक की जो अनुशंसित मात्रा होती है वह 40-20-20 यानी 40 kg नेत्रजन 20 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास प्रति हेक्टेयर तथा शुष्क क्षेत्रों के लिए जो खाद की मात्रा होती है वो 60-30-20 यानी नेत्रजन 60 kg 30 kg फॉस्फोरस और पोटास 30 kg। तो बुआई के समय फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और एक महीने के बाद जो शेष बची हुई नेत्रजन होती है उसको हम लोग को खेत में डाल देना चाहिए।
1: जी सर, अब हम बात करते हैं उन्नत और अनुशंसित किस्मों के बारे में। तो बाजरा की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
0: जैसा कि किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बाजरा में चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संकर किस्में का उपयोग करें। तो बाजरा में संकर और जो संकुल है जिसको हम लोग कंपोजिट किस्में बोलते हैं वो दोनों तरह की किस्में उपलब्ध है। तो बाजरा के जो उन्नत संकर किस्में अनुशंसित उन्नत संकर किस्में हैं उसमें सबसे अच्छा प्रो एग्रो 9001 है जिसको हम लोग 25 जुलाई से 15 अगस्त तक लगा सकते हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि पकने की अवधि है वो 85 से 87 दिनों में तैयार हो जाती है और 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम लोग इसकी उपज ले सकते हैं। और इसकी विशेषता है कि देर से पकने वाले प्रभेद ये हैं और जो इसमें मृदु रोमिल आशिता इसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू रोग कहते हैं झोंका के प्रति इसमें सहने की क्षमता होती है और ये जैव समर्थित प्रभेद है। तो इसमें आयरन की मात्रा 45 ppm और जिंक की मात्रा 37 ppm होती है। उसी तरह दूसरा प्रभेद जो 2024 में रिलीज हुई है वो है HBH191294 ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त की है और ये इसकी परिपक्वता अवधि ये 84 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह PBS PB1879 और कावेरी सुपर बॉस ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है कावेरी सुपर बॉस ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त इसका बुआई का समय है और इसकी ये भी 50 दिनों में तैयार हो जाती है और ये भी उपज 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है। और इसके दानों में भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा होती है 46 ppm होती है और जिंक की मात्रा 40 ppm। इसी तरह और भी बहुत अच्छी प्रभेद है जो बहुत अच्छा उपज दे रही है जैसे HSB67 या MPM H17 या GHB538। तो किसान भाइयों को जो भी अच्छी कहीं से भी अच्छे संकर बीज मिले वे लगा सकते हैं। इसी तरह यदि किसान भाई संकुल किस्में लगाना चाहते हैं तो उसमें धन शक्ति और PC701 जिसको हम लोग पूसा कंपोजिट 701 कहते हैं ये लगा सकते हैं। इसकी उपज थोड़ा जो संकर किस्में होती है उससे कम होती है।
1: जी सर, अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम बाजरा के प्रमुख रोगों और कीटों के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं और उनके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है और क्या समेकित प्रबंधन किसान भाई बहन कर सकते हैं?
0: जैसा कि किसान भाई बाजरा में जो प्रमुख रोग लगते हैं उसमें मृदा रोमिल आशिता रोग जिसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं और इसमें स्मट जिसको कंडुआ रोग कहते हैं और अर्गट तथा रतुआ रोग ये मोस्टली यही जो रोग हैं वो बाजरा में लगते हैं। तो रोगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो हम लोग बताए हैं प्रतिरोधी किस्म उसका उपयोग करें तो उसका देखिएगा कि उसमें आपको डिजीज बहुत कम लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो बाजरा में लगता है वो डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदा रोमिल आशिता रोग इसको आप लोग कैसे पहचानिएगा? तो इसके पहचानने का सबसे बड़ा लक्षण है कि पत्ती के जो निचली सतह होती है उस पर सफ़ेद अलैंगिक बीजाणु जनन से संक्रमित हरिमाहीन पर्ण आपको दिखाई देगा और गंभीर स्थिति में ये जो संक्रमित पौधे होते हैं वे छोटे रह जाते हैं तथा उसमें देखिएगा कि पुष्प गुच्छ उसमें नहीं बन पाता है और हरी बालियां जैसे लक्षण उसमें आपको दिखाई देंगे। इसका प्रबंधन है कि एक ग्रीष्मकालीन जब ग्रीष्म सीजन रहता है उसमें गहरी जुताई कर दें, या यदि आपको रोग दिखाई दे तो एक दवा आती है मेटा

0: एक्सिल एप्रॉन, जिसको हम लोग एप्रॉन 35 SD, उसको 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप, या चिटोसिन दवा आती है जो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप बीजोपचार कर दें, तो इसे देखिएगा कि इसका जो संक्रमण, इसका रोग आपको उसमें नहीं लगने की समस्या रहेगा। यदि आप दूसरा जो रोग है वो है स्मट, ये इस बीमारी में देखिएगा कि पौधे की जो बाली होती है उसमें दाने हरे रंग एवं बड़े हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण देखिएगा कि बाद में ये जो दाने हरे रहते हैं वे काले पड़ जाते हैं तथा पूरे फफूंद के स्पॉट आपको भरे दिखाई देते हैं। तो ग्रसित बालियों को आप खेत से हटाकर तुरंत जला दें, या पत्ती निकलने की अवस्था में पुष्पगुच्छ पर जिनेब दवा आती है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप 2 छिड़काव कर दें, फिर 15 दिनों के बाद पुनः उसको रिपीट कर दें। तीसरा जो बीमारी है अर्गट, इस रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस रोग में संक्रमित जो पुष्प, जो बाली में पुष्प रहते हैं, मलाई जैसे रंग, हल्के गुलाबी रंग के मधुरस पदार्थ का स्राव होता है। इसमें अनेक जो कुनाइडिया होते हैं, कुछ दिनों के बाद यह पदार्थ भूरा और चिपचिपा हो जाता है और बाद में काले पदार्थ के रूप में बदल जाता है। तो फसल पर जो हम लोग बाली, जो जिसको हम लोग सिट्टी बोलते हैं, उस जैसे ही बनता हो उसमें 2.5 किलो जो जिनेब फफूंदनाशक जिनेब दवा होती है, या 2 किलो मैनकोजेब दवा, कम से कम 3 से 4 छिड़काव जो 3 से 15 दिनों के पर अपना करते रहें। इसी तरह हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख कीट लगते हैं, तो बाजरा में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें देखिएगा कि सूट फ्लाई, जिसको हम लोग परोह मक्खी बोलते हैं, तो इसको पहचानने का है कि जैसे ही ये मक्खी, ये इसका कीट का प्रभाव होता है तो देखिएगा कि बाजरा का जो बीच वाला केंद्रीय तना होगा वो सूखने लगेगा, और परों जो मक्खी का जो सबसे बड़ा ये रहता है कि प्रकोप होने पर अंकुरण के 10 या 20 दिनों के बाद जो फसल पर साइपरमेथ्रिन एक दवा आती है उसका छिड़काव कर दें, तब इससे बचाव हो सकता है। उसी तरह दूसरी प्रमुख जो कीट है वो सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी का जो सुंडी, जिसको हम लोग ग्रब कहते हैं, वो जड़ों पर हमला करता है और पौधों को क्या करता है, मृत्यु के कारण देखिएगा कि जो पौधा और पौधा के बीच में क्या होता है, बीच में पौधा मर गया तो अंतराल आपको ज़्यादा दिखाई देगा, और व्यस्क जो इसका कीट होता है वो जो बाजरे की दुधिया अवस्था में जो फूल और दाना बनता है उसको खा जाता है। तो इसका प्रबंधन का सबसे अच्छा उपाय है बीज के साथ 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एक बाजार में कार्बोफिरोन दवा 3G आती है, उसको जो बुआई के समय उसके लिए कूड़ा जो बनाते हैं उसमें वो डालते जाएं, तो इसका देखिएगा कि इस कीट को वो आपके खेत में नहीं लगेंगे।
1: जी सर, तो आपने जो उपयोगी बातें बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाई बहनों, आप बाजरा की खेती कीजिए और खेती को वैज्ञानिक तरीके से कीजिए तो आपको काफी लाभ होगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का भी विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे

0: बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
0: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: मतलब धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखाड़ पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा।
2: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
3: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
2: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास

0: पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है, सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30-40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15-20% होती है एवं पोटाशियम का 60-70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है जो 1-5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है। तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा। तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
0: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च

0: एसोसिएशन होते हैं या ICRO, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा भी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि हैं, या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्व की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको, उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे, जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग, तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय है। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था। तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है, तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है। नानो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नानो उर्वरक हम लोग बना लेंगे, लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद उमा आपको।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो।
6: टीको क्यों है इतने जीरो?

0: जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स

रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों। लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी

महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है, और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को, या फिर कुछ तरह की अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है, और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है, और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है, और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब
वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं

को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं,

0: थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से यह नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, या आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए

0: बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं खरीफ तिल के बारे में, किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम आप हैं अनुवांशिकी पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
6: तो मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि खरीफ में तिल की खेती क्यों करनी चाहिए?
7: जैसे आप जानते हो कि खरीफ में, खरीफ एक ऐसा सीजन है जहाँ पे आप सबके दिमाग में खरीफ सुनने के बाद सबसे पहले आता है कि हम राइस की खेती, पैडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वैसे किसान भाई जिनके पास राइस लगाने के बाद, पैडी लगाने के बाद कुछ ज़मीनें बच जाती हैं, या कुछ वैसे इलाके बिहार के जो पूरी खरीफ में लगातार वर्षा नहीं हो पा रही है, मतलब आप कह लो वहाँ पे रेनफेड कंडीशन है, उनको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वैसे जगह के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप तिल को भी एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तिल बेसिकली आप देखोगे कि ये कम पानी में बहुत अच्छा पैदावार देती है। आप इसमें देखोगे तो तेल की मात्रा 45-50% होती है। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं तिल की, काले और सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल में जैसे आप देखोगे कि उसकी हम बहुत प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे तिलकुट बना सकते हैं, तिल पट्टी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं। तो इन्हीं विषयों की वजह से आप देखोगे कि जो तिल है हमारा, वो खरीफ सीजन में एक प्रमुख तिलहनी क्रॉप के रूप में इसको हम ले सकते हैं।
6: तो मैम तिल की खेती के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है?
7: बिल्कुल, जैसे आप देखोगे तिल बेसिकली गर्मा तिल भी लगाते हैं, खरीफ में भी लगाते हैं। खरीफ में भी आप देखोगे कि नॉर्मली खरीफ में बिल्कुल टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। आप देखोगे 25-30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है पूरे खरीफ सीजन में, तो ये एक उपयुक्त तापमान है। उसके बाद आप देखोगे कि जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो हमें इसमें एक, आप कह लोगे कि एक तरह की बलवाई दोमट मिट्टी चाहिए जिसमें कि पानी का रुकाव ज्यादा ना हो सके, तो इस प्रकार की मिट्टी है। और जहां पे आप देख लोगे सिंचाई की प्रबंधन

0: सिंचाई करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, आप सिर्फ बारिश के पानी पे भी आधारित हो, और वैसे कुछ इलाके जहाँ पे कम बारिश हो रही है वहाँ पे इस फसल को आप ऑप्शन के रूप में ले सकते हो।
1: और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
0: हाँ, खेत की तैयारी की बात जैसे आप करें तो देखो, आप बीज इसकी बहुत छोटी होती है, बिल्कुल, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि ऐसे छोटे बीज किस्म वाले फसलों के लिए जो आपकी मिट्टी होनी चाहिए, हाथ में जैसे आप उठा के देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम रेतीला भुरभुरा होना चाहिए, तो इस तरीके से सबसे पहले एक बार आप मिट्टी को कल्टीवेटर जो आता है जिसको आप हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दें पहले एक बार, उसके बाद लगातार से 2-3 बार आप हैरो या कल्टीवेटर लगा करके बिल्कुल से कर दे। एक बार पहली गहरी जुताई हो गई, फिर 2-3 बार हमने कल्टीवेटर चला दिया, उसके बाद अंतिम जुताई जब हम पाटा लगा करके उसको प्लेन समतल करते हैं, उसके बाद आप हाथ में मिट्टी उठा के देखोगे जब भुरभुरा हो गया है तो अब आपका खेत तैयार हो गया है तिल के लिए।
1: मैम, जब हम खरीफ तिल की बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती है?
0: बिल्कुल, जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ माँ कि जब हम लोगों ने खरीफ और समर में जब हमने सर्वे किया तो जो जो आपका किसान है उनके लिए सबसे पॉपुलर वैरायटी जो हमने उनके खेत में जाकर के देखा वो हमारी GT5 थी, GT6 है जो हमारी सफ़ेद तिल है, GT10 है और कृष्णा ये हमारी काली तिल की वैरायटी है। उसके अलावा हमारा जो प्रगति जो किसान MTU 75 के नाम से मार्केट में खरीद के लाते हैं ये भी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, शेखर हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, फिर TKG 22 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, और RT 351 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है। तो मतलब आप देखोगे अमूमन यहाँ जो हमारा बिहार का इलाका है मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से किसान का जो रुझान रहता है वो आपका सफ़ेद तिल की तरफ ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत काले तिल के।
1: तो मैम, अब बात करते हैं बुआई की, बुआई कब करनी चाहिए और बीज की दर क्या होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, जब हम बुआई की बात करें तो जैसे हमारा आपका जून शुरुआत हो गया तो जून के 15 दिन आप अपने खेत की तैयारी में लगा दो, उसके बाद 15 जून से 15 जुलाई का जो महीना होता है जो आप बोलते हो कि सही समय पे बुआई, ठीक है, ये बिल्कुल सही समय है तिल की बुआई करने का। किसी वजह से अगर सपोज आपका जून से जुलाई के बीच में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर बारिश बार बार आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, 10-15 दिन पीछे भी जा सकते हो, 15 जुलाई से आप कह लो 16 जुलाई से 20 जुलाई 25 जुलाई तक भी आप अपनी फसल को ले जा सकते हो। और जहां तक बीज की दर की बात हुई तो हम 4-5 kg पर हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ इसमें कतार से कतार की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और गहरा एक तो छोटा छोटा बीज होता है तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ऊपर सतह पे छोड़ नहीं सकते हो, कम से कम 2-3 सेंटीमीटर उंगली से देख लोगे, उसके नीचे जाकर के फिर मिट्टी से ढकोगे। और सबसे बड़ी बात है जब भी आप बुआई करें ना तो हमेशा कतार में करें, बिल्कुल ऐसे छीट देने से ब्रॉडकास्टिंग करने से ना वो उपज नहीं मिलती है आपको, बाद में कुछ एक्टिविटीज करने में जैसे आपको वीडिंग करना है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो गए, कुछ भी करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है।
1: और मैम, कई बार हमें लगता है कि बीजोपचार नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या बीजोपचार करना जरूरी होता है?
0: बिल्कुल, बीजोपचार करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं गर्मी में ना कि हमारे पर्यावरण का जबकि मिट्टी का भी तापमान कुछ बढ़ा हुआ होता है, तो उस तरह की जो मिट्टी के तापमान होती है तो उस केस में हमारे जो कीट हैं मकोड़े हैं जो हमारे डिजीज है उत्पन्न करने वाले कुछ मक्खियां हैं तो वो उस समय उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब हम खरीफ की बात करें तो बिल्कुल ये एकदम एक हमारा डिजीज ट्रायंगल आपने सुना होगा, होस्ट पैथोजन और इन्वायरमेंट, ये तीनों बिल्कुल फेवरेबल होता है, हमारा होस्ट हो गया आपका जो ये क्रॉप हो गया, और पैथोजन तो बीमारी के बारे में आप जान ही रहे हो, इन्वायरमेंट हमारा टेम्परेचर भी है आपका 25-30 डिग्री 35-32 डिग्री के आसपास और ह्यूमिडिटी तो ज्यादा होती ही है, ठीक है। तो इस केस में आपको बीज उपचार करके अगर लगाएंगे जैसे थिरम और कार्बन डजीम 2:1 दो रेशियो आप लेंगे थिरम का एक कार्बन डजीम का और 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का मिला करके और आप ये रासायनिक उपचार करके अपने खेतों में बीज को लगा सकते हैं।
1: मैम, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: बिल्कुल, अब जैसे हम लोग तभी तक एक्टिव हो सकते हैं जब हम भोजन ले, तो वैसे ही

0: खाद की बात जब हम करेंगे तो पौधों के लिए ये एक भोजन है। चलो मिट्टी में जितना हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है वो तो रूट के रूट से पौधों में जा रहा है, लेकिन हमें बाहरी जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर होता है वो भी देना आवश्यक होता है। तो अगर हम देखा जाए तो जैसे हमने शुरू में जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो कुछ लोग उसी में गोबर या FYM लगा करके ही जुताई पाटा लगवा देते हैं। उसके बाद जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो आप कह लो कि नाइट्रोजन 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस आपका 2 से 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारा यहाँ पे 40 केजी जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसको हम एक बार तो शुरुआत में डालें, और एक बार जब पौधा हमारा कुछ एक महीने का करीब हो जाए, 1 से 1.5 महीने का, तब हम दूसरी बार भी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा तिलहनी फसल है, ऑयल सीड, इसके लिए सल्फर का कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑयल का यील्ड, ऑयल का कंटेंट ज्यादा होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिप्सम जो है 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका यूज कर सकते हैं, ताकि क्रॉप में जो उच्च तेल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बराबर बरकरार रहे।
1: मैम, खरपतवार कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: बिल्कुल, इसमें जैसे आपको मैंने बताया, जैसे आपने बुआई करी 7 से 8 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन हो जाता है, और बिल्कुल आपके सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उतने जैसा छोटा छोटा पौधा होता है। इस समय तो आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हो, तो आपको ठीक जब से आपने बुआई की है ठीक उसके 20-25 दिन के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहली निराई और गुड़ाई का, ठीक है, 15 से 20 दिन में सबसे पहली। उसके बाद है कि जब पौधा कुछ थोड़ी दिन और हो जाए, मतलब पहली निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद फिर से आप 30 से 35 दिन के बाद आप दोबारा से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इससे ये हुआ कि आपस में जो पौधे हैं जैसे आपने अगर एक लाइन में कतार की जो बुआई मैंने बोला जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, तो एक ही पौधे आसपास में 3-4 पौधे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको आप हटाओगे और उसके बाद जो आप जितने भी खरपतवार हैं उनको हटाओगे तो सरफेस पे पूरा अच्छे तरीके से पौधे तक धूप जाएगी, उसके बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से अब्सॉर्ब होगा और आपका जो पौधा है वो बहुत हेल्दी होगा।
1: मैम, खरीफ तिल के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं?
0: बिल्कुल
1: जी मैम, और इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
0: जैसे आपको मैं बताऊं कि खरीफ में जैसे एक तो आप सबसे बड़ी देख लो, खरीफ तिल के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि किसान भाई ये ध्यान देंगे कि जो हमारा तिल है ये एक ऐसा तिलहनी फसल है कि जहां पानी जमा हो गया आपके खेतों में तो बिल्कुल आप देखोगे कि पौधा जो है बिल्कुल झुक जाएगा और एकदम ऐसे अधमरा सा झुलसा हुआ हो जाएगा। बिल्कुल आप जैसे देखोगे जैसे इसमें झुलसा रोग लगती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो आप एक बार पहले देखोगे कोई भी दवाई डालने से पहले देखोगे कि या तो बारिश की वजह से खेत में जल जमाव तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से पौधा जो है हमारा वो पीला पड़ गया है, उसमें झुलसा रोग की तरह कुछ निशानियां दिख रही हैं, तो ये कंफर्म करने के बाद ही आप जो भी प्रमुख दवाई है वो डालोगे। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं फाइलोडी डिजीज, तो फाइलोडी जो गुम्मा बीमारी है वो आपका हमारा गर्मा में और खरीफ में दोनों में होता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि खरीफ में नहीं होता, गर्मा में अपेक्षाकृत गर्मा में ज्यादा होता है, बट खरीफ के मौसम में वैसे इलाके जहां पे आपको लगातार 2-3 दिन बारिश हुई उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है 25 से 30 डिग्री, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर आप देखोगे कि 8-10-15 दिन के बाद फिर बारिश हो जाती है। तो ये जो जिस तरीके का जो से भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के इस तरीके का टेम्परेचर और क्लाइमेट का सिनेरियो बनता है वहां पे आपको गुम्मा बीमारी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आप देखोगे कि जब पौधा हमारा बन गया उसमें फलियां बनने लगी तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वेबर की तरह होते हैं जो पत्तियों में छेद कर देते हैं, कभी कभी कैप्सूल बनने के बाद कैप्सूल में भी छेद कर देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रोग और कीट हैं जो आप खरीफ तिल में आपको देखने को मिलेंगे।
1: मैम अब बात करते हैं कटाई और भंडारण की, भंडारण का और कटाई का सही तरीका क्या है?
0: बिल्कुल, जैसे आप किसी भी फसल को आप देखो तो आप जाते हो जब देखते हो कि पौधा हरे से थोड़ा पीला पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो जैसे आप खेत में पहुंचो और देखो तिल के पौधे जो हैं आपके पीले पड़ गए हैं और पत्ते झड़ने लग गए हैं और देखोगे इसमें

0: जो फूल बनती है ना वो एक बार में पहले नीचे बनती है, नीचे से होते होते ऊपर की तरफ जाती है। तो नीचे की जो फूल हमारे पहले बन जाती है उनमें हमारा जो कैप्सूल होता है वो पहले बन जाता है, तो वो ज्यादा सूख जाता है, झड़ जाता है। तो अगर अभी तक इसमें कोई मशीनी कटाई का कोई इस तरीके का हमारे पास कोई प्रयोग अभी नहीं हुआ है और कोई उस तरीके की हमारे पास कोई मशीन भी नहीं है कि हम मशीन से एक ही बार में कटाई कर ले, क्योंकि इसमें जो पौधे में फलियां हैं वो नीचे में पहले पक के तैयार हो जाती हैं, ऊपर लेट से तैयार होती हैं। तो या तो आप देख लो, या तो आप मैनुअली उसको जो पक के तैयार हो गई हैं उनको एक एक करके आप निकाल लो, और नहीं तो अगर उस तरीके से देखो आप कि अगर मध्य जो पौधे का मध्य भाग है और निचला भाग है वो पूरी तरीके से पत्तियां सूख गई हैं, पीला पड़ गया है, तो आप उनको काट सकते हो। काटने के बाद आप छोटे छोटे बंडलों से रस्सियों से बांध करके छोटा छोटा बंडल बना ले। बंडल बनाने के बाद उसको कहीं ऐसे जमीन पे ऐसे नहीं डाल देंगे, क्योंकि देखो आप जान रहे हो कि खरीफ का सीजन है, कि अगर आपने जून जुलाई में बुआई कर ली है तो कम से कम आप सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में काटोगे, और बारिश उस समय भी होती है। तो जमीन पे आप जब डाल दोगे तो आप देखोगे कि कभी कभी अगर बारिश आ गया तो आपके कैप्सूल्स में और पौधों में एक तरीके का सफेद रंग का फफूंद लग जाता है। तो हमें वो नहीं करना, हमें कटाई करने के बाद पौधे को रस्सी से बांध करके खड़ा करके हमें जो भी हमारा थ्रेशिंग फ्लोर है उस पे रखना है, ताकि ऊपर से उस पे धूप चारों बगल से पड़ते रह जाए, ठीक है। उसके बाद फलियां, जैसे आप देखोगे कि जो बाकी बची हुई फलियां थी वो भी धूप से सूख गई हैं, अब खुलने लगी हैं, तो आप उसको तिरपाल के ऊपर डाल करके पौधे को झाड़ोगे तो सारी जो आपकी बीज हैं तिल के वो बाहर आ जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी उमा, कि जब भी गर्मी में आप देखोगे कि तापमान वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो जो हमारे बीज होती है ना उसको मॉइस्चर उसमें कमी होता है, लेकिन जब हम खरीफ की बात करेंगे ना तो मॉइस्चर उसमें बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे कि कटाई करने के बाद बीज जो आप रखो तो बिल्कुल कहीं बांध के किसी पोटली या बोरे में ना रख दो, उसको ध्यान दोगे कि बारिश के बीच में भी अगर कुछ कुछ ऐसा है कि अगर 10-15 दिन के बाद अगर तेज धूप आ रही है तो आप अपना जिस भी बोरे में आपने उसको रखा है उसको बाहर निकाल करके धूप में फैलाए बीच बीच में, ये बहुत जरूरी है ताकि आप के कटे हुए जमा किए हुए बीज के अंदर फफूंद ना लगे।
1: तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं किसान भाई बहनों को यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप जो किस्में चुनते हैं उसको ध्यान से चुने, कौन सा गर्मा तिल का है वैरायटी, कौन सा आपका जो खरीफ तिल का वैरायटी है, उसके बाद समय पे बुआई करें। किसी वजह से अगर बुआई लेट हो जाती है तो 15 जुलाई के बाद आप एक दो हफ्ता ले लें, उससे ज्यादा पीछे ना जाए, क्योंकि आप देखोगे कि टेम्परेचर के हिसाब से भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और कैप्सूल जो उसमें जो फलियां बनती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जितना आपको है खाद डालने का उतना ही डालें। कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई, बहुत ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, बोलते हैं कि, तो उस केस में क्या हो जाता है, तिल के पौधे पूरे झुलस के सूख जाते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि हो सकता है झुलसा बीमारी लग गई है। नहीं, और खरीफ के समय में एक बात जरूर बोलूंगी कि खेत में जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां जब भी आप लगाएं, या तो आप बंड ये बना करके लगाएं, बेड बना के रेस्ट बेड पे लगाएं, ठीक है, या रेस्ट बंड बना करके लगाए, जैसे आप गन्ना आलू ये सब लगाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके खेत में पानी नहीं जमेगा और आपकी तिल की जो खेती होगी वो बहुत बढ़िया होगी।
1: तो किसान भाई बहनों, जिस तरीके से मैम ने बताया उन तरीके का इस्तेमाल करके आप तिल की खेती कर सकते हैं, और कुछ बातों का ध्यान जो मैम ने कहा उन बातों का ध्यान रखिए, आपको खरीफ तिल की अच्छी फसल मिलेगी, आपका मुनाफा अच्छा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू उमा, नमस्कार।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी

0: MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
10: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। ये है FM ग्रीन जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। तो आज जब फिर से एक बार उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में, या फिर यूँ कहें कि मौसमी फल जो होते हैं उसका परिरक्षण हम कैसे करें, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनीता मैम। मैं आपको बता दूं ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर, और साथ ही सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद अनु।
10: मैं मौसमी फल की परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
11: सबसे बड़ी बात तो है जो मौसमी फल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शरीर के लिए फल का नियमित सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये फल जो होते हैं वे विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। इन्हें विटामिन एवं खनिज का आहार में खजाना भी कहा जाता है। और लेकिन ये फल जो होते हैं वो मौसमी होते हैं
10: जी।
11: वो सिर्फ न किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, और यदि उचित रख रखाव नहीं रखा जाए तो वो शीघ्र ही खराब भी हो जाता है। उस मौसम में भी तुराई के बाद यदि हम सही प्रबंधन ना करें, उचित रख रखाव ना करें तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो डाटा है वो आंकड़ा बताता है कि लगभग 33% फल बिना प्रयोग हुए बर्बाद हो जाता है। और यह हम लोग सभी जानते हैं कि फल का उत्पादन में बहुत खर्च लगता है, लेकिन उससे काफ़ी कम लागत करके हम उसको परिरक्षित करके उपयोग योग्य बना सकते हैं। परिरक्षित फल का हम वर्ष भर सेवन करते हैं। मान लो जैसे अभी कोई सीजन है, जो कोई अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी अमरूद का सीजन है तो हम सिर्फ मौसम भर अमरूद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके हम उत्पाद बना लें तो वर्ष भर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनावश्यक जो हमारी बर्बादी हो रहा था वो बर्बादी को बचा सकते हैं। प्लस ये जो हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि साल भर उसका हम सेवन करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो हम पौष्टिक सुरक्षा है वो भी हम हासिल कर सकते हैं। फल का विविध तरह का परिरक्षित उत्पाद जैसे हम अचार, चटनी, मुरब्बा, सुखौता, स्क्वैश, जेली, जैम, ये सब बनाकर घर में आराम से रख सकते हैं।

0: करते हैं, और इन सब के अलावा ये सब उत्पाद को यदि हम अपने प्रयोग के अलावा बेचते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी साधन होता है। और ग्रामीण महिलाएं बड़े आराम से इन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उनको विभिन्न तरह का उत्पाद बना सकते हैं। यदि उनको अपना पेड़ बाग नहीं हो तो वो चूँकि मौसम में सस्ता होता है, वो सस्ता खरीद कर भी उसके उत्पाद को बना करके रख सकती हैं और विभिन्न तरह तरीके से अपने व्यक्तिगत उपयोग में या फिर बाजार में बेच करके उसका उपयोग करके फ़ायदा ले सकती।
1: जी जी मैडम, अब बात आती है कि फल परिरक्षण में उपयोग होने वाले परिरक्षक के विषय में जानना, तो कौन कौन से परिरक्षक होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
0: हाँ, कुछ जो परिरक्षक है जो कि यदि आप फल सब्जी परिरक्षण में काम करना चाहते हैं, साल भर विभिन्न तरह के जो मौसमी फल हैं उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, परिरक्षण करना चाहते हैं, विभिन्न तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो कुछ परिरक्षक है जिसकी की जानकारी रखना चाहिए और आप आवश्यकता अनुसार उसे मार्केट से ले भी सकते हैं। जैसे कि एक साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड का उपयोग हम जो जैम जेली मुरब्बा स्क्वैश ये सब बनाने में किया जाता है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड की जगह पर हम नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास नींबू का रस है तो नींबू का रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये इसका अचार चटनी सॉस ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग सॉस चटनी स्क्वैश तैयार करने में किया जाता है। मतलब सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग जनरली जो गहरे रंगीन खाद्य पदार्थ होता है उसको परिरक्षण में करते हैं। इसके बाद आता है पोटासियम मेटाबासल्फाइट, इसका जो भी हल्के रंगीन स्क्वैश वगैरह होता है उसमें हम लोग पोटासियम मेटाबासल्फाइट का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः यही चार तरह के परिरक्षक हैं जो कि घरेलू स्तर पर हम लोग यदि फल का परिरक्षण करना चाहें तो इनका उपयोग होता है,
1: कर सकते हैं। जी, तो परिरक्षित उत्पाद को रखना बहुत ज़रूरी होता है मैडम, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो कैसे रखें, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इन उत्पादों को रखने में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परिरक्षित उत्पाद है इसके लिए जो हम जिसमें हम भंडारण इसका करेंगे उस बोतल को उसको बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उन बोतलों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़े से बर्तन में जितना आपके पास बोतल है उसके अनुसार वो बड़े से बर्तन में उसका ढक्कन को हटा करके और ढक्कन हटा कर उसमें ढक्कन डाल देते हैं और ढक्कन सही तो उसको लगभग आधा घंटा उबालते हैं, फिर उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं और बोतल जब सूख जाता है तो उसके बाद ही उसमें हम लोग उत्पाद को रखते हैं और हल्के गर्म अवस्था में ही उसको हम लोग सील भी करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास सीलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो पिघले हुए मोम में मोम पिघला जो दिवाली वगैरह में जो मोम बच जाता है या मार्केट में भी मोम मिलता है उस मोम को ले आइए, उसको पिघला दीजिए और पिघले हुए मोम का उपयोग करके हम लोग बोतल को ढक्कन को बंद करते हैं तो वो बिल्कुल शील्ड हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है उसके अंदर और हमारा उत्पाद खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग बोतल में उत्पाद को भरते हैं तो लगभग एक इंच जगह ऊपर खाली रहना चाहिए, और मान लीजिए कभी किसी तरह का उसमें अशुद्धि रह जाता है तो फर्मेंटेशन वगैरह होता है तो उससे बोतल टूटे नहीं, इसलिए हमेशा ऊपर में एक इंच का जगह आपको खाली रखना चाहिए। और इस तरह से आप बोतल में यदि साफ सुथरा करके भंडारित करते हैं तो उत्पाद आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए धूप नहीं है, आप नहीं सुखा पा रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो आपको एक पोटासियम मेटाबासल्फाइट है उसके घोल से भी बोतल को हम लोग अच्छे से तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं तो फिर वो भी काम हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम गर्म पानी में खौला करके तेज धूप में उसको सुखा लें। इसके अलावा फल संरक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिस फल का भी हम लोग संरक्षण करें उसका जो परिरक्षित उत्पाद बनाना चाहते हैं वो स्वस्थ हो, अच्छे किस्म को हो और सड़े गले या चोट खाए फल का प्रयोग ना करें। उसके बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लोहे का चाकू या बर्तन का प्रयोग ना करें, संरक्षित उत्पाद को हाथ व गीले चम्मच से ना निकालें, और बर्तन जिसमें या जार जिसमें कि आपका उत्पाद उसको बार बार ना खोलें, और बोतलें जो है हमेशा साफ धुली और सूखी रहना चाहिए। और जो मान लीजिए कि कोई बोतल का ढक्कन है यदि आप पुराना बोतल उपयोग कर रही हैं उसमें यदि छेद हो या जंग लगा हो तो उसका प्रयोग नहीं कीजिए, उसके जगह पे प्लास्टिक का जो सिंथेटिक फ्लैप है उसका उपयोग कीजिए। फिर प्लास्टिक या धातु के बर्तन में परिरक्षण ना करें, इसके लिए कांच की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एयर टाइट बोतलों का ही इस्तेमाल करें।
1: जी, मैम अब बात करते हैं अमरूद के बारे में, तो अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में बताएं, जैसे कि अमरूद के

0: जेली भी बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी?
1: अमरूद का तो जो मुख्य रूप से जो जो प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि जनरली यूज करते हैं वो अमरूद की जेली है। और अमरूद की जेली हम लोग उसके जो जूस है उससे हम लोग बनाते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से डेवलप मैच्योर विकसित फल का चयन करते हैं जो कि बिल्कुल जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डम्भक फल। वो डम्भक फल हमें लेना चाहिए और इसको खूब या खूब पका भी अमरूद नहीं होना चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का जो फल हो वो डम्भक होना चाहिए। उसको थोड़ा सा काट के दी हम खाएं तो वो थोड़ा मीठा स्वाद लगना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद उस अमरूद को अच्छी तरह से पानी से हम लोग धो लेते हैं और गोलाई में उसके टुकड़ों को काटते हैं। फिर इसमें जो बर्तन में हम इसको उबाल रहे हैं उस बर्तन में अमरूद के टुकड़ों को डाल देते हैं, उसके ऊपर से पानी इतना डालते हैं कि वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद उसको हम लोग पकाते हैं, जब वो पूरा सीज जाता है, पक जाता है, हम हाथ से टच करके देखते हैं कि अमरूद के टुकड़े अच्छी तरह से गलकर पानी में मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग कपड़े से उसको छान करके
0: मतलब पेस्ट बन जाता है।
1: नहीं पेस्ट नहीं, उसको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अमरूद को उबाल रहे हैं तो उसको चलाना नहीं है, उसमें पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तब जो यदि पेस्ट बनेगा तो अमरूद का जो जेली बनेगा वो थोड़ा गंदा धुंधला टाइप का बनेगा। यह ध्यान रखना है कि अमरूद उसका टुकड़ा उसमें गले नहीं, टूटे नहीं, लेकिन वो पक जाए गलने लायक। उसको हाथ में निकाल करके हम ऐसे देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको बार बार चलाना नहीं है, यदि उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूटेगा तो हमारा जेली का गुणवत्ता खराब होगा, वो थोड़ा धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट जेली नहीं बनेगा, है ना। और बीच बीच में हल्का सा चलाना है कि वो पेंदा में वो सटे नहीं, जले नहीं, आपका जो अमरूद है टुकड़ा है वो जले नहीं, उस तरह से उसको हल्का सा उसको चलाना है बीच बीच में
0: जी।
1: इसके बाद अब इस टुकड़ों को हम लोग अच्छे से कपड़े से छान लेते हैं। छानने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि रस जितना देर लगे उतना देर आपको अपने से लगने दीजिए रस को चूने में, उसको दबा करके रस निकालने की कोशिश नहीं कीजिए।
0: अच्छा,
1: वो जनरली से गांव में कुछ मेज है, टेबल है, टेबल को उलट दीजिए, उसका जो चारों पाया है उसमें कपड़े को बांध दीजिए और उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए और कपड़े को बांधे हैं उसमें आप अमरूद के टुकड़े को डाल दीजिए, टप टप धीरे धीरे धीरे जूस नीचे जो बर्तन रखे उसमें गिरेगा और उसको रस को गार करके नहीं निकालना, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि यह भी यदि आप करेंगे तो भी आपका जेली का गुणवत्ता सही नहीं होगा, जेली थोड़ा गंदला हो जाएगा, ठीक है। और चाहे आपको जितना समय लगे उसको अपने से होने दीजिए, ठीक है। उसका जब पूरा रस निकल गया तो अब रस का मात्रा को ज्ञात कर ले, नाप लें कि कितना रस है। यदि आप उसके पेक्टिन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं। पेक्टिन का टेस्ट करने के लिए शीशे का ग्लास या परखनली लें, घर में तो शीशे का ग्लास ही रहता है, वो ले लीजिए। उसमें एक चम्मच रस लेते हैं, उन पर रस का दुगुना स्पीड डाल देते हैं। रस जब मिल जाए तो उसमें बाहर टेबल पर उड़ेल देते हैं, गिरा हुआ जो उसमें अवक्षेप देखेंगे, जो अवक्षेप बना है यदि अवक्षेप बड़ा हो तो जूस में 900 ग्राम, यदि साधारण हो तो 700 ग्राम और टूटा फूटा पतला हो तो 400-500 ग्राम के लगभग चीनी डालते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह देखिए कि रस में अपने हाथ से लेके देखिए चटचटापन है क्या नहीं। यदि रस में चटचटापन है तो बरसाती अमरूद में, जैसे कहीं बरसात अमरूद का समय है, तो जनरली आप यह ध्यान रखिए कि 500 से 600 ग्राम चीनी हम लोग एक लीटर जूस में देंगे। यदि आपके पास यह साधन है कि यदि हम पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये इतना थोड़ा चीनी की मात्रा हम लोग 500 से 600 ग्राम डालेंगे, या नहीं तो आप अलग से पेक्टिन थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं तो आपका अमरूद का जेली सही जमेगा, ठीक है। इसके बाद आप हम लोग जो चीनी की मात्रा दे के उसको पकाते हैं, जब जूस और एक थर्मामीटर मिलता है उस थर्मामीटर को से आप उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं। जब जूस का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुंच जाए तो उसमें हम लोग जितना चीनी है उसमें हम लोग डालते हैं, चीनी और रस डाल करके उसको उबालते हैं और 100 डिग्री पहुंच जाए, मान लीजिए नहीं थर्मामीटर है तो जब अच्छे से वो खोलने लगे तो समझिए वो टेम्परेचर पहुंच गया है। तो 4-5 ग्राम साइट्रिक एसिड प्रति केजी के हिसाब से हम लोग जूस में मिला देते हैं। इसके बाद उसका जब टेम्परेचर 106

0: 107 डिग्री पहुंच जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं। और यदि मान लीजिए थर्मामीटर नहीं है तो कैसे उतारेंगे, तो उसका है कि एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप जो जेली पका रही हैं उस जेली को थोड़ा डालिए, यदि वो उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके जम जाएगा और सॉफ्ट रहेगा, तो इसका मतलब वो रेडी है। यदि इससे ज़्यादा पका देंगी तो जेली जम जाएगा, कड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए उतारने का तापमान बहुत ध्यान से देना होता है कि इस तरह से हम लोग उसका चेक करें। दूसरा है कि यदि प्लेट में उसको डालेंगे तो उसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं होना चाहिए, तो भी हमारा जेली तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये हम लोग जाँच करेंगे कि हमारा जेली का उतारने लायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये दो पॉइंट पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम जेली का अंतिम बिंदु का कैसे जांच करें, दूसरा कि जब जेली को चला रहे हों या फिर जब जेली का जब अमरूद का रस निकाल रहे हैं, पका रहे हैं जब, उस वक्त और रस जब निकाल रहे हैं तो उस वक्त उसको दबाए नहीं। ये दो चीज़ का जेली की गुणवत्ता को सही रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको उतार करके और जेली को स्वच्छ चौड़ी मुंह वाले बोतल के शीशे में भर देते हैं और उसके बाद उसमें मोम को पिघला करके उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका एक लेयर हो जाता है। और फिर जब मोम जमने वाला हो, देखिए जब जेली ठंडा जाए तब हम लोग मोम डालते हैं, और जब मोम जमने से पहले, मोम को पूरा जमने नहीं देंगे, मोम यदि पूरा जम गया तो साइड से छोड़ देता है, मोम को पूरा जमने के पहले उसके ढक्कन को लगा देते हैं और किसी सूखे व ठंडे जगह पर उसको हम लोग भंडारित करते हैं। इस तरह से हमारा अमरूद का जेली तैयार हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा यदि अमरूद का आप जो जेली का जो ऊपर आपका पल्प बच गया, इसका यदि कुछ आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, और एक दिन उसे छोड़ने के बाद उसको आटे के साथ, जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो, शक्तिमान मक्का हो या फिर मिश्रित आटा हो, उसके साथ जैसे आप घरों में खजूर बनाते हैं उस तरह से चीनी वगैरह या गुड़ डाल करके छान के बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं और बहुत पौष्टिक भी है। इसके अलावा आपके पास यदि बेकिंग की सुविधा है तो उसके आप बिस्किट भी इसका बना सकती हैं, और यदि इसके किसी मच्छरदानी में डाल करके उसके बीज को हटा देते हैं तो उसका जो पल्प बचा उस पल्प से को आप चीनी के साथ पका करके जैम के रूप में भी बना सकते हैं, और पूरे उत्पाद को बीज सहित यदि उसको आप पीस देते हैं तो उसको भी आप चीनी या गुड़ के साथ पका करके संरक्षित करके रख सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद है। मतलब कि यदि आपके पास पशु है तो ये जो बचा हुआ है उसको आप पशु को भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसके उत्पाद बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारी महिलाओं खास तौर पर आप भी ये बना सकते हैं अपने घर पर ही। और तो आज का हमारा विषय था अमरूद का परिरक्षित उत्पाद, तो इसके बारे में आज आपने जाना। साथ ही मैडम ने बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी फल का परिरक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर,
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम

अरंडी की खली 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव डॉली बेबी।

0: पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
1: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
1: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
1: जी,
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी। इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहां आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहां डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत

0: उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
1: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
0: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेल बागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
0: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
1: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
0: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी बेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
4: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
5: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे

0: ये धीरे लुप्त हो जाएगी।
1: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना, और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
0: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
1: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें। लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: अरे मिनट,
0: कहाँ चले आ रहे हो? है देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान, मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित

0: वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और कृषि में आज हम किसी फल या सब्जी के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के फसल के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती से आय के नए अवसर के बारे में। हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है लेकिन खेती नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर स्वप्नील भारती। मैम आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
7: मैम आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि फूलों की खेती आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है?
8: ये बहुत ही अच्छा सवाल है उमा, और सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज

0: के समय में क्या हो गया है कि फूलों की खेती सिर्फ एक पारंपरिक कृषि गतिविधि नहीं रह गया है, अभी क्या है कि तेज़ी से ये जो फूलों का डिमांड है हमारा वो तेज़ी से बढ़ रहा है, ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और ये उद्यमशीलता आधारित क्षेत्र बन चुका है। यदि हम कुछ वर्ष पहले की बात करते हैं तो फूलों का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ धार्मिक कार्यों या फिर पूजा पाठ या फिर घर की सजावट इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता था, यहीं तक सीमित था हमारा फूलों का उपयोग। लेकिन अगर अब वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो समाज में जो हमारा है या फिर समाज में और बाज़ार में इसकी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं, अभी इसकी उपयोगिता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी फूलों की मांग हमारी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो हमारा शादी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट्स हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सब में हमें फूलों की सजावट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके साथ साथ कोई भी शादी होती है हमारे घर में या फिर कोई पूजा का समारोह हो रहा है, उस समय भी हमारा जो फूल है वो एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे ज़िंदगी का, जीवन शैली का। इसी प्रकार होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जो कट फ्लावर्स होते हैं, जो डेंटल वाले फूल होते हैं, जो ताज़े होते हैं, उनकी उपयोग से वातावरण जो है वो आकर्षक होता है, साथ ही साथ प्रीमियम लुक देता है वो होटल्स में। तो इससे क्या है कि जो वो होटल का जो भाव है वो भी बढ़ जाता है, जो कमरे का रेंट, वो सब चीज़ें भी हम फूलों की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें। इसके अलावा हाँ, साथ ही साथ जो फूल है उसका सिर्फ हम सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परफ्यूम या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी इसका कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ फूलों की, गुलाब हो गया हमारा, रजनीगंधा है, जैस्मिन है जिसे हमारे प्रदेश में चमेली के नाम से हम जानते हैं, तो इनका इत्र या फिर इनसे जो गुलाब जल बनाते हैं हम, जल या फिर इत्र, उसका उपयोग हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हम इसके साथ साथ गुलाब या फिर गुलाब हो गया, कार्नेशन हो गए, ऑर्किड हो गए, इन सब के डंठल भी हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अर्जित हो रही है और किसानों की जो आय है वो सिर्फ हमारा सीमित नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ देशी मुद्रा के लिए, वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसानों की जो आय है वो भी हमारी वृद्धि हो रही है। तो इसी बढ़ती मांग को अगर देखा जाए तो किसान को जो पारंपरिक फसलें हैं हमारी उसके तुलना में अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो वो आपको अधिक लाभ दे रहा है, क्योंकि ये कम समय में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और साल भर आप खेती कर सकते हैं, आप बार बार फूल तोड़ सकते हैं। 4-6 महीने में ही आपने कितनी बार डंठल तोड़े, कितनी बार आपने फूल तोड़े, तो इस वजह से जो है हमारा डिमांड जो है, जो मार्केट में जो उपलब्धता है फूलों की, हमेशा बरकरार रह रही है और हमारे किसान इसे अच्छा अर्जित कर रहे हैं, अच्छी कमाई उनकी हो रही है।
1: तो मैम, हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन कौन से फूलों की ऐसी किस्में हैं जो सबसे अधिक लाभदायक माने जाते
0: हैं? हाँ, ये सबसे ज़रूरी है हमारे किसी भी प्रकार की जब हम खेती करते हैं किसान भाई, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में हम कौन सा कहाँ पर ये अनुकूल है, कौन सा ताप, ये एरिया जो है हमारा, वो बिहार प्रदेश जो है हमारा, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हैं। तो इसमें आप कम लागत में, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे जो प्रमुख हमारा जो फसल है, जो सबसे प्रमुख जो फूल है वो है गेंदा, जिसकी मांग जो है वो हमारी पूरे वर्ष किसान भाई बनी रहती है, चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, सजावट हो, किसी भी चीज़ों में हमारा गेंदा जो है वो हमेशा उसकी मांग बनी रहती है। इसको लगाना भी, और सबसे है कि ये तीनों सीज़न में, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये तीनों सीज़न में हमें इसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इससे प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो है वो है गुलाब। गुलाब भी बहुत अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका जो कट फ्लावर है वो हमारा ईस्टर में, क्रिसमस में, मदर्स डे में या फिर न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में, इन सब समय में हमारा कट फ्लावर जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे साल कोई ना कोई फंक्शंस, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, या फिर शादियों का समारोह चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उन सब में भी हमें कट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका डिमांड हमको पूरे साल मिलती रहता है। गुलाब में ही आपको जो देसी गुलाब है उसकी भी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे गुलाब जल बना सकते हैं, या फिर आप उसे एक पंखुड़ी बना सकते हैं, फिर आप उसको मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं।

0: उसका फिर रोज़ शरबत बना सकती हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये फसल भी। एक बार आप इस फसल को लगाएंगे और आपको 7 वर्षों तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी जो फसल है किसान भाई वो है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस साल में एक बार आप लगा सकते हैं, सितंबर माह से हम लगाना उसको शुरू करते हैं, लेकिन आप 6 से 8 महीनों तक इसके स्पाइक को काट के बेच करके आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आपका आता है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी एक बहुत प्रमुख फसल है और इसकी खेती बहुत ही आसान होती है। इसे आपने एक बार लगाने के बाद में आप 3 वर्षों तक इसमें फूल ले सकते हैं, जिसमें आप कट के फ्लावर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लूज़ में यानी खुले यानी ढीले फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत माला बनता है शादियों में, जो हमारे वरमाले होते हैं वो भी होता है, वो आप बना करके इसको बेच सकते हैं, या फिर भगवान को अर्पित करने के लिए भी फूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये है। उसके अतिरिक्त रजनीगंधा और ग्लैडियोलस में 2 प्रमुख चीज़ें हैं, जो कि है कौर्म और इसका कंद। उसे भी आप बेच करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत प्रमुख फसल, एक ऑर्किड है, जरबेरा है। इन दोनों की खेती हम पॉली हाउस में करते हैं और ये और ताकि पॉली हाउस में करके और फिर इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्लावर होता है, जो फूलों की गुणवत्ता होती है, वो पॉली हाउस में बहुत अच्छी रहती है। तो इसी वजह से हम इनकी खेती पॉली हाउस में करते हैं और फिर हम इसे बाज़ार में बेचते हैं, जो कि सजावट के रूप में काफ़ी काम आता है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्किड एक ऐसा फूल है जिसकी जो वास लाइफ यानी जो आप उसको रखते हैं या फिर उसको आप कहीं सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम वो 10 से 15 दिनों तक वो फूल बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब फूलों की खेती आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो मैम, क्या छोटे और सीमांत किसान भी फूलों की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
0: हाँ जी माँ जी, बिल्कुल। हमारे किसान भाई, आप किसी भी कोई भी सीमांत हो या फिर कोई भी छोटे किसान हो, कितनी भी भूमि आपके पास हो, आप उसमें खेती करके आराम से अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसान भाइयों के पास, हमारे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर भूमि नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 1 से 2 बीघा भी ज़मीन है, उसमें भी आप गेंदा या रजनीगंधा जो मैंने आपको बताया, अगर उन फसलों की आप खेती करते हैं, तो जो आप पारंपरिक खेती जो आप कर रहे हैं दलहन का, तिलहन का, गेहूं, ये सब चीज़ों का, उसकी तुलना में हमारे किसान भाई आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण, सबसे ज़रूरी जो कारण है, वो ये है कि इन फूलों की अगर हम तुलना करें किसी भी प्रकार की फसलों से, तो इनका जो डिमांड है, इनकी जो बाज़ार में मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मूल्य बहुत बेहतर होता है। और अगर हम किसी सीज़न से अतिरिक्त इसको हम उगा पा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छा भाव आपको बाज़ार में मिलता है। साथ ही साथ इसकी तुड़ाई, कोई फसल जब हमारा होता है जैसे दलहन या तिलहन, उसकी तुड़ाई हम एक ही बार कर पाते हैं, किंतु इन फूलों की खेती में क्या है, आप जितना उनकी तुड़ाई करेंगे आपको उतने फूल आपको प्राप्त होते जाते हैं। तो इनकी तुड़ाई आप बार बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, 3 से 4 कटाई तो आप कर ही लेंगे। तो इसकी वजह से आपको नियमित आय भी मिलती रहता है। आपको आय सिर्फ एक बार नहीं डिपेंड होना पड़ता है, आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके अलावा हम पॉली हाउस या फिर नेट हाउस के उपयोग से भी किसान हमारे जो हैं वो नियंत्रित वातावरण में, जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप उच्च गुणवत्ता वाले फूल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इससे मौसम जो है वो निर्भर नहीं, मौसम पे कम निर्भर करेगा हमारा फूल का जो है, और उससे आप ऑफ सीज़न जब हम उसको उगाते हैं तो आपको कीमत बहुत अच्छी मिलती है मार्केट में।
1: तो मैम, फूलों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ जी उमा, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है कि मिट्टी और जलवायु, क्योंकि मिट्टी और जलवायु का अगर वो सही चयन कर रहे हैं, तभी हमारे जो कोई भी फूल है या फिर कोई भी फूलों की फसल है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस ज़मीन में। क्योंकि क्या है कि हर फसल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी को सैंडी लोम जो बोलते हैं हम, उस वो मिट्टी चाहिए, किसी को क्ले मिट्टी चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो प्रदेश है, उसमें हमारी जो मिट्टी है, जो गंगा के किनारे की मिट्टी

0: होती है ना बहुत अच्छी अच्छी मानी जाती हैं। इसमें अगर हम फूलों की खेती किसान भाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे गुणवत्ता वाले आपको फूल प्राप्त होंगे। उससे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपके जो बीज होंगे वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही बीज होने चाहिए, या फिर बीज नहीं तो अगर आप पौधे खरीद कर ला रहे हैं मार्केट से तो वो जो पौधा भी है उसका वो पौधा काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब भी हम बीज या फिर पौधा लेकर आते हैं तो एक प्रिकॉशनरी के तौर पर हम किसान भाई क्या करेंगे कि उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे कोई भी फफूंद नाशक। वैसे तो जो जो हम बीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो बैवेस्टीन या फिर थायरम के साथ में वो ट्रीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको एक सेफ साइड पे रहना है तो हम पौधों को उसके जड़ को या फिर बीज जो है उसको हम या फिर कंद होता है हमारा कंद बल्ब कुछ भी जो भी हमारी जो सीड प्लांटिंग मटेरियल है उनको हम कोई भी फफूंद नाशक के साथ में आधे घंटे तक उसमें घोल बनाकर रखते हैं। उसके बाद उसको छाया में सुखाने के बाद तभी आप इसे खेत में लगाएं। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा, जैसे कि जो भी मिट्टी से जनित आपकी बीमारी होगी वो पौधों में आपकी नहीं लगती हैं। साथ ही आपको सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि जो आपके पौधे हैं उनकी जो उनका जो विकास है उनकी जो वृद्धि है वो संतुलित रहे और फूलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती रहे। इसके अलावा जो आपकी एक सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाज़ार में मांग मांग और मूल्य, ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। उसी के तहत हमारी कौन सी चीज़ किस एरिया में हमारी कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है उसी के बेसिस पर उन्हें हमारे उन्हें उस उसी पर्टिकुलर क्रॉप का उसी पर्टिकुलर फसल का खेती चयन करना चाहिए करने के लिए। उसके अलावा जो है सबसे जो लास्ट में अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कटाई के बाद जो प्रबंधन वो कैसे करेंगे, उसमें पैकिंग आपको करनी होती है। कटाई के बाद हम कोई भी फूल को तुरंत पानी में डालते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे दूर मार्केट में भेज रहे हैं तो आपके पास परिवहन उसके आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए उसे दूर मार्केट में भेजने के लिए। उसके बाद तुराई का समय आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब तुराई करें। अगर आपको बहुत दूर मार्केट में भेजना है तो आप कोशिश करें कि रात में ही शाम में ढलते ही तुराई कर ले ताकि रातों रात आपका फूल चला जाए मार्केट में और सुबह होते ही आपकी फूल बिक्री के लिए शुरू हो जाए। अगर आप लोकल मार्केट में उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप अपनी तुराई कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसे स्थानीय मार्केट में भेज करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम फूलों की खेती से जुड़े जो नए अवसर हैं वो कौन कौन से हैं?
0: हाँ, ये जो एक किसान भाई हमारा जो एक सेक्टर है वो थोड़ा पीछे रह गया है जिसके बारे में जानकारी जो है वो अब नहीं है। सिर्फ फूलों की खेती जो है वो सिर्फ फूलों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है। हमारा जो फ्लोरिकल्चर का जो क्षेत्र है वो अब आय के कई नए आय के यानी कि जो हमारा कमाने का बहुत अच्छा नवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी से पैदा कर रहा है और हमारे किसान और युवाओं इस चीज़ की थोड़ी उन्हें कम जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कट फ्लावर का इंडस्ट्री। कट फ्लावर यानी कि हमारा डंठल वाली जो फूल होते हैं उस फूलों की आवश्यकता महानगरों में जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रहती है, काफ़ी ज़्यादा मांग है उनकी। अब सब महानगरों के अलावा भी अब छोटे छोटे शहरों में भी धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ने लगी है क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलों की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसी भी फंक्शन में कहीं भी चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो शादी हो गाड़ियों को ही सजावट करना हो क्योंकि शादियों में तो उस समय अब क्या है कि लोगों को देखने के लिए लोगों की आँखों को वो अच्छा लगना चाहिए तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे कट फूलों की आवश्यकता जो है वो बढ़ते जा रही है। दूसरा जो हमारा लूज फ्लावर होता है, किसान भाई लूज फ्लावर मतलब कि जो खुले फूल होते हैं जैसे कि हमारी ये गेंदे की, तो गेंदे का माला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक्री होता है तो गेंदे का माला या फिर गुलाब के माले शादियों के लिए भगवान पे चढ़ाने के लिए या फिर किसी भी त्यौहार किसी भी समाव किसी भी पूजे वाले कार्यक्रम में सजावट के लिए हमारा इन खुले फूलों का काफ़ी डिमांड है। तो ये दो चीज़ों की तो सब लोगों को आइडिया है कि हाँ कट फ्लावर भी होता है क्लूज भी होता है, पर तीसरा हमारा आता है वैल्यू एडिशन जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही इसमें ये सबसे अच्छा आय का स्रोत है और विशेष करके हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं जब खेत से फूल कट जाते हैं उसके बाद, उसमें वैल्यू एडिशन का यही मतलब हो गया, जब हमने तुराई कर लिया उसके बाद हम

0: फूल में क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप उनसे गुलाब है तो गुलाब जल, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में आप उसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चाहे तो ड्राई करके ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि मेहंदी में, शादियों में मेहंदी में, या फिर संगीत में, या फिर हल्दियों में, हल्दी के कार्यक्रम में आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती हैं। फिर चौथा जो हमारा सेक्टर है, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है क्योंकि इसमें क्या है कि अभी पार्क हो गया या फिर होटल हो गया या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री भी होते हैं या फिर सरकारी या फिर बहुत सारी जैसे हमारी परियोजनाएं हैं CPWD की, NTPC की, या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उन सबको अब सजावट चाहिए, सबको ग्रीनरी चाहिए। तो ये ग्रीनरी कैसे आएगा? ये ग्रीनरी आएगा आपका लैंडस्केपिंग करने से। तो लैंडस्केपिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें हम सजावट करते हैं और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इनकम का। इसमें आप छोटे से एरिया को भी अगर आप सजावट करते हैं, उसका लॉन बिछाते हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं। फिर एक आता है ऑनलाइन डिलीवरी का प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन डिलीवरी में फर्न्स एंड पेटल्स बोल करके भी एक है जो कि पौधों को भेजता है। लोग गिफ्ट ऑर्डर करते हैं, लोग पौधे, अभी फ्लिपकार्ट में हो गया, सब जगह अभी जितने भी हमारे ऑनलाइन डिलीवरीज है। तो आप चाहें तो आप अपना एक अलग से भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग से भी पौधे सप्लाई कर रहे हैं, सीड सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं। तो एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी हमारा बहुत अच्छा आय का स्रोत है। और सबसे लास्ट में जो है वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर हमारी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता आ रही है, तो हम एक्सपोर्ट करके और हम उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम मतलब ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है जिनके पास खास तौर से छोटे ज़मीन है, छोटी जगह है, वो फूलों की खेती से बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जिनके पास भी छोटा जगह हो, कम भूमि हो, आप छोटे मोटे फूल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है। हमारा गेंदा हो गया, आप गेंदे से शुरुआत कर सकते हैं, आप रजनीगंधा से शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की हो रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कम जिसके जिसमें लागत भी आपकी ज़्यादा ना लगे, वैसे फूल लेकर के आप ये व्यवसाय जो है वो शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
1: तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी ये वार्ता आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है। बस ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से डिमांड को समझें, बाजार को समझें और खेती शुरू करें। मैम बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें बताई।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का भी।
1: तो दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सा

अलग से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं और ध्यान दें कि गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय खेड़ा,
3: जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 36 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव रखते हैं। वर्तमान में डॉक्टर खेड़ा एनजेंडर हेल्थ नई दिल्ली में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने देश में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर खेड़ा ने नई दिल्ली विश्वविद्यालय से MBBS और MD की डिग्री प्राप्त की है, साथ ही गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में डिप्लोमा भी किया है। भारत के अलावा उन्होंने ओमान और म्यांमार में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कार्य किया है। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने अनुभव को साझा करने के लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाइए कि HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है और ये महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर की कैसे वजह बन सकता है।
4: थैंक यू वेरी मच यू नो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि HPV जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जैसे हमारे मालूम है कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से एक वायरस होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की एक खास बात है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको नजला जुकाम कहते हैं, कुछ वायरसेस आपके आंख में इन्फेक्शन करते हैं। तो ये जो वायरस है जिसका नाम HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है।

0: और इसकी जो वजह है रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, और इसका भी जो ट्रांसमिशन भी होता है ये थ्रू सेक्सुअल रूट होता है ये। तो इतना ही जानना काफी है कि एक तरह का ये वायरस है, और जैसे बाकी वायरसेस होते हैं जुकाम खांसी के, डायरिया के, आंख में इन्फेक्शन के, स्किन में इन्फेक्शन के, तो ये भी एक तरह का वायरस है। पर इसकी खास बात यह है कि आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अटैक करता है।
1: सर, आजकल HPV वैक्सीन की काफी चर्चा हो रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये टीका लड़कियों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
0: ये इसलिए लड़कियों में बहुत जरूरी माना जाता है। वैसे तो इस HPV वैक्सीन को हम लड़कों में भी दे सकते हैं, लड़कियों में भी दे सकते हैं, पर जो हमारी जो साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि ये जो HPV इन्फेक्शन होता है, यदि लड़कियों में ये बना रहता है इन्फेक्शन, तो उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लड़कों में यदि HPV इन्फेक्शन होगा तो उनको वॉट्स वगैरह होते हैं, पर लड़कियों में क्योंकि उनकी सर्विक्स होता है, उनका बच्चेदानी होती है, सर्विक्स को आम भाषा के लिए बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, तो ये एक तरह का बच्चेदानी का कैंसर है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये स्टडीज बताती हैं कि यदि HPV इन्फेक्शन हो गया है आपको, तो आपको काफी पॉसिबिलिटी है सर्वाइकल कैंसर होने की। और ये सर्वाइकल कैंसर एकदम नहीं होता, इसको कुछ समय लगता है, 8 से 10 साल इन्फेक्शन रहेगा, कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहेगा, तो उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना रहती है। क्योंकि तो ये भी माना गया है साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से कि 70 से 80% केसेस में जो इन्फेक्शन होता है वो अपने आप डिसअपियर भी हो जाता है, सिर्फ 10 से 20% लोगों में वो इन्फेक्शन बरकरार रहता है, और जिससे प्री कैंसरस लीजन बन जाते हैं और सर्वाइकल कैंसर बन जाते।
1: तो सर, आपकी नजरों में लड़कियों को ये वैक्सीन किस उम्र में लगवानी चाहिए? मतलब आइडियली किस उम्र में लगवानी चाहिए, और उसी उम्र में लगवाना ज्यादा फायदेमंद क्यों रहता है?
0: आइडली तो देखो, जब भी आपका सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं हमारे देश के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी 10 से लेके 12 या 10 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि 10 या 11 साल की उम्र में लग जाना चाहिए इंजेक्शन। पर जैसे अभी सरकार ने बोला है कि हम सब 14 साल की लड़कियों को लगाएंगे, तो वो भी ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत वेरिएशन है ना सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, तो एक एवरेज जो है 10 से 14 साल की जो उम्र है वो बहुत ही राइट एज है जहां पर HPV वैक्सीन लगाने से आपको सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
1: और अगर सर हम आगे लगाएं, जैसे मतलब 20 की उम्र के बाद, तो क्या इसका असर कम होता है, ऐसा कुछ है, या हम तभी भी लगवा सकते हैं?
0: नहीं, इसको आप बाद में भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर यही है क्योंकि आपको इन्फेक्शन यदि आपको 12 साल की उम्र में हुआ है और वो वायरस पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो फिर उसका जो असर होगा वैक्सीन का असर नहीं होगा। पर यदि आपका HPV का एक्सपोजर ही 20 साल की उम्र में हो रहा है और आपने 19 साल में लगा लिया है, तो आप बच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये HPV इन्फेक्शन को बचाने का तरीका है, प्रिवेंशन का तरीका है
1: जी,
0: वैक्सीनेशन।
1: तो सर जैसे हमारा ये इंटरव्यू हम गांव दराज में ब्रॉडकास्ट करेंगे और वहां के कम्युनिटी में ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगा, तो वहां पे अगर हम सर देखें तो माता पिता काफी झिझक महसूस करते हैं कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए, चाहे हम अभी कोविड का देख लें या अभी हम कोई भी केस देख लें, तो काफी झिझक महसूस करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, सब लोग हमारे श्रोताओं को, कि HPV वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, वो लगवा सकते हैं? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये ना वैसे मैं एक ब्रॉडली एक मैसेज देना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में, और आपको बताना भी चाहूंगा कि अब कुछ सालों से हमारे देश में वैक्सीनेशन के बारे में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों की वैक्सीन एक बहुत ही आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का। जैसे आज के दिन जो बच्चों के टीके हैं हमारे देश में, 100 में से 75 बच्चों में टीके लग रहे हैं पूरे, जो आज से 20 साल पहले सिर्फ 40% बच्चों में लगते थे। तो कहने का मतलब लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, लोग ये जान रहे हैं कि वैक्सीन एक बहुत आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का, और जो भी बीमारियां यदि हम बचा सकते हैं टीकाकरण से उसको बचाना चाहिए। उसी संदर्भ में यदि हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को यदि आप बचाना चाहते हैं तो HPV वैक्सीनेशन एक बहुत ही आसान तरीका है। इसका टीका लगवाने से आपको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा, जो वैक्सीन आजकल बन रहे हैं वो सब वैक्सीन बहुत ही सेफ बन रहे हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी सेफ। और दूसरा जो है, जो सरकार दे रही है वैक्सीन, उसमें काफी ध्यान दिया जा रहा है क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बन के आ जाता है, उसकी क्वालिटी का बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्शन होता है और उसकी कोल्ड चेन वगैरह मेंटेन होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो HPV वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है देश में,

0: ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होता है और ये बिल्कुल सेफ है।
1: सर, जब हम इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि काफी अफवाह और गलतफहमियां जो हैं लोगों में सुनने को मिलती हैं, तो आप ऐसे कौन से भ्रम होंगे जो जिनको आप क्लियर करना चाहेंगे, लोगों के बीच में साफ करना चाहेंगे?
0: देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे अपने

0: होती है कि उस बुखार खांसी जुकाम को या लूज मोशन को उससे लिंक करने की, कि हमने कल टीका लगवाया था इसीलिए मुझे खांसी हो गई। पर अदरवाइज भी तो बच्चों को खांसी हो जाती है, अदरवाइज भी बच्चों को बुखार हो जाता है। तो इस तरह के जो दिमाग में आपके जो वहम होते हैं कि हमको ये बुखार हो गया, हमको खांसी हो गई, उसका कोई टीके से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि इस टीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कुछ टीके, जैसे हम बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस का जो टीका लगाते हैं बच्चों में, उसका हमें मालूम है कि उसको लगाने के बाद बुखार आता है, पर एचपीवी वैक्सीन के बाद तो बुखार भी नहीं आता है कुछ। तो ये बिल्कुल सेफ है। और बाकी इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी दर्द हो सकती है, और वो भी सबको नहीं होती, किसी को दर्द हो सकती है, और वो भी हर एक का अपना अपना एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है। कई लोगों को सुई देख के डर लग जाता है, कई लोगों को सुई लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। तो थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, बट फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही सेफ इंजेक्शन है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब एक्सेप्शनल केसेस में तो कोई भी चीज किसी को रिएक्शन कर सकती है ना, मतलब एक में से करोड़ों में से एक बच्चे को कोई चीज रिएक्शन कर सकती है। अब किसी को तो कोई खाने की आइटम भी खाते हैं उससे भी रिएक्शन हो जाता है, तो वो
1: बिल्कुल
0: एक्सेप्शन वाली बात है। पर यदि ऐसा होता भी है तो उसके लिए, क्योंकि अभी जो इंजेक्शन है आपका ये हॉस्पिटलों में लग रहा है, तो आपका पूरा यदि कोई रिएक्शन होता है किसी को तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है। पहले तो इसमें कोई रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, पर यदि कोई 1 in million, 1 in crores यदि कोई पॉसिबिलिटी किसी को रिएक्शन किसी चीज से होता है या इंजेक्शन के डर से एकदम रिएक्शन हो जाता है, तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है हॉस्पिटल।
1: तो सर, एक कम्युनिटी में एक जो बहुत मिथ है वो ये है कि ये वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन लगवाने से बांझपन हो सकता है। आप क्या कहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है?
0: नहीं, कोई भी जितने भी साइंटिफिक एविडेंस हैं उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ एचपीवी की बीमारी को बचाता है, इसका बांझपन से बिल्कुल भी कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक तो कोई ताल्लुकात नहीं है इसका।
1: ये बहुत जरूरी था क्लियर करना, क्योंकि अभी हम कम्युनिटी में देखते हैं तो बहुत ज्यादा झिझक इन्हीं कारणों से रहती है कि क्या पता आगे बच्चा ना हो, बांझपन हो जाए। तो धन्यवाद, आपने इसको क्लियर किया। तो पर सच, अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो अगर कम्युनिटी में, गांव दराज में इसको लोग लगा सकते हैं, ये कौन से ये सटे वैक्सीन, और लोग कहाँ जाके इसको लगवा सकते हैं?
0: एक एक तो बड़ी खुशी की ये बात है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एचपीवी वैक्सीनेशन मुफ्त कर दिया है हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत ही महंगा इंजेक्शन है, ये प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में हैं वहां पर इस इंजेक्शन की जो कीमत है वो 2,000 रुपया है एक इंजेक्शन। पहले ये इंजेक्शन सिर्फ जो जिन लोगों के पास पैसे थे सिर्फ वही लोग लगवाते थे, आम आदमी एचपीवी वैक्सीन नहीं लगाता था। अब क्योंकि सरकार ने सोचा कि ये एक बीमारी को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, तब उन्होंने जितने भी सरकारी हमारी फैसिलिटीज हैं, चाहे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो, आयुष्मान मंदिर जिसको हम आजकल कहते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, अर्बन हेल्थ सेंटर्स हो, सब मेडिकल कॉलेजेस, इन सब जगह में अभी एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है और आप वहां पर जा सकते हैं। और 14 साल की लड़कियों को अभी टारगेट किया जा रहा है, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की संभावना ज्यादा होती है, तो इसीलिए सरकार सब 14 साल की लड़कियों को ये टीका मुफ्त मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि आप इसकी जो फैसिलिटी अवेलेबल है इसको आप अवेल करें।
1: ये तो काफी अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि गांव दराज में अभी भी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2,000 का वो वैक्सीन लगवा पाए। तो सर, इसका डोज कितना लगाना होता है? एक ही डोज इसका चाहिए होता है या और भी डोज चाहिए होते हैं इसके?
0: देखो, पहले जो वैक्सीन अवेलेबल था आज से 5 साल पहले, तब इसका 2 डोज 3 डोज लगाई जाती, पर अब नया जो वैक्सीन आया है, जो नई रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से एक वैक्सीन की डोज भी काफी है। तो अभी सिंगल वैक्सीन डोज दी जा रही है, एक वैक्सीन से आप सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं, इतना आसान तरीका है ये।
1: सर, वैक्सीन पर हम महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर के बचाव की बात करें तो महिला मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कदम उठा सकती हैं कि थोड़ा वो सेफ रहे, सेफ साइड पे रहे फॉरएवर?
0: तो उसके लिए ना एक तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली जैसे बताया कि आप एचपीवी वैक्सीन लगा लिया आपने, तो एचपीवी वैक्सीन से आपकी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि जो जो होते हैं अपना सफाई

0: का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं, जिसको
1: हाँ
0: बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलो या ओवरऑल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें भी ये कैंसर की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए अपनी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें, और उस समय जब पीरियड्स आते हैं पूरा सफाई का ध्यान रखें। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और तीसरी बात है यदि आप सर्वाइकल कैंसर को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग होती है जिसको रिकमेंड करते हैं कि हर 35 ईयर्स के एज के बाद आपको दो दो बार अपनी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करनी है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में एक पैप स्मियर लिया जाता है, ये मालूम पड़ जाता है कि आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर में, सर्वाइकल एरिया में कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहा। तो यदि आप उस लीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसका इलाज भी तुरंत हो सकता है और आपको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को वहां भी खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब सर्वाइकल कैंसर को देखिए, सबसे पहले यदि आप टीका नहीं लगवा पाए किसी वजह से, अवेलेबल नहीं था, और 35 की एज है आपकी, तो 35 की एज के बाद दो बार अपने को सर्वाइकल के लिए, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए नजदीक के हॉस्पिटल में जाओ। तो वहां पर वो स्क्रीनिंग भी बिल्कुल मुफ्त होती है और वो आगे सर्विक्स का, और उससे बता वहां कुछ दाना या यदि कोई दाग मिलेगा तो उसका तुरंत इलाज भी हो जाता है।
1: सर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम चाहते हैं कि जाते जाते आप अपने हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें, ताकि माता पिता हैं वो इन सब चीजों को लेके ज्यादा अवेयर हो और ये सब ये अब सही फैसला ले सके।
0: मेरा तो एक ही मैसेज होगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले ये जो टीका था सिर्फ जिनके पास पैसे थे वो लगाते थे क्योंकि बहुत महंगा था, अभी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तो मैं सोचूंगा कि अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पर इस जो फ्री सुविधा है इसको अवेल करें और अपने को कैंसर से मुक्त रखें।
1: थैंक यू सो मच सर, हमारे श्रोताओं के सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें इतने इनसाइट्स दिए। थैंक यू सर।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत

0: सरकार 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: लोग धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखाड़ पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति है तो यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यूं कहें, यह मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है। ये भी हम कह सकते हैं,
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है और जिसे हम बड़ी आसानी से, इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में एक झोपड़ी बनाकर इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का, इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व पाया जाता है। इसलिए इसका यदि हमारे हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण से मुक्त रहेंगे।
0: तो ये तो आपने बताया मैम कि कुपोषित अगर बच्चे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जो उनके कुपोषण को दूर करेगा, लेकिन इसके अलावे जो आम लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हुए, जो जवान लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कुपोषित नहीं हैं, तो उनके लिए क्या उपयोगिता है इसकी?
1: मशरूम की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे

0: कि हम बात करें तो हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ कुपोषण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, कल कारखाने चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है। घटती हुई कृषि योग्य भूमि से हमें बढ़ती हुई आबादी के लिए उम्दा किस्म का खाद्य पदार्थ चाहिए, तो इसके लिए मशरूम काफ़ी उपयोगी है क्योंकि मशरूम ऐसी खेती है जो कि खेती बिना खेत की होती है। इसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि किसी बंजर भूमि पर भी यदि हम एक झोपड़ी बना देते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर जगह होता है मतलब छत और जमीन के बीच का जो जगह होता है उस जगह का उपयोग करके इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम यदि भूमि नहीं भी है तो भी हम इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है उसके साथ साथ रोजगार का अवसर घट रहा है, तो ऐसे मशरूम एक स्वरोजगार का उत्तम साधन हो सकता है। इसके अलावा जिसे हम देखते हैं कि हमारे युवाओं का कृषि के प्रति रुझान घटता जा रहा है क्योंकि वो कृषि का मतलब समझते हैं कि जेठ के धूप में कृषि में काम करना, सावन के मूसलाधार बारिश में खेती में काम करना और पूस की ठंड में खेती में काम करना, लेकिन इस सारी तथ्यों को मशरूम खेती में हम गलत साबित करते हैं क्योंकि इसमें आपको प्रकृति में एक्सपोज होकर खेती नहीं करना है बल्कि किसी कमरे के अंदर मौसम की मार से बचते हुए खेती करना है। तो ये इसलिए हमारे युवाओं का रुझान भी मशरूम की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इसमें आपका जो खेती में हम पैसा लगाते हैं तो यह कोई ज़रूरी नहीं जितना हम पैसा लगाए हैं उतना पैसा हमें मिलेगा, और वो मिलता भी है तो एक फसल का जो क्रॉप सीजन होता है वो ख़त्म होने के बाद ही मिलता है, लेकिन मशरूम ऐसा फसल है जिसमें आज हम पूंजी लगाते हैं तो एक महीना से डेढ़ महीना के अंदर हम यदि हम 100 रुपया लगाए हैं तो वो कम से कम 200 से 250 रुपया हमको 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल जाता है। तो इसमें हम कहते हैं आमदनी हमारा 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है, तो यह इसलिए भी हमारे युवाओं का रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो पारंपरिक फसल का उत्पादन होता है उसमें खर्च काफ़ी लगता है लेकिन उसके कंपेरिजन में मशरूम के उत्पादन में खर्च काफ़ी कम लगता है, इसलिए यह एक लाभकारी फसल है। इसके अलावा यह छोटे किसान और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान है क्योंकि इसकी खेती के लिए काफ़ी कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो हमारा दूसरे फसल से जो उत्पादन के बाद जो कृषि अवशेष बचता है उस कृषि अवशेष का उपयोग करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। और इस खेती को चूंकि हम कमरे के अंदर करते हैं इसे पाला आंधी तूफान पशुओं आदि से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके यदि हम इसको बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो इसको निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण जरिया ये हो सकता है क्योंकि घर घर की महिला खेत नहीं जा सकती है, लेकिन यदि घर के पिछवाड़े में ही या घर के किसी कमरा में खेती करना हो तो वो हर घर की महिला कर सकती है, इसलिए हम महिलाओं के खाली समय का सदुपयोग करके उनको सशक्त कर सकते हैं। इस तरह से मशरूम न केवल हमारा एक पोषक आहार है, एक कुपोषण का जरिया है, बल्कि यह कई मायने में हमारे लिए उपयोगी है।
1: जी, तो ये आपने जाना कि इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, कैसे ये हमारे लिए खास है, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर धूप में और जो आंधियों में नहीं रहना पड़ता, यानी हमें भूमि पर नहीं जाना पड़ता है, बस अपने आप कमरे में ही इसे उगा सकते हैं, छोटे से कमरे में छांव में ही आप इसे उगा सकते हैं। और मैम, इसके औषधीय गुण के बारे में हम जानना चाहें क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग जो है हर चीज़ के औषधीय गुण को जानना चाह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है और इसमें इससे बचाव के लिए क्या हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलेगी, पौष्टिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी, तो इसके पौष्टिक एवं औषधीय गुण के बारे में बताएं।
0: मशरूम जो है वह सभी उम्र के लोगों के लिए स्वादिष्ट व उत्तम पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें का प्रोटीन ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन अमीनो अम्ल के कारण उच्च श्रेणी का माना जाता है और इसे हम आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए इसके प्रोटीन को सुपाच्य प्रोटीन कहा जाता है। उत्तम प्रोटीन के कारण कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का भी उचित अवशोषण होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण दांतों की समस्याओं से दूर करता है। बी कम्प्लेक्स ग्रुप में इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है जो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसमें लौह तत्व की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध होने की अवस्था में होती है, इसलिए यह जो एनीमिया है उस एनीमिया के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। इसमें भस्म और रेशे उपलब्ध होने के कारण पेट का जो अम्लीयपन होता है या कब्ज होता है उसकी समस्या को यह दूर करता है। नियासिन और पेंटो

0: हनिक अम्ल जो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह चर्म रोग तथा हाथ व पैरों के जलन को समाप्त करने में सहायक होता है। मशरूम में पाया जाने वाला इंगेस्टेरॉल पाचन क्रिया के दौरान विटामिन डी में बदल जाता है, अतः यह हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा भोजन है और हड्डी के हमारे मजबूती के लिए भी अच्छा है। इसमें कम कैलोरी, कम वसा, कम स्टार्च, कम कोलेस्ट्रॉल तथा अधिक पोटेशियम सोडियम अनुपात के कारण यह उन व्यक्तियों के लिए वरदान है जो मोटापे, अधिक तनाव, हृदय रोग एवं मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। अतः यह मशरूम न केवल स्वादिष्ट है, न केवल पौष्टिक है, बल्कि औषधीय उपयोगिता और गुणों से भरपूर है। इसलिए इसे FAO ने एक मशरूम को संपूरक आहार का दर्जा भी दिया है।
1: संपूरक आहार यानी कि इसमें हर वो चीज़ मिलेंगी आपको जो आपके शरीर को जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आप जानते हैं कि बिहार का जो जलवायु है आप भी इससे अवगत हैं, तो क्या इसमें हम ये जान सकते हैं कि मशरूम के कौन कौन से प्रजाति हमारे इस बिहार की जलवायु में लगा सकते हैं हम, और ये अच्छा जो फल है वो हमें मिलेगा इसका?
0: मशरूम कैसे बिहार में हम लोग चार तरह की प्रजातियां जो कि लगा सकते हैं, एक बटन मशरूम, दूसरा ऑयस्टर मशरूम, तीसरा मिल्की मशरूम और चौथा पुआल मशरूम। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है वह बटन मशरूम का होता है, लेकिन बटन मशरूम की तकनीक थोड़ी जटिल है। उसमें हम लोग को कंपोस्ट बनाना होता है और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हम लोग करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट बनाने में छोटी विधि से यदि हम कंपोस्ट बनाए तो लगभग 15 दिन लगता है और लंबी विधि से बनाए तो 1 महीने लगता है। और लेकिन इसमें हमारे किसान भाई ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपोस्ट बनाने की जो खुले में प्रक्रिया होती है तो उसमें काफ़ी जो इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है और कंपोस्ट उम्दा क्वालिटी का नहीं बनता है। और लेकिन हमारे किसान भाई बना रहे हैं, भागलपुर में भी कई किसान भाई बना रहे हैं। तो आप यदि बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के लास्ट में आप इसके लिए कंपोस्ट बना सकते हैं, और कंपोस्ट बना करके फिर कंपोस्ट को निर्जीवीकृत करके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद उसको निर्जीवीकृत अखबार से ढक देते हैं, फिर जब उसमें माइसेलियम रन कर जाता है तो फिर उसमें हम लोग केसिंग करते हैं, फिर केसिंग के बाद उसमें फलन आता है। इसके इसी और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो खेती होती है हमारे यहाँ वह है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की तकनीक काफ़ी सुगम है, काफ़ी आसान है, और इसे बहुत कम कीमत पर आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। लेकिन है कि इसका मार्केट में बहुत डिमांड नहीं है, इस कारण से क्या कि इसको हम लोग लाइफ बहुत कम है, इसको हम कोई प्रोसेस करके इसको ताज़ा हम नहीं रख सकते। जैसे कि बटन मशरूम को हम हार्वेस्ट के बाद भी 1 सप्ताह तक रख सकते हैं, उसको हम लोग उसके कुछ रसायन है सोडियम पोटासियम मेटाबोसल्फाइट, उस रसायन के साथ उसको यदि ट्रीट कर दें तो इसको हम लोग 1 सप्ताह तक रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर मशरूम को हम किसी रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वह गलने लगता है। इसका मार्केट नहीं है, लेकिन यदि इसको हम ताज़ा इसका यदि मार्केट उपलब्ध हो, यदि ताज़े रूप में हम इसका सेवन करें तो यह काफ़ी उपयोगी मशरूम है, काफ़ी पौष्टिक है और इसकी खेती बहुत आसान है। तो हम लोग जो भागलपुर में मुख्यतः इसकी खेती होती है ऑयस्टर मशरूम की होती है, और इसका भागलपुर में इसका लोकल में बाज़ार उपलब्ध है। जो भी किसान करते हैं उनको यदि पहले सीजन में जो किसान करते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग की समस्या होती है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे लोग जान जाते हैं उनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आती है। प्लस दूसरा कि इसका उत्पाद बना के रख के ऑफ सीजन में इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी भी तकनीक काफ़ी आसान है, इसके लिए गेहूँ का भूसा या पुआल की कुट्टी को हम लोग मौसम में भंडारित कर लेते हैं, जिस मौसम में उपलब्ध हो सस्ते में, उसके बाद इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकृत करने की अलग अलग प्रक्रिया है, भाप द्वारा, ताप या फिर रसायन द्वारा निर्जीवीकृत करके इसके नमी की जांच करते हैं। पर्याप्त मात्रा में नमी होने के बाद इसमें हम लोग मशरूम का बीज या स्पॉन से बिजाई करते हैं और इसको पीपी पैक में पन्नी में उसको पैक करके किसी कमरे में झोपड़ी में निर्जीवीकृत झोपड़ी में इसको रख देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माइसेलियम पूरी तरह से रन हो जाता है, 20 से 25 दिन के अंदर पहला फसल निकलता है, और फिर पहला फसल तोड़ने के बाद हम उसमें लगातार नमी देते रहते हैं, फिर दूसरा फसल आता है, दूसरी फसल तोड़ने के बाद भी हम लगातार नमी देते हैं, फिर तीसरी फसल भी आती है, उसका 3 फसल लेने के बाद भी उसमें फसल आता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 3 फसल के बाद उसे या तो पशुओं को खिला देना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट पीट में उपयोग कर लेना चाहिए या जमीन के अंदर डाल दें कि वो कंपोस्ट में बदल जाए।
1: जी,
0: और इसकी तकनीक काफ़ी आसान होती है। इसकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने

0: सबौर में है, भागलपुर में स्थित है, वहाँ संपर्क करके आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कई प्रशिक्षित किसान भाई भी हैं जो कि केवीके से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गांव में भी प्रशिक्षण देते हैं, तो उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके आप इसकी खेती कर सकते हैं।
1: अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो इस मौसम में ऑस्टर मशरूम जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं, तो इसकी विधि के बारे में जैसा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे इसके उत्पादन की विधि होगी और कैसे वो इसे लगा सकते हैं।
0: ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आप गेहूं का भूसा ले लें। यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो गेहूं का भूसा ही लें। गेहूं के भूसा को आप रात भर फुलो भिगो दें पानी में। सुबह में जैसे आप धान को उबालते हैं धान से चावल बनाने के लिए, इसी तरह से उसको किसी बर्तन में लेकर के उसको उबाल लें। जब पूरी तरह से भाप आने लगेगा तो उसको उस बर्तन को उतार के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी टोकरी में, साफ़ सुथरा टोकरी में पलट दें, उसका पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे किसी प्लास्टिक सीट पर, साफ़ सुथरा निर्जीवीकृत प्लास्टिक सीट पर उसे फैला दें छांह में जहां हवा लगता रहे। फिर जब उसमें नमी लगभग 70-75% नमी बचे तब उसमें आप 10 kg जैसे आपका भूसा है तो 1 kg मशरूम का स्पॉन्ज चाहिए, स्पॉन्ज को उसमें मिला दें और पीपी बैग ले लें। पीपी बैग में आप मशरूम और स्पॉन्ज को पैक कर दें, फिर उसमें रबर को बंद करके लगभग 15-20 छेद कर दें, 2-3 छेद ऊपर, 2-3 छेद पेंदा और बाकी 10-12 छेद बीच में आप कर दें। उसके बाद किसी कमरे में या तो मचान बना दें या फिर शीका बना दें या फिर ज़मीन पर आधा टुकड़ी ईटा को रख के उसको रख दें और कमरे को फिर बंद कर दें। और लगभग आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे उसमें पूरा माइसेलियम रन कर गया है, तब फिर आप उसमें उसका देखेंगे कि पिन हेड निकलता है। पिन हेड निकलने के बाद 3 दिन के अंदर वो मशरूम का रूप ले लेता है, फिर आप उसको तोड़ लें और फिर नमी देते रहेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फसल ले सकते हैं। आपसे हमने बात किया बटन और ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा बिहार में मैंने बताया था 4 प्रजाति का मशरूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम है और आपका मिल्की या दुधिया मशरूम है और है पेडिस्ट्रा मशरूम। मिल्की या दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं आपका अप्रैल मई में उसकी खेती करते हैं। और जो इसकी खेती के लिए भी आपको ऑयस्टर और बटन दोनों के बीच का तरीका अपनाते हैं, दोनों कुछ भाग ये ऑयस्टर का लेता है, कुछ भाग मिल्की का, ये बटन का लेता है। इसके अलावा चाइनीज या पुआल मशरूम है, उसका भी खेती हम लोग मई जून में करते हैं।
1: तो ये तो आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की विधि क्या हो सकती है, और इसके अलावा भी मैम ने बताया आपको कि उपयोगिता इसकी क्या है, औषधीय गुण क्या है, मशरूम के पौष्टिक गुण क्या है। और मैम अंत में ये हम जानना चाहेंगे कि मशरूम से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि हम उत्पादन तो कर लिए लेकिन अब बारी आती है व्यंजन बनाने की, तो कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं।
0: मशरूम के लिए व्यंजन बनाने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों और बहनों को कि बहुत लोग मशरूम खरीद के ले जाते हैं फिर कहते हैं कि उनको बनाने का प्रक्रिया सही ढंग से नहीं आता, कहते हैं कि बहुत बेकार लगा। एक्चुअली ये मशरूम में एक प्रकार का गंध होता है, यदि आप प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वह गंध रह जाएगा तो वो खाने में आपको फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि जब मशरूम तोड़ के आप हार्वेस्ट करके ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं तो उसे गुनगुना पानी कर लें, गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए मशरूम को डूबो के छोड़ दें, फिर उसे जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले का रस निचोड़ते हैं उसी तरह से उसको निचोड़ करके उस पानी को फेंक दें। फिर आप उसको धो करके मनचाहा तेल मसाला देकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप जैसे आप मटन बनाते हैं उस तरह से तेल मसाला देकर मटन जैसा इसकी सब्जी बना सकते हैं, आप इसका भुजिया बना सकते हैं, आप इसका खीर बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका भरवा पराठा बना सकते हैं, इसका आप मशरूम कचौड़ी बना सकते हैं, मशरूम का आप कोफ्ता बना सकते हैं और मशरूम का अचार बना सकते हैं, मशरूम का बड़ी बना सकते हैं, मशरूम का खोता बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। इसलिए मशरूम का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है, आप जो सोच सकते हैं, बस यही एक लाइन में आप समझें, मशरूम का जो आप सोच सकते हैं, जो भी डिश सोच सकते हैं वो सारा डिश आप मशरूम का बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप मशरूम मंचूरियन की ही बात करें, जैसे मंचूरियन आप बनाते हैं तो मंचूरियन में जो आपका इन्ग्रीडियंट है वो सारा एसेसरी इन्ग्रीडियंट, मतलब जो उसको मशरूम मंचूरियन बनाने में सहायक सामग्री, वो सारा सामग्री सेम रहेगा, मुख्य इंग्रेडिएंट के जगह पे आप मशरूम को ले लें तो आप मशरूम मंचूरियन बना सकती हैं। जैसे मशरूम पकौड़े की बात करें, फूलगोभी के पकौड़ा आप जैसे बनाती हैं वैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना सकती हैं। तो फूलगोभी की के जगह पे आपको मशरूम लेना

0: है, बाकी जो बेसन मसाला लेना था वो वैसा ही लेना है। तो मशरूम का आप जो सोच सकते हैं हर डिश मशरूम का बन सकता है, लेकिन हर ये ध्यान रखें कि उसको हम लोग थोड़ा पानी के साथ प्रोसेसिंग करके उस पानी को फेंक देंगे ताकि उसका जो एक गंध है वो गंध दूर हो जाए।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि मशरूम के कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं, और साथ ही आज का हमारा विषय भी था कि कुपोषण निवारण में मशरूम की क्या उपयोगिता है। तो मैम ने बखूबी बताया आपको कि इसके गुण क्या हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पौष्टिक गुण हमें मिलते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या क्या इसमें विटामिन मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, जो वसा फैट और इसके अलावा प्रोटीन सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं मैम ने बताया जैसे कि ये पूरक एक सब्जी है, पूरक आहार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर मशरूम मिल जाएगा तो सोचिए कि बच्चों के इस शारीरिक विकास के लिए कितना फ़ायदा होगा ये। तो इसीलिए अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत अब बच्चों को मशरूम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरक आहार में शामिल हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसकी उपयोगिता के बारे में बताई और ख़ासतौर पर कुपोषण निवारण के लिए। तो आगे भी आप सभी से मुलाकातें होंगी, हम एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें 90

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
6: है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना।

भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाए। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
5: CIET NCERT presents ऑडियो बुक आवर वंडरस वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर ग्रेड 5।
6: पेज नंबर 94, चैप्टर 6, सम यूनिक प्लेसेस। At the left-hand corner of the page, there is a QR code which will direct you towards the additional information about the text. At the top of the page, there is a picture depicting children in different attire from different parts of India, standing in a natural landscape. The background portrays a river flowing through a valley with mountains and trees. On the far left, a camel stands near the river, hinting at a desert region. Shanti's parents seem busier planning their summer vacation. "Are we doing something different this year?" she asked. "Maybe we could go to more places rather than staying in one place. I really want to see more of our country now that I'm growing up." "Appa," father, and "Amma," mother, smiled. "Shanti, your wish might just come true. We have big plans this time. A trip to a few different places starting from the southernmost tip of India." At the bottom of the page, there is a picture depicting a lush green island with rocky cliffs and palm trees surrounded by the blue ocean. A large white ferry boat is transporting a car and a bus on the water, moving away from island's sandy beach. Page number 95. At the right-hand corner of the page, there is a keynote. India has around 75% of the world's wild tigers. From Kanyakumari, Shanti asked. "No, Shanti," Appa said to her surprise. "Find out. Look at the map for the southernmost point of India." Shanti found out from the map that Indira Point is the southernmost tip of India. It is a long chain of islands known as Andaman and Nicobar Islands. "Do you know? An island is a land surrounded by water on all sides. There are over 1,000 islands in the sea around India that are part of our country." There is a picture of an island surrounded by seawater. Find out. Question number 1. In which sea are the Andaman and Nicobar Islands located? Answer the question in the given space. Question number 2. Name the other islands you know.

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।

0: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर,
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्तनपान दिवस के बारे में। जी हां, माँ का पहला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है ये आज भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सी वजहें होती है जिसकी वजह से माएं आज भी अपने बच्चों को अपना गाढ़ा पीला दूध पिलाने से वंचित रहती है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का दिया सबसे अनमोल उपहार होता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होता है। लेकिन क्या हर नवजात को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिल पाता है? आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर स्तनपान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बिहार में मई 2026 में जारी की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट की अगर हम माने तो बिहार में शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिलने की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन फिर भी जीवन शैली में बदलाव चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भागलपुर सहित बिहार में अब भी 91.9% बच्चों को ही उसके जन्म के समय एक घंटे के भीतर स्तनपान कराया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। और अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो 56.8% और ग्रामीण क्षेत्र में 91.4% बच्चों को जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का दूध मिल पाता है। और अगर हम वही पिछले सर्वेक्षण जो कि 2019-21 में हुआ था, अगर उसके आंकड़ों को अगर हम समझें तो मात्र 31.1% ही ऐसे बच्चे थे जिन्हें माँ का गाढ़ा पीला दूध पहला मिल पा रहा था। लेकिन अब थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन अब भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 48.1% बच्चे को आज भी जन्म के एक घंटे के अंदर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। जन्म के पहले घंटे में मिलने वाला माँ का दूध शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और राज्य में 62.5% बच्चों को शुरुआती 6 महीने में स्तनपान कराया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, जो जन्म के बाद माँ के पहले दूध से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान क्यों जरूरी होता है। बच्चे के जन्म के बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसे अक्सर बच्चों का पहला टीका भी कहा जाता है, जो उन्हें अनेक बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चों को संक्रमण से बचाने और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसलिए बच्चों को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए आसानी से पचने वाला संपूर्ण आहार होता है। इसमें बच्चों की जरूरत के अनुसार जो भी पोषण तत्व होते हैं वो मौजूद होते हैं, और शुरुआती महीनों में ये बच्चों के स्वस्थ विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसे एक घंटे के भीतर ही स्तनपान उसका शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या बच्चों को जन्म के तुरंत बाद शहद, घुट्टी या कोई दूसरा तरल पदार्थ देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसे नियम होते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे शहद देते हैं या कोई भी ऐसे तरल पदार्थ देते हैं। तो विशेषज्ञों की अगर माने तो नवजात को जन्म के बाद शुरुआती समय में केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, और बिना किसी चिकित्सीय सलाह के कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। माँ और बच्चे को जन्म के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके एक दूसरे के संपर्क में लाना चाहिए, और साथ ही स्तनपान शुरू कराना भी बेहद उपयोगी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 6 महीने तक

कि किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से माँ का दूध देने की सलाह दी जाती है। अगर हम स्वस्थ शिशु की बात करें तो उन्हें जन्म से 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध देने की ही सलाह दी जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग अब इस बारे में जागरूक होने लगे हैं और इसे विशेष स्तनपान कहा जाता है। इस दौरान बच्चे को पानी की भी सामान्यतः जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ का दूध ही उसकी पोषण और तरल पदार्थ की जरूरत पूरी करती है। यानी कि जो माँ का दूध होता है ना, वो अपने आप में पूरा होता है। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ उसके उम्र के अनुसार पूरक आहार देना शुरू कर दिया जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो फिर भी लेकिन माँ का दूध देना तब भी जरूरी होता है, लेकिन माँ के दूध के साथ वो कुछ आहार बाहरी चीजें खा सकता है। स्तनपान को इसके बाद भी जारी रखना जरूरी होता है। और अगर हम बात करें, स्तनपान सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ये माँ और बच्चे के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत तो करता ही है। आपने देखा होगा बच्चे जब स्तनपान करते हैं तो उनका माँ से लगाव बहुत अधिक होता है। और साथ ही माँ के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रसव के बाद माँ के शरीर में भी बहुत सारी चीजें बदलती है, तो प्रसव के बाद माँ के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में स्तनपान काफी मदद करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को पौष्टिक भोजन मिले और स्तनपान कराने के लिए उचित समय और सहयोग मिले, इसका ध्यान परिवार को पूरी तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि उस वक्त माँ के शरीर में बहुत सारी चीजें बदल रही होती है, वो बहुत सारे स्तर पर परेशान होती है। इसलिए परिवार का ये दायित्व बनता है कि वो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखे, माँ की सेहत का ध्यान रखे और इस बात का ध्यान रखे कि एक स्वस्थ माँ बच्चे को स्तनपान जरूर कराए। और अगर माँ या बच्चे को स्तनपान से जुड़ी कोई समस्या हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए, नर्स के पास जाइए या फिर किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है कि बच्चों के लिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो बच्चे का पहला टीका होता है जो उन्हें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है, उनका विकास अच्छा कराता है। तो दोस्तों याद रखिए, जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात को माँ का पहला दूध जरूर मिले, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और माँ का पहला दूध बच्चे की जीवन की मजबूत शुरुआत है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो आइए हम सभी मिलकर ये संदेश घर घर तक पहुँचाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा नवजात बच्चा है तो उसके माता पिता को, उसके घर वालों को ये समझाने की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि स्तनपान कराना कितना जरूरी होता है। हर नवजात को माँ का पहला दूध मिले और हर माँ को स्तनपान के लिए सही जानकारी और परिवार का पूरा सहयोग मिले, हम इसी बात की उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। तो आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और जाने से पहले खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे विशेष ध्यान। और फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि आपके अगर आसपास या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो नवजात है और उसके घर वालों को इस बात की समझ नहीं है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे का आगे आने वाला भविष्य मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। तो मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?

0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
3: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्य की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है?
3: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही

0: सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में, तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है, तो हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं BBF से, ब्रॉड बेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। वहाँ अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं, चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं, गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है, हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है, तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45-50 दिन में रोपाई करने के 45-50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें, लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके जमीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया हैं, और 20 सितंबर को ये पक्कर तैयार हो गया, 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है, तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
1: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
0: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पे लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6-7 लाइनें, तो वहाँ BBF पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 9-10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज़्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा, जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2-2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9-10 इंच।
1: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
0: सबसे महत्वपूर्ण

0: हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चेना की बात कर रहे हैं। तो चेना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु की हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151। TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7, जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उषा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7। इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियाँ हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है। हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को, जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं, वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार, साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है। 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्न की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
1: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है। क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इस पर 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलीन देना पड़ता है, या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 240 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 240 दवा नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 240 हम ले करके, जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 240 जो 58% इसी का आता है उसकी बात

0: तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण, बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों, जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में, जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों, आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए एक बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी एक बोरा डीएपी और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को दो भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, चूंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस प्रकार देखा जाए, एक बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा
1: जी, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आय कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज NCERT के ऑडियो बुक में हम सुनने वाले हैं कथा सम्राट प्रेमचंद। आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती होती है। 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। हालांकि प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब वो नवाब राय के नाम से भी लिखा करते थे और बाद में वो प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनकी कहानी हम सभी ने अपनी किताबों में पढ़ी होगी और जिन्हें उपन्यास कहानी पढ़ने का शौक है उन्होंने प्रेमचंद की बहुत सी कहानियां, बहुत से उपन्यास पढ़े होंगे। गोदान, गवन या कुछ छोटी कहानियों की बात करें तो ईदगाह, कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी जैसी बहुत सी कहानियां हैं। तो आइए आज यानी कि प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर NCERT की विशेष प्रस्तुति सुनते हैं कथा सम्राट प्रेमचंद।

0: आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कथा सम्राट प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदुस्तान से परे विश्व भाषाओं में हैं। प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव ने कहा था,
1: प्रेमचंद हमारे समाज की यात्रा, संघर्ष और स्वप्न को चित्रित करने वाले सबसे बड़े कथाकार हैं। उन्होंने आनंद, मोक्ष, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कहानी लिखने की परंपरा को तोड़ा और उन्हें सामाजिक समस्याओं से जोड़ा।
2: आने वाला जमाना किसानों और मजदूरों का है। दुनिया की रफ्तार इसका साफ सबूत दे रही है। हिंदुस्तान इस हवा से भी असर नहीं रह सकता।
1: प्रेमचंद ने 1910 में सवा शेर गेहूं लिखी थी, जो एक बंधुआ मजदूर की कहानी है।
0: गोदान के नायक होरी के मरने के बाद उसकी पत्नी धनिया होरी की हथेली पर 20 आने रखकर गोदान कराती है। ये है उस समय के किसान का बेइंतहा दर्द।
3: मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ।
4: ऐसा मत कहो।
3: गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो ये रुपए क्रियाकर्म में ही जाएंगे।
4: ऐसा मत कहो
3: धनिया, रो मत।

0: कब तक चिल्लाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे।
1: गोदान करा दे धनिया, गोदान करा दे।
2: महाराज, घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा। यही 20 आने पैसे इनका गोदान है।
3: प्रेमचंद ने अपने कृतियों में अन्याय का विरोध किया है। समाज के यथार्थ वर्णन के जादूगर थे प्रेमचंद।
4: जी हाँ, ये बहुत साधारण निरा ठेठ देहाती आदमी कथा सम्राट प्रेमचंद है।
3: कथा सम्राट प्रेमचंद की कृतियों का विश्व साहित्य में विशेष स्थान है। विश्व की अनेक भाषाओं में उनकी कृतियों को अनुदित किया गया है।
4: प्रेमचंद से पहले हिंदी उर्दू में उपन्यास लिखना प्रारंभ हो चुका था। इस युग में उपन्यास लेखन की दो धाराएं थीं, तिलिस्मी जासूसी और सामाजिक। प्रेमचंद ने सामाजिक धारा को अपनाया।
3: ये इस समय नवाब राय के नाम से उर्दू में साहित्य रच रहे थे।
4: उन दिनों देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष छिड़ा था। प्रेमचंद ने अपने लेखन से योगदान देना चाहा। उन्होंने देश प्रेम की कहानियां लिखी। ये कहानियां सोजे वतन पुस्तक में नवाब राय के नाम से छपी। किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे। उन दिनों प्रेमचंद हमीरपुर जिले के स्कूल में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे। एक दिन रात में इन्हें वहां के अंग्रेज कलेक्टर ने बुलवाया।
5: नवाब राय तुम्हारा नाम है?
6: जी हाँ।
5: यह किताब तुमने लिखी है?
6: जी हाँ।
5: इस तरह की और भी कोई किताब छपवाने वाले हो?
6: जी नहीं हुजूर।
5: झूठ बोलते हो। खैर मनाओ कि अंग्रेजों की अमलदारी है, वरना आज तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाते।
6: लेकिन
5: जानते हो बगावत फैलाने वालों को क्या सजा मिलती है? गोली से उड़ा देते हैं। इन किताबों में आग लगा दो, यूं छुटकारा नहीं मिलेगा।
3: बेशक उस समय सोजे वतन पुस्तक की 600 प्रतियों का ढेर जला दिया गया। प्रेमचंद ने लेखन का रास्ता चुना था और वो इसी रास्ते पर चलने पर आमादा थे। अब नवाब राय ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और लिखना बदस्तूर जारी रखा।
4: इस समय प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। सरस्वती के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास एक कहानी पंचों में ईश्वर भेजी, जिसे जून 1916 में पंच परमेश्वर नाम से प्रकाशित किया। गांव के जीवन में सरपंच की क्या अहमियत है, प्रेमचंद ने इसे बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है।
7: सच्चाई से चौपर भी टलना ठीक नहीं होगा।
8: अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह सोचा है। ये ठीक जान पड़ता है कि साहू बैल का पूरा दाम दे।
9: क्या क्या बात कर रहे हैं? जुम्मन को पूरा दाम देने की बात कर रहे हैं।
8: जिस वक्त साहू ने बैल लिया, उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी वक्त साहू अलगू चौधरी को दाम दे देते, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। बैल की मौत फकत इस वजह से हुई कि उससे ज्यादा काम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा इंतजाम नहीं किया गया।
10: साहू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए।
8: ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं।
11: पंचो, मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए ना।
8: भाई ये तो अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वो रियायत करें तो उनकी भलमनसी।
10: इसे कहते हैं न्याय।
12: हाँ भैया, पंच के सामने

0: बूटे को कौन खरा कह सकता है?
1: मेरे दोस्त चुमन, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की थी ना, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था। आज मुझे एहसास हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है।
2: चुंगन, मेरे भाई तुम ठीक कहते हो, आज हमारी दोस्ती की बेल फिर

0: 1918 में उनका हिंदी में पहला उपन्यास छपा सेवा सदन। छात्रों के साथ वो सहज और आत्मीय रहते मगर सरकारी अफसरों का विरोध करते। एक बार इनके स्कूल की जांच करने के लिए एक अंग्रेज इंस्पेक्टर आया। जांच के दूसरे दिन प्रेमचंद अपने घर के सामने कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे।
1: इंस्पेक्टर को उठकर सलाम करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी और ये बात इंस्पेक्टर को बहुत नागवार गुजरी।
2: Hey you, hey Tom, मैं Tom से कह रहा हूँ। Tom जो कुर्सी पर बैठा है।
3: हाँ हाँ कहिए क्या बात है।
2: Tom पर एक घमंडी हो। तुम्हारा अफसर तुम्हारे दरवाजे के सामने से निकल जाता है और तुम उठकर सलाम भी नहीं करता।
3: ये जरूरी नहीं है जनाब। मैं जब स्कूल में रहता हूँ तब नौकर हूँ। स्कूल से बाहर मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। आपने जो कहा ये कहकर अच्छा नहीं किया। इस पर मुझे अधिकार है कि मैं आप पर केस चलाऊं।
1: ये सुनकर इंस्पेक्टर चुपचाप चला गया।
0: गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी को तिलांजलि दी और स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में समाज के वर्गों ने क्या भूमिका निभाई इसका अंकन रंगभूमि में हुआ है। सूरदास इस उपन्यास का वो चरित्र है जो अकेला है, दृश्य शक्ति से अक्षम है, लेकिन हिम्मत वाला है। सत्य के पक्ष में अकेला खड़ा हो सकता है, अन्याय का विरोध करता है। बस्ती के कुछ लोग उसका झोपड़ा जला देते हैं। सूरदास और मिठुआ जले हुए झोपड़े के पास बैठे हैं। उनकी बातचीत का अंश सुनिए।
4: दादा, अब हम रहेंगे कहाँ?
5: मिठुआ, दूसरा घर बनाएंगे।
4: और जो कोई फिर आग लगा दे?
5: तो हम फिर बनाएंगे।
4: और फिर आग लगा दे?
5: तो हम फिर बनाएंगे।
4: और जो कोई हजार बार आग लगा दे?
5: तो हम हजार बार, 100,00,000 बार घर बनाएंगे।

0: अरे तो क्या मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की? जरा दम ले लेने दो, हार हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक ना एक दिन हमारी जीत जरूर होगी, जरूर होगी।
1: प्रेमचंद अब अपनी प्रेस की स्थापना करना चाहते थे। 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1927 में हिंदी और उर्दू साहित्य के विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की। तब तक प्रेमचंद साहित्य सम्राट बन गए थे।
2: प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना चाहते थे। पत्नी शिवरानी इनके स्वास्थ्य को देखकर चिंतित रहती थी। ये जेल जाएंगे तो घर कौन चलाएगा? लेकिन प्रेमचंद की इसमें नहीं चली। दोनों में

0: जेल जाएंगे?
1: अपनी शक्ल तो देखिए शीशे में हजरत, रात दिन पेट थामे रहते हैं अपना।
2: अब की बार देखना कैसे ठाट से जेल जाता हूँ और कैसी शान से बाहर निकल आता हूँ।
1: आपका नाम तो कलम के जरिए फैल ही रहा है, अब क्या सारी शोहरत आप ही लूट लेंगे? मैं नहीं जाने दूंगी, कह देती हूँ। हाँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा। जेल न जाने दोगी, जेल की कहानी तो नहीं रोक पाओगी।
3: जेल कहानी में रोज जुलूस निकलता है, गोली चार्ज होता है, लोग मारे जाते हैं। अगले दिन फिर जुलूस निकलता है। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये प्रमाणित होता है कि लोग जिंदा हैं, अटल अडिग हैं और मैदान में डटे हैं।
4: जुलूस कहानी का पात्र बीरबल, जो अंग्रेजों की फौज में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जुलूस में भाग लेने वालों पर डंडे बरसाता है। उसकी अपनी पत्नी मिट्ठन बाई इसके खिलाफ थी। उसी दिन एक सिपाही ने आकर कहा,
5: हुजूर ये लिफाफा लाया हूँ।
6: अच्छा,
7: क्या तरक्की का परवाना आ गया?
6: देखता हूँ। अरे तुम तो बनाती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है, मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है।
7: फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे, खूब बढ़ चढ़कर हाथ देख लाना, डीएसपी जरूर आएंगे। सच?
6: अरे कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा है? कहीं शुभा हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं का नहीं रहूंगा।
4: पर अब जुलूस उस व्यक्ति इब्राहिम अली को कंधे पर उठाया जा रहा था जिसने जुलूस में बीरबल की लाठी खाई थी और जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी के जगाने पर बीरबल शर्मसार हुआ और उसकी विधवा को सांत्वना देने पहुंचा। ये उस दौर की बात है जब ब्रिटिश फौज के भारतीय अपने ही देशवासियों को, अपने ही भाइयों को लाठियों और गोलियों से भून रहे थे।
3: इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचंद को राय साहब की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा। प्रेमचंद ने इसे ठुकरा दिया। वो साहित्य लेखन में किसी तरह का दबाव या पाबंदी नहीं चाहते थे और सृजन की जिम्मेदारियों को बखूबी समझते थे। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है,
1: वे 4:30 बजे ही उठ जाते थे और लिखने पढ़ने लग जाते थे। बेटे धन्नू को पढ़ाते थे, लिखते भी जाते थे। उसके बाद फिर नहा धोकर स्कूल जाते, स्कूल से लौटते हुए तरकारी वगैरह अपने साथ लेते आते थे, बच्चों के साथ खेलते। कांग्रेस की मीटिंग अक्सर चलती रहती, उसमें रोजाना शरीक होते। जिस दिन 10 बजे लौटते, रात को काम ना कर पाते, उस दिन 3 बजे रात को ही जमकर काम में लग जाते। मैं हमेशा आराम के लिए झगड़ती, पर वो कब मानने वाले थे।
3: लखनऊ में प्रेमचंद का प्रेस और उनका प्रकाशन धन के अभाव में चल नहीं पा रहा था। उन्होंने बनारस से हंस नामक पत्र निकालना शुरू किया। वो जागरण नाम से एक नया साप्ताहिक निकालना चाहते थे, पर कहीं कुछ चल नहीं पा रहा था। कभी मजदूरों के लिए पैसा नहीं, कभी कागज वाले को देने के लिए पैसे नहीं। प्रेमचंद ने जीवन के अनुभवों के आधार पर हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था।
8: मुझको ऐसा लगने लगता है कि इस आदमी ने वर्तमान समाज व्यवस्था को, जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर

0: आधारित है स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार कोई भी बड़ा नाम जो लक्ष्मी से संपृक्त है मुझे आकर्षित नहीं करता। हो सकता है कि बैंक में अच्छी रकम रखकर मैं भी औरों जैसा ही हो जाता, उस लोभ का संवरण नहीं कर पाता। लेकिन मैं खुश हूं कि प्रकृति और भाग्य ने मेरी मदद की है, मुझे गरीबों के साथ डाल दिया है। इससे मुझे मानसिक शांति मिलती है।
1: इन्हीं दिनों अजंता सिनेटोन बंबई के मोहन भवनानी ने उनको अपनी फिल्म कंपनी में आने का निमंत्रण दिया। इस दुनिया से अजनबी होते हुए भी प्रेमचंद ने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। पर कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि ये जगह उनके लिए नहीं है। उन्होंने अपने मित्र जैनेन्द्र कुमार को लिखा,
0: ये प्रोड्यूसर जिस ढंग की कहानियां बनाते आए हैं उसकी लीक से जौ भर भी नहीं हट सकते। राजा रानी, उनके मंत्रियों के षड्यंत्र, नकली लड़ाई, यही इनके मुख्य साधन है। मैंने सामाजिक कहानियां लिखी हैं जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहता है, लेकिन इन लोगों को संदेह होता है कि फिल्म चले या ना चले। मन चाहता है यहां से छुट्टी पाकर अपने पुराने अड्डे पर जा बैठूं। वहां धन नहीं है पर संतोष जरूर है।
2: प्रेमचंद की पहचान है उनकी सादगी और शायराना अंदाज। प्रेमचंद और समकालीन कवि जयशंकर प्रसाद एक दूसरे को जानते तो थे पर औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार वो दोनों एक डॉक्टर की दुकान पर बैठे थे।
3: थोड़ा जीभ दिखाइए।
2: डॉक्टर साहब ने प्रेमचंद से पूछा,
3: क्या आप इन महाशयों को पहचानते हैं?
0: काबा में, कलीसा में, बुतखाने में या दिल में, है होश मुझे इतना, तुझको कहीं देखा है।
4: इस कक्ष में प्रवेश करने के साथ ही परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको।
3: वाह वाह वाह वाह, आइए आइए, इनसे मिलिए। ये हैं कथाकार प्रेमचंद
4: जी।
3: नमस्ते। और आप हैं कवि जयशंकर प्रसाद।
0: मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आपसे मिलना हुआ।
4: अहो भाग्य मेरा, जो आप जैसे कलम के जादूगर से मेरा परिचय हुआ।
0: नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: चंद का आखिरी उपन्यास था मंगल सूत्र, जो अधूरा ही रह गया। उन्होंने स्वयं को समाज के सामने मजदूर के रूप में पेश किया।
0: मैं मजदूर हूं, जिस दिन न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है।
1: एक बार प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी ने उनसे पूछा,
5: हाँ, पर स्वराज हो जाए तो आप किसका साथ देंगे?
0: मजदूरों और काश्तकारों का। मैं पहले ही सबसे कह दूंगा कि मैं तो मजदूर हूं। तुम फावड़ा चलाते हो, मैं कलम चलाता हूं। हम दोनों बराबर हैं।
1: किसान वो है जिसके पास 5 या 6 बीघा जमीन है, कभी न चुकने वाला ऋण है और जीवन भर साथ चलने वाला लगान है।
2: एक और पूस की रात में जब रजाई और अलाव ठंड का सामना नहीं कर पाते, ऐसे में गांव का किसान हल्कू एक कंबल की चाह पूरी नहीं कर पाता और पत्नी मुन्नी सिसक कर रह जाती है, क्योंकि उसकी नियति में महाजन द्वारा सूद के रूप में हर पल कुछ ना कुछ ऐंठते रहना लिखा है।
3: मुन्नी, सेना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो।
5: पूस की रात कैसे कटेगी?
3: अरे अरे ला दे दे,

0: छूटे। कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा कुछ।
1: कर चुकी दूसरा उपाय, क्या कोई खैरात में दे देगा कंबल? जाने कितना बाकी है जो चुकने में ही नहीं आता। मैं कहती हूं तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है।
0: तो क्या गाली खाऊं?
1: ये लो रुपए, तुम छोड़ दो खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी।
0: मुन्नी,
1: किसी की धौंस तो न रहेगी।
0: अरे चुप हो जा मुन्नी।

एक ही अकेला था, शोषित का, पीड़ित का, सच्चा हमदर्द बन लिख लिख कथाएं दर्द बयां करता था, घोषित कर खुद को मजदूर, कागज पर कलम वो चलाता था, जन जन को सजग किया करता था, एक अदद आदमी था वो।

0: गड्ढे हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी।
1: कथा सम्राट प्रेमचंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध आलेख डॉक्टर कामिनी भटनागर, कलाकार अश्वनी वालिया, रजत सेन गुप्ता, मंजू मैनी, प्रवीण शर्मा, सादिया रहमान, सुनील लोहिया, मुइनुल हसन और अशोक मलकानी। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
2: आप सुन रहे थे NCERT की विशेष प्रस्तुति कथा सम्राट प्रेमचंद। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। तो इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ।

0: बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व स्तनपान दिवस के बारे में। जी हां, माँ का पहला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है ये आज भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सी वजहें होती है जिसकी वजह से माएं आज भी अपने बच्चों को अपना गाढ़ा पीला दूध पिलाने से वंचित रहती है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का दिया सबसे अनमोल उपहार होता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होता है। लेकिन क्या हर नवजात को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिल पाता है? आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दोस्तों विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर स्तनपान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बिहार में मई 2026 में जारी की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट की अगर हम माने तो बिहार में शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिलने की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन फिर भी जीवन शैली में बदलाव चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भागलपुर सहित बिहार में अब भी 91.9% बच्चों को ही उसके जन्म के समय 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। और अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो 56.8% और ग्रामीण क्षेत्र में 91.4% बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध मिल पाता है। और अगर हम वही पिछले सर्वेक्षण जो कि 2019-21 में हुआ था, अगर उसके आंकड़ों को अगर हम समझें तो मात्र 31.1% ही ऐसे बच्चे थे जिन्हें माँ का गाढ़ा पीला दूध पहला मिल पा रहा था। लेकिन अब थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन अब भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 48.1% बच्चे को आज भी जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। जन्म के पहले घंटे में मिलने वाला माँ का दूध शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और राज्य में 62.5% बच्चों को शुरुआती 6 महीने में स्तनपान कराया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, जो जन्म के बाद माँ के पहले दूध से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान क्यों जरूरी होता है। बच्चे के जन्म के बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसे अक्सर बच्चों का पहला टीका भी कहा जाता है, जो उन्हें अनेक बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चों को संक्रमण से बचाने और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसलिए बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए आसानी से पचने वाला संपूर्ण आहार होता है। इसमें बच्चों की जरूरत के अनुसार जो भी पोषण तत्व होते हैं वो मौजूद होते हैं, और शुरुआती महीनों में ये बच्चों के स्वस्थ विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसे 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान उसका शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या बच्चों को जन्म के तुरंत बाद शहद, घुट्टी या कोई दूसरा तरल पदार्थ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसे नियम होते हैं कि

बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे शहद देते हैं या कोई भी ऐसे तरल पदार्थ देते हैं। तो विशेषज्ञों की अगर माने तो नवजात को जन्म के बाद शुरुआती समय में केवल माँ का दूध ही देना चाहिए और बिना किसी चिकित्सीय सलाह के कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। माँ और बच्चे को जन्म के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके एक दूसरे के संपर्क में लाना चाहिए और साथ ही स्तनपान शुरू कराना भी बेहद उपयोगी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 6 महीने तक बच्चे की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से माँ का दूध देने की सलाह दी जाती है। अगर हम स्वस्थ शिशु की बात करें तो उन्हें जन्म से 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध देने की ही सलाह दी जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग अब इस बारे में जागरूक होने लगे हैं और इसे विशेष स्तनपान कहा जाता है। इस दौरान बच्चे को पानी की भी सामान्यतः जरूरत नहीं होती है क्योंकि माँ का दूध ही उसकी पोषण और तरल पदार्थ की जरूरत पूरी करती है। यानी कि जो माँ का दूध होता है ना वो अपने आप में पूरा होता है। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ उसके उम्र के अनुसार पूरक आहार देना शुरू कर दिया जाता है जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है। तो फिर भी लेकिन माँ का दूध देना तब भी जरूरी होता है, लेकिन माँ के दूध के साथ वो कुछ आहार बाहरी चीजें खा सकता है। स्तनपान को इसके बाद भी जारी रखना जरूरी होता है। और अगर हम बात करें स्तनपान सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ये माँ और बच्चे के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत तो करता ही है। आपने देखा होगा बच्चे जब स्तनपान करते हैं तो उनका माँ से लगाव बहुत अधिक होता है और साथ ही माँ के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रसव के बाद माँ के शरीर में भी बहुत सारी चीजें बदलती है। तो प्रसव के बाद माँ के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में स्तनपान काफी मदद करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को पौष्टिक भोजन मिले और स्तनपान कराने के लिए उचित समय और सहयोग मिले, इसका ध्यान परिवार को पूरी तरीके से रखना चाहिए क्योंकि उस वक्त माँ के शरीर में बहुत सारी चीजें बदल रही होती है, वो बहुत सारे स्तर पर परेशान होती है। इसलिए परिवार का ये दायित्व बनता है कि वो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखे, माँ की सेहत का ध्यान रखे और इस बात का ध्यान रखें कि एक स्वस्थ माँ बच्चे को स्तनपान जरूर कराए। और अगर माँ या बच्चे को स्तनपान से जुड़ी कोई समस्या हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए, नर्स के पास जाइए या फिर किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है कि बच्चों के लिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो बच्चे का पहला टीका होता है जो उन्हें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है, उनका विकास अच्छा कराता है। तो दोस्तों याद रखिए, जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात को माँ का पहला दूध जरूर मिले, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और माँ का पहला दूध बच्चे की जीवन की मजबूत शुरुआत है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो आइए हम सभी मिलकर ये संदेश घर घर तक पहुँचाए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा नवजात बच्चा है तो उसके माता पिता को, उसके घर वालों को ये समझाने की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि स्तनपान कराना कितना जरूरी होता है। हर नवजात को माँ का पहला दूध मिले और हर माँ को स्तनपान के लिए सही जानकारी और परिवार का पूरा सहयोग मिले। हम इसी बात की उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। तो आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें विशेष ध्यान, और फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि आपके अगर आसपास या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो नवजात है और उसके घर वालों को इस बात की समझ नहीं है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे का आगे आने वाला भविष्य मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। तो मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बहुत सारे दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में, तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर RN गुप्ता। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें, तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
3: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं, तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है, तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
2: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा।
3: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए, कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं, और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो। अगर ज़मीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं, खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्व

0: का जो प्रबंधन की समस्या हो उससे ये कमी हो जाती है। तो ये भूमि समिति के लिए समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है, इसलिए हमारा जो ज़मीन है, जो खेत है, वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है जल की जमने की समस्या ये ना हो। तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें। दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31, ये सब प्रजातियां जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ये जो है करीब हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है
1: जी।
0: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना जरूरी है, ताकि जो है इसमें रोग और रोग की समस्या, कीटाणु कीड़ों की समस्या साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है। तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है
1: जी।
0: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा अगर गर्मा उड़द करते हैं, गर्मियों में करते हैं जिसका तो अभी समय नहीं है, तो उसमें हमको जो है 20 से 25 KG प्रति के हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खरीफ के मौसम में करते हैं, जिसकी जो है अवधि आपकी जुलाई के 15 जुलाई से लेके प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है। दूसरी बात जो है एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणु या हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं और साथ साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजिम है जो कि मार्केट में वेबिस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है जो बीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर इसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुँचता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है, उन खेतों में जो है 25 किलो

जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है, जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है। और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक

है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है दो क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने की समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो दो कम से कम आवश्यक रूप से करें ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने, जो दाल बने, उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है, तो कीटों में जो है कुछ कुछ बीमारियां लगती है जो फली में फली मक्खी है, जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है, और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमीडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं, और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करनी जो अवस्था निगरानी करना जरूरी है, और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं, तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरीपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाजार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है, इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70-80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है इसके रोग वाहक का काम करते हैं, और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितेरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है, जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीड दवा आती है उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं, तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियों का नुकसान करते हैं साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणु जनित रोग होती है, जैसे लीफ क्रिंकल रोग जिसमें पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है, और इसमें बहुत कम फलियां लगती है और यह पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होती है, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियां जो है

0: जनक होती है और खासकर जो उकठा की समस्या है वो प्रायः सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसलें में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है, पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, लाइन स्विंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारी बीमारियां कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियाँ आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं। पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इससे हम पता चलता है कि हमारे सर्कोस्पोरा रोग से ग्रसित है और पत्तियां जो है समय से पहले ही झड़ जाती है। इससे भी हमारे उत्पादन में काफ़ी कम होता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें एक दवा आती है, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर आता है, मार्केट में सांप के नाम से भी मिलती है। तो इसका प्रयोग करने से अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है, चूर्णी रोग बोलते हैं, जिसको पाउडरी मिल बोलते हैं। ये प्रायः खेतों में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर जो है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियाँ पर जो है सफ़ेद से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियाँ भी जो है इसमें झड़ना शुरू हो जाती है। ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह का ये बीमारियाँ हैं। कुछ बीमारियाँ जो है और खासकर जितने भी कवक जनित बीमारियाँ हैं जो पत्तियों पे होती हैं, उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजिम और मैनको जो मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियाँ जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग। ये जेंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और कालांतर पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए, तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है, उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं। और महीने 3 के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो तो, अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पादन और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार।
2: 9 कृषि
3: अरे यार फिर पिट गया बिल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था।

0: यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आज समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान

साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फॉस्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, मैं हूं आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास बातें होती हैं आपके लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। जानते हैं खेती के बारे में और खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। फिलहाल आज का विषय है हमारा अरहर में लगने वाले कीटों का प्रबंधन। दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मतलब ये पौष्टिक से भरे हुए रहते हैं और हमारे शरीर को जो एक पौष्टिकता चाहिए वो मिलता है हमें इन दलहनी फसलों से। लेकिन जब हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं इन्हें उगाने में, इन फसलों को उगाने में, तो कई बार उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और वो वजह है कीटों का। जी हाँ, कीट पतंगे जो ये हमला कर देते हैं, तो नुकसान भी होता है फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को। तो आज हम बातें करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में, यानी कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, और साथ ही मैं बता दूँ कि ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा विषय है मैम, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अरहर फसलों को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट हो सकते हैं?
4: अरहर फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख हैं फली छेदक कीट, दूसरा है प्लूम मॉथ, पॉड फ्लाई, पॉड बग, काला भृंग एवं दीमक। ये सभी कीट जो हैं अरहर को हानि पहुंचाते हैं।
3: तो हमने जाना कि कौन कौन से कीट हो सकते हैं जो अरहर को मतलब कि हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद मैम, अगर हमारे किसान भाई अगर इसे पहचान जाएंगे तो आई थिंक इसका जो प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हम इन कीटों को, जो अलग अलग कीटों के नाम आपने कहे, कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। साथ ही ये भी बताएं कि ये जो कीट हैं, जितने भी प्रकार के कीटों के नाम कहे आपने, ये भी बताएं कि ये कैसे हानि पहुँचाते हैं।
4: जी, फली छेदक कीट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यह जो है इसका जो लार्वा है ये लगभग 40-50% तक हानि पहुंचाता है। तो फली छेदक कीट, इसका वयस्क वो एक पतंगा है, यह पत्तियों पर, अरहर की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर अंडे दे देते हैं और इन अंडों से फुटकर फिर इल्लियाँ निकलती हैं, जिसे हम पिल्लू कहते हैं। पिल्लू शिशु, ये जो इनके पिल्लू हैं वो फिर पत्तियों पर खाती हैं, और जब फिर जब ये फली लगती हैं तो फलियों में घुसकर खाती हैं। और ये पिल्लू जो हैं शुरू में हरे रंग के होते हैं, बाद में धीरे धीरे भूरे हो जाते हैं और

0: ये इनका जो पिल्लू के जो शरीर है उस शरीर पर उनके शरीर के बगल में साइड जिसको बोलते हैं साइड में तीन तीन धारियां होती हैं, भूरे रंग की धारियां होती हैं। इससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यह जो है फली छेदक कीट का लार्वा है या जिसे पिल्लू कहते हैं। और यह जब फली लगता है तो फली में घुसकर खाता है। जब जैसे ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने आधे शरीर को फली के अंदर घुसा देता है और आधे शरीर को फली के बाहर रखकर उसे खाता है। और ये जो प्लूम मॉथ है, प्लूम मॉथ जो ये इसका भी वयस्क पतंगा ही होता है और ये भी पत्तियों पर अंडे दे देती हैं और इनसे भी फुट करके अंडों से वो पिल्लू निकलते हैं और जिनके शरीर पर रोएं रहते हैं। और ये जनवरी से फरवरी तक इनका जो प्रकोप अधिक होता है और शुरू में ये तो कलियों और फूलों में छेद कर हानि पहुंचाते हैं, फिर जिससे कि फूल और फलियां भी झड़ जाते हैं और जब फली बनती हैं तब फली में भी छेद कर ये हरे जो दाने होते हैं उनको खा जाते हैं। कभी कभी अधखाए जो दाने होते हैं उन पर सफ़ेद या काले फफूंद भी आ जाते हैं। और जो पॉड फ्लाई है जिसे फली मक्खी कहते हैं, ये काले रंग का और चमकीले पंखों वाली ये मक्खी होती है और ये जो मादा की मक्खी होती है ये फली के अंदर अंडे देती हैं और अंडों से सफ़ेद रंग का वो पिल्लू निकलता है जिसे मैगोट भी हम लोग कहते हैं। ये फली के अंदर ही विकसित होकर जो हरे दाने हैं उनको नष्ट कर खाता है। और जिस ये बारीक छेद कर, मतलब बारीक यानी बहुत ही छोटे छोटे महीन छेद कर फलियों पर छेद बनाकर खाते हैं। और इन छेदों को देखकर जब छेद महीन महीन हो जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फली मक्खी का आक्रमण हो गया है।
1: अच्छा।
0: और पॉड बग ये जो है चूसक कीट है। ये भूरे रंग के होते हैं और इसके वयस्क और जो निम्फ होते हैं, इसके जो शिशु होते हैं उसको निम्फ कहा जाता है। ये निम्फ भी ये फलियों से रस चूसकर खाते हैं जिससे फलियां सिकुड़कर छोटी पतली हो जाती हैं। और काला भृंग यह भी एक कीट है जिसे एपियन भी कहते हैं। ये पत्तों एवं फूलों पर इनका ये खाते हैं और जल्द मध्य एवं देर से पकने वाली सभी किस्मों पर जो है अरहर के जो किस्म हैं इन पर इसका प्रकोप होता है। काला भृंग बहुत ही छोटे आकार का होता है और इसका आगे का मुंह जो वो नुकीला होता है। खरीफ मौसम में यह जो है उड़द और मूंग पर भी दिखाई पड़ता है और जब अरहर के पत्ती फूल जब अरहर फसल लग जाते हैं तब ये अरहर के पत्तियों और फूलों को छेद कर खाते हैं। और इस तरह से जब फूल को छेद कर खाते हैं तो फूल सूखने लगते हैं। इसका शिशु जो है वो गंदे उजले रंग का होता है, उजला रंग होता है परंतु वो थोड़ा गंदा लिए हुए रंग का होता है। और इसका मुंह का रंग जो है ये मुंह का रंग वो गहरा भूरा होता है और इसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जैसे सी आकार में मुड़ जाता है उस तरह से इसका शरीर मुड़ा हुआ होता है। और यह फलियों में भी प्रवेश कर जो हरे दाने हैं उनको खाता है जी। और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप देखा गया है, सभी इलाकों में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में जिसमें जिन मिट्टी में थोड़ा सा नमी अधिक होती है उसमें दीमक का भी प्रकोप देखा गया है। ये दीमक जो है जो नवजात जो पौधे होते हैं उनके जड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों आपने जाना कि ये कौन कौन से कीट हैं, किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं और इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनका प्रबंधन करें इनके पहचानने के बाद ताकि हम अपने फसलों को बचा सकें। तो मैम अब

0: थोड़ी बात कर लेते हैं प्रबंधन के बारे में।
1: जी हम शुरू करते हैं फली छेदक कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो फली छेदक कीट का प्रबंधन जो है वो जैसे ही वो चना ये सॉरी अरहर जो हम लगाते हैं वैसे ही फेरोमोन ट्रैप लगा देना चाहिए, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप जो है इसका फली छेदक जो है ये फली छेदक चना को भी हानि पहुंचाता है, और जब अरहर के फूल आते हैं तो उसमें खेतों में चना भी होता है, तो चना में भी यह कीट जो है आक्रमण करता है, इसलिए इसे चना फली छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे चना में हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, उस तरह से अरहर में भी फेरोमोन ट्रैप, कम से कम जब अरहर में फूल आने लगे, फूल आने के पहले फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य लगा देना चाहिए, और 3 सप्ताह के अंतराल पर जो फेरोमोन का ल्यूर होता है उसे बदल देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए 3-3 सप्ताह के अंतराल पर। और अगर रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना है तो रासायनिक कीटनाशियों में प्रोफेनोफॉस 50 EC दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव 50% जब फूल आ जाए तब करना चाहिए, एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां जब लग जाएं तब करना चाहिए। दूसरा कीटनाशी है स्पिनोसैड दवा कीटनाशी जो है उसका 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही नीम आधारित दवा का भी प्रयोग करना चाहिए। नीम आधारित दवा में निम्बिसिडी, नीमार्क, नीमाजल, इन कीटनाशियों में इन कीटनाशियों का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्लूम माथ कीट के लिए प्रोफेनोफॉस जो कीटनाशी है उस दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है, प्रोफेनोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसे भी फूल आने 50% फूल आने के पहले 50% फूल आ जाए तब पहला छिड़काव एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां लग जाएं तब करना चाहिए। और पॉड फ्लाई का नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पॉड फ्लाई का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है पॉड बग कीट का प्रबंधन के लिए, चूंकि यह चूसक दवा है इसलिए इस कीट का नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है। नीम आधारित दवाओं में निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमाजल, अचूक या नीम का तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर नीम का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशियों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद फिर इसी कीटनाशी का यानी इमिडाक्लोप्रिड से छिड़काव करना चाहिए। जो मैंने बताया काला भरिंग एपियन, इसके नियंत्रण के लिए भी इंडोक्साकार्ब 14.5 SC दवा का 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का भी प्रकोप जिन एरिया में इनका प्रकोप होता है तो इसके लिए बीजोपचार करके लगाना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml

0: प्रति किलो बीज में मिलाकर और इसमें 15 ml पानी मिलाकर तब बीज को उपचारित कर लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कीट के प्रकार को जाना, अपने साथ ही ये भी जाना कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वो हानि कैसे पहुंचाते हैं। साथ ही बहुत ज़रूरी बात था प्रबंधन इनका, तो ये भी आपने जाना कि हम कैसे इनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थी स्टूडियो में डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि अगर आपके अरहर के फसलों में कीट लग चुके हैं या कुछ ऐसे आपको पहचान दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द उसका प्रबंधन करें ताकि आप अपने फसलों को बचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें करूंगी मैं और लेकर आऊंगी एक और भी अलग विषय को। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है।

क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है, और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। जरूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही, और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही ले। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही ले। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है, और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और खास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफी मददगार साबित होता है, और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए, और खीरे को आप कद्दूकस करके, उसका खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना

0: सकते हैं, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं, और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जेल। तो गुलाब जेल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जेल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहा है। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें, और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर

0: नहीं उंगली फेंक रहा है आप, चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के खास कार्यक्रम, जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
4: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट के जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पे भूरा धब्बा आ जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें शीत ब्लाइट होता है
3: जी।
4: शीत ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
3: अच्छा।
4: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक के कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक के कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि

0: आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पे वो चीज़ लग जाता है। अच्छा। और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है, तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते
1: जी।
0: इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे, और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव ज़रूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
0: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे, धान का गेहूँ तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा, और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं, तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
1: खुद ब खुद मर जाएगा
0: जी। अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है, और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे, या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं, आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
1: अच्छा।
0: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं।
1: गहरी जुताई से।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
0: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है, जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
1: अच्छा।
0: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है, और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टेमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है, और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो बाद के

अवस्था में भी जो पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं, बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बिंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में

0: एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है जिसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं, और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता
1: अधिक
0: है,
1: जमा हो जाता है जी।
0: तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है, और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से दो बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्रायः बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती की, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे ही बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप, उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए, तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड, मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमार, जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है, जिसको कि पर्णंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंद नाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया सीथ ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था सीथ ब्लाइट के बारे में
1: जी।
0: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो सीथ रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पर ये साँप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी, एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, सीथ ब्लाइट के बचाव करने के लिए, आप वेलिडामाइसिन का आप जो है अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच

0: की बात।
1: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM

0: CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
1: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार

हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है। ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दे कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डाले। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूले। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाए। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व

0: व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: स्वस्थ रहे हम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि उन्हें मोशन सीकनेस होता है और ऐसी स्थिति में घूमना फिरना उनके लिए थोड़ा तो दुभर हो ही जाता है। तो मोशन सीकनेस क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कौन। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा और आज हम बातें करने वाले हैं ढेर सारी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं मोशन सिकनेस क्या होता है। दोस्तों, मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें सफर के दौरान किसी इंसान को चक्कर आता है, उल्टी होती है या सिर दर्द होता है और कई बार बेचैनी भी होती है। और ये समस्या ज़्यादातर गाड़ी, बस, ट्रेन, जहाज या हवाई जहाज के यात्रा के दौरान होती है और कुछ लोगों में ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए कोई भी सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर संतुलन सही नहीं बैठ पाता है। मान लीजिए आप कार या बस में बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं और आपकी आंखें आपके दिमाग को क्या बता रही है कि आप स्थिर हैं, आप स्थिर होकर कोई काम कर रहे हैं। लेकिन आपके कानों के अंदर जो मौजूद संतुलन तंत्र है, जो दिमाग को बताता है कि शरीर चल रहा है या नहीं, वो क्या बताएगा? हाँ, शरीर तो चल रहा है, पर आँखों ने बताया है कि नहीं, शरीर तो स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा, स्थिर होकर काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग को दो दो संकेत मिलते हैं और जब दिमाग को अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं तो उसे लगता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई जहरीली चीज अंदर आ गई है। और हमारा शरीर अपने अंदर गए किसी भी बुरी चीज को कैसे निकालता है? उल्टी करके। तो बस इसी वजह से हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें उल्टी आने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगे तो इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि आप खिड़की के बाहर दूर देखने लग जाएं, ताकि आपकी आंखों को भी पता लगे कि नहीं भाई, हम स्थिर नहीं हैं। तो आपके कानों के संतुलन तंत्र से जो संकेत जाएगा और आपकी आंखों से जो संकेत दिमाग तक पहुंचेगा, दोनों सेम होगा। तो ऐसी स्थिति में जी मिचलाने वाली स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस से जूझने वाले आप अकेले इंसान हैं या बहुत रेयर ये स्थिति होती है, तो ऐसी बात नहीं है। साल 2015 में एक रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी स्थिति है जो हर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। और साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि अनुमान आप ये नहीं लगा सकते हैं कि कौन कब इसकी चपेट में आ जाएगा और इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि मोशन सिकनेस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला सिस्टम ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाता और ये सिस्टम मुख्य रूप से कान के अंदर मौजूद होता है, जो बैलेंस ऑर्गन यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। हमारे शरीर के अंदर ना एक खास तरह का सेंसर होता है जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं और ये रिसेप्टर्स बाहरी और अंदरूनी बदलावों को महसूस करके उसकी जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है। और जब जानकारी पहुंचती है और अलग अलग जानकारी पहुंचती है तो दिमाग को लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और जब दिमाग को ये एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई तो गड़बड़ी हुई है, कुछ जहरीली चीज आ गई है, कुछ हानिकारक चीज आ गई है, तो हमारा दिमाग कहता है कि उल्टी करो और इसे बाहर निकालो। और सफर के दौरान ये उल्टी वाली

समस्या या फिर ऐसी परेशानी सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को ना ये यात्रा शुरू होते ही बेचैनी महसूस होने लगती है, वहीं कुछ लोगों में ये परेशानी लंबे सफर के बाद सामने आती है, और कुछ लोगों को ये परेशानी तब होती है जब वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं या फिर गाड़ी के अंदर दुर्गंध फैली होती है, तो भी लोगों में ऐसी परेशानी आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड होता है, और सफर के दौरान जब ये फ्लूइड हिलता है तो उसमें पैदा होने वाली कंपन यानी कि वाइब्रेशन गर्दन तक पहुंचती है, और गर्दन के मूवमेंट के साथ वो कंपन खोपड़ी तक जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया से दिमाग में संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण चक्कर और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उल्टी भी हो सकती है। तो मोशन सिकनेस का दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर फ्लूइड में कंपन होता है तो भी उल्टी की समस्या हो सकती है। और पहला कारण तो बिल्कुल था ही कि जो संतुलन होता है वो ठीक ठीक नहीं बैठता, दिमाग को आंखें कुछ और बता रही होती है और कान कुछ और बता रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग वजह से परेशानी देखी जा सकती है। और इन सब के अलावा आप जब सफर पर निकलते हैं तो उस दौरान आपके पेट की स्थिति कैसी है, ये भी मोशन सिकनेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खाली पेट सफर करते हैं तो फिर आपके पेट की वेगस नर्व जो कि हार्ट और गर्दन की नर्व से जुड़ी होती है वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और फिर इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ता है और आपको चक्कर जैसा महसूस होता है। और अगर आप खाली पेट नहीं है, आपने पूरा भरकर भोजन किया हुआ है यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपने खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद आप सफ़र पर निकल गए हैं, तो ऐसे लोगों में भी उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप सफ़र पर निकले तो हल्का खाना ही खाएं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पेट जाएं या फिर बहुत ज़्यादा खा लें, हल्का खाकर निकलें तो आपके पेट में भी ठीक ठाक संतुलन बना रहेगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मोशन सिकनेस के बारे में जो अभी तक हमने समझा वो ये कि ये सफ़र के दौरान होता है, लेकिन कई बार ये सफ़र से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होती बल्कि दिमाग की किसी बीमारी या फिर किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है ऐसा कुछ। कुछ मामले में तो मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे सफ़र भी आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं या फिर आप सारी सावधानियां अपना रहे हैं, इसके बावजूद आपके अंदर मोशन सिकनेस जैसी बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। इसलिए अगर परेशानी ज़्यादा हो तो डॉक्टर से मिल लेना भी ज़रूरी होता है, कम से कम आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो कुछ गलत नहीं है। और अब तक हमने बीमारी के बारे में बातें की, बीमारी के कारण के बारे में बातें की, अब हम आपको बताते हैं कि सफ़र में उल्टी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि भारी भोजन से बचना चाहिए, खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर ज़रूरी हो तो उल्टी रोकने वाली टेबलेट ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। और ध्यान रखें कि चलती गाड़ी में नहीं सोएं अगर आपको पहले से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। और ध्यान रखें कि अगर आपको मोशन सिकनेस वाली परेशानी है तो सफ़र के दौरान आप अपनी नज़रें नीचे करके फ़ोन न चलाने लग जाएं, या फिर आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं सफ़र के दौरान, तो यहाँ पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी कि सफ़र के दौरान आपको किताब पढ़ने से भी बचना होगा, ताकि आपकी आंखें आपके दिमाग को संकेत दे पाए कि आप चल रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं, और आपके कान जो आपके दिमाग को संकेत देंगे वो संकेत मिलेंगे तो आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा। इसके साथ ही आप अपने शरीर की स्थिति को भी स्थिर रखें, यानी कि सिर, कंधे, कमर और घुटने की हलचल थोड़ा कम करें, और अगर आपको परेशानी हो तो आप आगे की ओर मुड़े हुए सीट पर बैठें या फिर सामने की सीट चुनें, ये आपकी परेशानी को थोड़ा कम करेंगे। और अगर संभव हो तो खुद ही आप ड्राइव करें यानी कि वाहन चलाएं, तो इससे तो बिल्कुल आपका दिमाग, आपके कान, आपकी आंखें, आपके दिमाग तक यही संकेत पहुंचाएंगे कि हमारा शरीर मोशन में है, तो संकेत या संतुलन की वजह से तो मोशन सिकनेस आपको नहीं होंगे फिर। और इसके अलावा निकोटिन से बचें, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें उल्टी की संभावना ज़्यादा होती है। और संगीत तो सबसे अच्छा साथी होता है, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, संगीत सामने आता है और कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर हल्का और सुखद संगीत सुने तो आपको सफर के दौरान मोशन सिकनेस की परेशानी
कम होती है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और आता है कि क्या महिलाओं में मोशन सिकनेस की

0: समस्या ज्यादा होती है। तो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है और इसके पीछे शारीरिक और हार्मोनल कारण होते हैं। जानकारों का मानना यह है कि जो महिलाओं की जीवन शैली होती है वो पुरुषों से काफी अलग होती है और यही एक वजह होती है कि महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण होता है महिलाओं का पोस्चर। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर के कामकाज बहुत देर तक खड़ी रहकर करती है, खासकर रसोई में जब वो खाना बनाती है तो लगातार खड़ी रहती है, तो लगातार खड़े होने से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है जिसकी वजह से मोशन सिकनेस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल बदलाव नियमित रूप से होते हैं और ये भी एक अहम वजह है मोशन सिकनेस के लिए। और पीरियड्स के दौरान तो शरीर में नमक, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन लगातार बदलता रहता है जिसकी वजह से भी मोशन सिकनेस जैसी परेशानी। तो मोशन सिकनेस के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की। उम्मीद है कि आप और अगर आपको ऐसी ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आज जिन भी बातों के बारे में मैंने आपको बताया उन बातों का आप ध्यान रखेंगे और मोशन सिकनेस जैसी परेशानी से आप खुद को बचा पाएंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि आपके रेडियो दोस्त और होस्ट उमा को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अपनों का रखे खास ख्याल। नमस्कार। स्वस्थ रहे हम।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हम बातें

0: करने वाले हैं बेसिलस एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
1: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बैसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
0: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
1: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफूंद का जो माइसेलिया होता है या फफूंद की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया, फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
0: तो मैम, अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है।
1: जी,
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है।
1: जी,
0: तो मैम, किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
1: तो जैसे मैंने बताया पहले से कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो मैम, अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
1: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार

0: के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगरजी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगरजी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाज़ार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई

0: को बेसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
1: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
0: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन।

0: मिशन।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं मैम KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
6: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है आज के डेट में। हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफ़ी उपलब्ध है इसके लिए।
4: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
6: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है, और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार के डिमांड पे, मांग पर, इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
4: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
6: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पुसार पिता है, पुसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं, तो उनके पास अपना पौधा रहेगा, और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है, जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए। बालू की मात्रा रहनी चाहिए क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है, जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान? जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे, और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर

0: रहने देंगे, और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
1: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
0: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है, और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उससे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं, तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 × 4 = 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है, और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर, 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें, नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें।
1: जी मैम,
0: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है, लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं। और सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में कि यहाँ का जो बाज़ार है, भागलपुर का जो बाज़ार है फूलों का बाज़ार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाज़ार पर कलकत्ता के ही बाज़ार का कब्जा था, और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है।
1: जी मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि

10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें, क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है, और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसकी लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं।

0: कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
1: जी मैम,
0: और उसको करना प्रारंभ करने, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
2: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए, और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाजार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए, और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए, और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू उमा।
2: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
3: उन्नत कृषि।
4: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
4: खांसी?
5: हाँ।
4: इसको तो एक आध महीना हो गया,
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं, और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
4: डॉक्टर, खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी

जाता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं, और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है, और इसलिए आपको हॉट फ्लैक्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें, और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं, और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिएं, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है

उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और

25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना लें और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है।

0: की एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: सामुदायिक रेडियो FM3।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोटे अनाज के बारे में जिसे कि श्री अन्न भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बाजरा के बारे में। बाजरा जो कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वर्षा काफी कम होती है, तो आइए आज हम बाजरा की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर आनंद कुमार से। सर, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: किसान भाइयों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बाजरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और अपनी आय वृद्धि कैसे करें, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
0: जी सर, तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि बाजरा की वैज्ञानिक खेती अपनाने से किसानों का क्या उत्पादन लाभ भी मिलता है किसानों को, और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या इस क्षेत्र में भी लाभ मिलते हैं?
3: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा प्रमुख श्री अन्न फसलों में से एक है, और जहां तक वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं तो यह छठी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। इसका जो खेती होता है वो मोस्टली कहाँ होता है, जहां शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए है, जहां पर सूखा की स्थिति रहती है और वहां की भूमि क्या होती है, कम उर्वरा शक्ति वाली होती है, और ये उच्च तापमान जहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है वहां जीवित रहने में ये सक्षम होती है। इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वह हल्की मध्य भूमि में सबसे अच्छी उपज देती है, इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक किसानों के लिए एक वरदान है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बदलती जलवायु परिस्थिति में बाजरा एक क्या है, एक जलवायु सहिष्णु फसल के रूप में उभर रहा है, और बाजरा अत्यधिक पौष्टिक अनाज है। इसमें देखिएगा प्रोटीन का मात्रा जिसे चावल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, 11.5% होती है, फाइबर होती है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम तथा अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका हरा चना में और भूसा पशुओं के लिए भी उत्तम चारा के रूप में हम लोग किसान भाई उपयोग करते हैं। तो बाजरा की खेती में कम लागत भी बहुत कम लगता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ता है, और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए किसानों की आय बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: जी सर, अगर हम बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और बुआई का सही समय क्या है?
3: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा को जो है वह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फसल है। तो बाजरा की खेती कैसे भूमि में है हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसे खेत जो दोमट बलुई एवं बलुई भूमि में है तो उसमें सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। और एक बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि भूमि में जल निकास की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहना फसल को नुकसान पहुँचा सकता है, और वर्षा के पश्चात जैसे ही मानसून शुरू हो के पहले प्रथम जुताई में मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से हम लोग खेत को जुताई कर देनी चाहिए, और इसके पश्चात हैरो द्वारा एक क्रॉस जुताई करके पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कर देना चाहिए कि कहीं भी पानी नहीं जमे। तो जहां तक हम लोग बीज दर के बारे में बात करेंगे तो बाजरा की बुआई का समय किस्मों के पकने की अवधि पर निर्भर करता है। तो बाजरा में तीन तरह का फसल हम लोग लेते हैं, तो बाजरा में दीर्घायु जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो 80 से 90 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई करते हैं। इसके लिए जो उचित समय होता है वह जुलाई के प्रथम सप्ताह में है, तथा मध्यम अवधि जो 70 से 80 दिनों में किस्मों में पकने की होती है उसकी बुआई 10 जुलाई तक हर हालत में कर देनी चाहिए, और जो शीघ्र और जल्दी जो अर्ली रहती है, अर्ली जो होती है वो 65 से 70 दिनों में पकने वाली किस्में होती है, उसका बुआई हम लोग 10 से 20 जुलाई तक कर सकते हैं। और जहां तक बीज दर का बात है तो बाजरे की फसल के लिए उचित बीज दर 3 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो बाजरा की बुआई हमेशा

0: करना ज्यादा फायदा होता है। तो बाजरा की यदि बुआई यदि पंक्ति में करते हैं तो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वह 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधा से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बीजों की हम लोग बुआई करेंगे तो उसमें गहराई होना चाहिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई के लगभग एक माह पूर्व 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या सरा हुआ जो गोबर हुआ कंपोस्ट का प्रयोग करें। और शुष्क जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है जैसे कि हम लोग जमुई गया ये सब जो क्षेत्र है में अच्छी फसल प्राप्त करने हेतु उर्वरक की जो अनुशंसित मात्रा होती है वह 40-20-20 यानी 40 kg नेत्रजन 20 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास प्रति हेक्टेयर तथा शुष्क क्षेत्रों के लिए जो खाद की मात्रा होती है वो 60-30-20 यानी नेत्रजन 60 kg 30 kg फॉस्फोरस और पोटास 30 kg। तो बुआई के समय फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और एक महीने के बाद जो शेष बची हुई नेत्रजन होती है उसको हम लोग को खेत में डाल देना चाहिए।
1: जी सर, अब हम बात करते हैं उन्नत और अनुशंसित किस्मों के बारे में। तो बाजरा की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
0: जैसा कि किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बाजरा में चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संकर किस्में का उपयोग करें। तो बाजरा में संकर और जो संकुल है जिसको हम लोग कंपोजिट किस्में बोलते हैं वो दोनों तरह की किस्में उपलब्ध है। तो बाजरा के जो उन्नत संकर किस्में अनुशंसित उन्नत संकर किस्में हैं उसमें सबसे अच्छा प्रो एग्रो 9001 है जिसको हम लोग 25 जुलाई से 15 अगस्त तक लगा सकते हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि पकने की अवधि है वो 85 से 87 दिनों में तैयार हो जाती है और 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम लोग इसकी उपज ले सकते हैं। और इसकी विशेषता है कि देर से पकने वाले प्रभेद ये हैं और जो इसमें मृदु रोमिल आशिता इसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू रोग कहते हैं झोंका के प्रति इसमें सहने की क्षमता होती है और ये जैव समर्थित प्रभेद है। तो इसमें आयरन की मात्रा 45 ppm और जिंक की मात्रा 37 ppm होती है। उसी तरह दूसरा प्रभेद जो 2024 में रिलीज हुई है वो है HBH191294 ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त की है और ये इसकी परिपक्वता अवधि ये 84 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह PBH1879 और कावेरी सुपर बॉस ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है कावेरी सुपर बॉस ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त इसका बुआई का समय है और इसकी ये भी 50 दिनों में तैयार हो जाती है और ये भी उपज 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है और इसके दानों में भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा होती है जैसे 46 ppm होती है और जिंक की मात्रा 40 ppm। इसी तरह और भी बहुत अच्छी प्रभेद है जो बहुत अच्छा उपज दे रही है जैसे HSB67 या MPM H17 या GHB538। तो किसान भाइयों को जो भी अच्छी कहीं से भी अच्छे संकर बीज मिले वे लगा सकते हैं। इसी तरह यदि किसान भाई संकुल किस्में लगाना चाहते हैं तो उसमें धन शक्ति और PC701 जिसको हम लोग पूसा कंपोजिट 701 कहते हैं ये लगा सकते हैं। इसकी उपज थोड़ा जो संकर किस्में होती है उससे कम होती है।
1: जी सर, अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम बाजरा के प्रमुख रोगों और कीटों के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं और उनके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है और क्या समेकित प्रबंधन किसान भाई बहन कर सकते हैं?
0: जैसा कि किसान भाई बाजरा में जो प्रमुख रोग लगते हैं उसमें मृदा रोमिल आशिता रोग जिसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं और इसमें अस्मट जिसको कंडुआ रोग कहते हैं और अर्गट तथा रतुआ रोग ये मोस्टली यही जो रोग हैं वो बाजरा में लगते हैं। तो रोगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो हम लोग बताए हैं प्रतिरोधी किस्म उसका उपयोग करें तो उसका देखिएगा कि उसमें आपको डिजीज बहुत कम लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो बाजरा में लगता है वो डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदा रोमिल आशिता रोग इसको आप लोग कैसे पहचानिएगा? तो इसके पहचानने का सबसे बड़ा लक्षण है कि पत्ती के जो निचली सतह होती है उस पर सफ़ेद अलैंगिक बीजाणु जनन से संक्रमित हरिमाहीन पर्ण आपको दिखाई देगा और गंभीर स्थिति में ये जो संक्रमित पौधे होते हैं वे छोटे रह जाते हैं तथा उसमें देखिएगा कि पुष्प गुच्छ उसमें नहीं बन पाता है और हरी बालियां जैसे लक्षण उसमें आपको दिखाई देंगे। इसका प्रबंधन है कि एक ग्रीष्मकालीन जब ग्रीष्म सीजन रहता है उसमें गहरी जुताई कर दें या यदि आप रोग दिखाई दे तो एक दवा आती है मेटालेक्जिल एप्रोन जिसको हम लोग एप्रोन 35 ST उसको 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से या आप या चिटोसिन दवा आती है जो 10

0: ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप बीजोपचार कर दें, तो इसे देखिएगा कि इसका जो संक्रमण है, इसका रोग आपको उसमें नहीं लगने की समस्या रहेगा। यदि आप दूसरा जो रोग है वो है स्मट, ये इस बीमारी में देखिएगा कि पौधे की जो बाली होती है उसमें दाने हरे रंग एवं बड़े हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण देखिएगा कि बाद में ये जो दाने हरे रहते हैं वे काले पड़ जाते हैं तथा पूरे फफूंद के स्पॉट आपको भरे दिखाई देते हैं। तो ग्रसित बालियों को आप खेत से हटाकर तुरंत जला दें, या पत्ती निकलने की अवस्था में पुष्पगुच्छ पर जिन्हें दवा आती है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप 2 छिड़काव कर दें, फिर 15 दिनों के बाद पुनः उसको रिपीट कर दें। तीसरा जो बीमारी है अर्गट, इस रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस रोग में संक्रमित जो पुष्प जो बाली में पुष्प रहते हैं मलाई जैसे रंग हल्के गुलाबी रंग के मधुरस पदार्थ का सरा होता है, इसमें अनेक जो कुनाइडिया होते हैं, कुछ दिनों के बाद यह पदार्थ भूरा और चिपचिपा हो जाता है और बाद में काले पदार्थ के रूप में बदल जाता है। तो फसल पर जो हम लोग बाली जो जिसको हम लोग सिट्टी बोलते हैं उस जैसे ही बनता हो उसमें 2.5 किलो जो जिनेम फपूदनाशक जिनेम दवा होती है या 2 किलो मैनकोजेब दवा कम से कम 3 से 4 छिड़काव जो 3 से 15 दिनों के पर अपना करते रहें। इसी तरह हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख कीट लगते हैं, तो बाजरा में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें देखिएगा कि सूट फ्लाई जिसको हम लोग परोह मक्खी बोलते हैं, तो इसको पहचानने का है कि जैसे ही ये मक्खी ये इसका कीट का प्रभाव होता है तो देखिएगा कि बाजरा का जो बीच वाला केंद्रीय तना होगा वो सूखने लगेगा और परों जो मक्खी का जो सबसे बड़ा ये रहता है कि प्रकोप होने पर अंकुरण के 10 या 20 दिनों के बाद जो फसल पर साइपरमेथ्रिन एक दवा आती है उसका छिड़काव कर दें, तब इससे बचाव हो सकता है। उसी तरह दूसरी प्रमुख जो कीट है वो सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी का जो सुंडी जिसको हम लोग ग्रब कहते हैं वो जड़ों पर हमला करता है और पौधों को क्या करता है मृत्यु के कारण, देखिएगा कि जो पौधा और पौधा के बीच में क्या होता है, बीच में पौधा मर गया तो अंतराल आपको ज़्यादा दिखाई देगा, और व्यस्क जो इसका कीट होता है वो जो बाजरे की दुधिया अवस्था में जो फूल और दाना बनता है उसको खा जाता है। तो इसका प्रबंधन का सबसे अच्छा उपाय है बीज के साथ 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एक बाजार में कार्बोफिरोन दवा 3G आती है, उसको जो बुआई के समय उसके लिए कूड़ा जो बनाते हैं उसमें वो डालते जाएं, तो इसका देखिएगा कि इस कीट को वो आपके खेत में नहीं लगेंगे।
1: जी सर, तो आपने जो उपयोगी बातें बताई उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाई बहनों आप बाजरा की खेती कीजिए और खेती को वैज्ञानिक तरीके से कीजिए तो आपको काफी लाभ होगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का भी विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की

0: सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्तनपान दिवस के बारे में। जी हां, माँ का पहला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है, ये आज भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सी वजहें होती है जिसकी वजह से माएं आज भी अपने बच्चों को अपना गाढ़ा पीला दूध पिलाने से वंचित रहती है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का दिया सबसे अनमोल उपहार होता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होता है। लेकिन क्या हर नवजात को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिल पाता है? आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर स्तनपान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बिहार में मई 2026 में जारी की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट की अगर हम माने तो बिहार में शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिलने की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन फिर भी जीवन शैली में बदलाव चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भागलपुर सहित बिहार में अब भी 91.9% बच्चों को ही उसके जन्म के समय 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। और अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो 56.8% और ग्रामीण क्षेत्र में 91.4% बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध मिल पाता है। और अगर हम वही पिछले सर्वेक्षण जो कि 2019-21 में हुआ था, अगर उसके आंकड़ों को अगर हम समझें तो मात्र 31.1% ही ऐसे बच्चे थे जिन्हें माँ का गाढ़ा पीला दूध पहला मिल पा रहा था। लेकिन अब थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन अब भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 48.1% बच्चे को आज भी जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। जन्म के पहले घंटे में मिलने वाला माँ का दूध शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और राज्य में 62.5% बच्चों को शुरुआती 6 महीने में स्तनपान कराया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, जो जन्म के बाद माँ के पहले दूध से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान क्यों जरूरी होता है। बच्चे के जन्म के बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसे अक्सर बच्चों का पहला टीका भी कहा जाता है, जो उन्हें अनेक बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चों को संक्रमण से बचाने और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसलिए बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए आसानी से पचने वाला संपूर्ण आहार होता है। इसमें बच्चों की जरूरत के अनुसार जो भी पोषण तत्व होते हैं वो मौजूद होते हैं, और शुरुआती महीनों में ये बच्चों के स्वस्थ विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसे 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान उसका शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल

उठता है कि क्या बच्चों को जन्म के तुरंत बाद शहद, घुट्टी या कोई दूसरा तरल पदार्थ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसे नियम होते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे शहद देते हैं या कोई भी ऐसे तरल पदार्थ देते हैं। तो विशेषज्ञों की अगर माने तो नवजात को जन्म के बाद शुरुआती समय में केवल माँ का दूध ही देना चाहिए और बिना किसी चिकित्सीय सलाह के कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। माँ और बच्चे को जन्म के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके एक दूसरे के संपर्क में लाना चाहिए और साथ ही स्तनपान शुरू कराना भी बेहद उपयोगी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 6 महीने तक बच्चे की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से माँ का दूध देने की सलाह दी जाती है। अगर हम स्वस्थ शिशु की बात करें तो उन्हें जन्म से 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध देने की ही सलाह दी जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग अब इस बारे में जागरूक होने लगे हैं और इसे विशेष स्तनपान कहा जाता है। इस दौरान बच्चे को पानी की भी सामान्यतः जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ का दूध ही उसकी पोषण और तरल पदार्थ की जरूरत पूरी करती है। यानी कि जो माँ का दूध होता है ना, वो अपने आप में पूरा होता है। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ उसके उम्र के अनुसार पूरक आहार देना शुरू कर दिया जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो फिर भी लेकिन माँ का दूध देना तब भी जरूरी होता है, लेकिन माँ के दूध के साथ वो कुछ आहार बाहरी चीजें खा सकता है। स्तनपान को इसके बाद भी जारी रखना जरूरी होता है। और अगर हम बात करें, स्तनपान सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ये माँ और बच्चे के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत तो करता ही है। आपने देखा होगा बच्चे जब स्तनपान करते हैं तो उनका माँ से लगाव बहुत अधिक होता है। और साथ ही माँ के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रसव के बाद माँ के शरीर में भी बहुत सारी चीजें बदलती है। तो प्रसव के बाद माँ के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में स्तनपान काफी मदद करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को पौष्टिक भोजन मिले और स्तनपान कराने के लिए उचित समय और सहयोग मिले, इसका ध्यान परिवार को पूरी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त माँ के शरीर में बहुत सारी चीजें बदल रही होती है, वो बहुत सारे स्तर पर परेशान होती है। इसलिए परिवार का ये दायित्व बनता है कि वो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखे, माँ की सेहत का ध्यान रखे और इस बात का ध्यान रखे कि एक स्वस्थ माँ बच्चे को स्तनपान जरूर कराए। और अगर माँ या बच्चे को स्तनपान से जुड़ी कोई समस्या हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए, नर्स के पास जाइए या फिर किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है कि बच्चों के लिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो बच्चे का पहला टीका होता है जो उन्हें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है, उनका विकास अच्छा कराता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात को माँ का पहला दूध जरूर मिले, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और माँ का पहला दूध बच्चे की जीवन की मजबूत शुरुआत है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो आइए हम सभी मिलकर ये संदेश घर घर तक पहुँचाए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा नवजात बच्चा है तो उसके माता पिता को, उसके घर वालों को ये समझाने की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि स्तनपान कराना कितना जरूरी होता है। हर नवजात को माँ का पहला दूध मिले और हर माँ को स्तनपान के लिए सही जानकारी और परिवार का पूरा सहयोग मिले। हम इसी बात की उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। तो आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखे विशेष ध्यान। और फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि आपके अगर आसपास या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो नवजात है और उसके घर वालों को इस बात की समझ नहीं है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे का आगे आने वाला भविष्य मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। तो मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, है कोई माई का लाल जिसने माँ का

0: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: लोग धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखाड़ पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा।
2: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
3: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
2: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
3: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
2: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
3: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का

0: यूज करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
1: जी तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
0: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले, उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
1: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी, बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि है, जलवायु अनुकूल कृषि है या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके के पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटाशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नैनो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं, तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीक है, तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है। नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से

0: कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादकता को वृद्धि करेंगे। ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नानो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियाँ हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद उमा आपको।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं।

है 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड नेम, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाए। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों। लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जिसे कहते हैं। जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरी

तो महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएं लगातार आम तौर पे नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उससे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खासतौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खासतौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना, तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, अगर कुछ परेशानी हो रही है आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है, तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, या आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे, वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए।

0: कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये ख़ास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीज़न की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल

0: पता है कितना आता है?
1: जीरो।
0: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं खरीफ तिल के बारे में, किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम आप हैं अनुवांशिकी पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
5: तो मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि खरीफ में तिल की खेती क्यों करनी चाहिए?
6: जैसे आप जानते हो कि खरीफ एक ऐसा सीजन है जहाँ पे आप सबके दिमाग में खरीफ सुनने के बाद सबसे पहले आता है कि हम राइस की खेती, पैडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वैसे किसान भाई जिनके पास राइस लगाने के बाद, पैडी लगाने के बाद कुछ ज़मीनें बच जाती हैं, या कुछ वैसे इलाके बिहार के जो पूरे खरीफ में लगातार वर्षा नहीं हो पा रही है, मतलब आप कह लो वहाँ पे रेनफेड कंडीशन है, उनको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वैसे जगह के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप तिल को भी एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तिल बेसिकली आप देखोगे कि ये कम पानी में बहुत अच्छा पैदावार देती है। आप इसमें देखोगे तो तेल की मात्रा 45-50% होती है। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं तिल की, काले और सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल में जैसे आप देखोगे कि उसकी हम बहुत प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे तिलकुट बना सकते हैं, तिल पट्टी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं। तो इन्हीं विषयों की वजह से आप देखोगे कि जो तिल है हमारा वो खरीफ सीजन में एक प्रमुख तिलहनी क्रॉप के रूप में इसको हम ले सकते हैं।
5: तो मैम तिल की खेती के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है?
6: बिल्कुल, जैसे आप देखोगे तिल बेसिकली गर्मा तिल भी लगाते हैं, खरीफ में भी लगाते हैं। खरीफ में भी आप देखोगे कि नॉर्मली खरीफ में बिल्कुल टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। आप देखोगे 25-30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है पूरे खरीफ सीजन में, तो ये एक उपयुक्त तापमान है। उसके बाद आप देखोगे कि जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो हमें इसमें एक आप कह लोगे कि एक तरह की बलवाई दोमट मिट्टी चाहिए जिसमें कि पानी का रुकाव ज्यादा ना हो सके, तो इस प्रकार की मिट्टी है। और जहाँ पे आप देख लोगे सिंचाई की प्रबंधन, सिंचाई करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप सिर्फ बारिश के पानी पे भी आधारित हो, और वैसे कुछ इलाके जहाँ पे कम बारिश हो रही है वहाँ पे इस फसल को आप ऑप्शन के रूप में ले सकते हो।
5: और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
6: हाँ, खेत की तैयारी की बात जैसे आप करें तो देखो आप बीज इसकी बहुत छोटी होती है, बिल्कुल, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि ऐसे छोटे बीज किस्म वाले फसलों के लिए जो आपकी मिट्टी होनी चाहिए, हाथ में जैसे आप उठा के देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम रेतीला भुरभुरा होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले एक बार आप मिट्टी को कल्टीवेटर जो आता है, जिसको आप हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दें पहले एक बार, उसके बाद लगातार से 2-3 बार आप हैरो या कल्टीवेटर लगा करके बिल्कुल से कर दे। एक बार पहली गहरी जुताई हो गई, फिर 2-3 बार हमने कल्टीवेटर चला दिया, उसके बाद अंतिम जुताई जब हम पाटा लगा करके उसको प्लेन समतल करते हैं, उसके बाद आप हाथ में मिट्टी उठा के देखोगे जब भुरभुरा हो गया है तो अब आपका खेत तैयार हो गया है तिल के लिए।
5: मैम जब हम खरीफ तिल की बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती है?
6: बिल्कुल, जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ माँ कि जब हम लोगों ने खरीफ और समर में जब हमने सर्वे किया तो जो जो आपका किसान है उनके लिए सबसे पॉपुलर वैरायटी जो हमने उनके खेत में जाकर के देखा वो हमारी GT5 थी, GT6 है जो हमारी सफ़ेद तिल है, GT10 है और कृष्णा ये हमारी काली तिल की वैरायटी है। उसके अलावा हमारा जो प्रगति जो किसान MTU 75 के नाम से मार्केट में खरीद के लाते हैं ये भी सफेद तिल की वैरायटी है। शेखर हमारी सफेद तिल की वैरायटी है।

0: फिर TKG 22 ये भी हमारी सफेद तिल की वैरायटी है, और RT 351 ये भी हमारी सफेद तिल की वैरायटी है। तो मतलब आप देखोगे अमूमन यहाँ जो हमारा बिहार का इलाका है, मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से किसान का जो रुझान रहता है वो आपका सफेद तिल की तरफ ज्यादा होता है अपेक्षाकृत काले तिल के।
1: तो मैम अब बात करते हैं बुआई की, बुआई कब करनी चाहिए और बीज की दर क्या होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, जब हम बुआई की बात करें तो जैसे हमारा आपका जून शुरुआत हो गया, तो जून के 15 दिन आप अपने खेत की तैयारी में लगा दो, उसके बाद 15 जून से 15 जुलाई का जो महीना होता है, जो आप बोलते हो कि सही समय पे बुआई, ठीक है, ये बिल्कुल सही समय है तिल की बुआई करने का। किसी वजह से अगर सपोज आपका जून से जुलाई के बीच में, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर बारिश बार बार आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 10-15 दिन पीछे भी जा सकते हो। 15 जुलाई से आप कह लो 16 जुलाई से 20 जुलाई 25 जुलाई तक भी आप अपनी फसल को ले जा सकते हो। और जहां तक बीज की दर की बात हुई, तो हम 4 से 5 kg पर हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ इसमें कतार से कतार की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और गहरा, एक तो छोटा छोटा बीज होता है तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ऊपर सतह पे छोड़ नहीं सकते हो, कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर उंगली से देख लोगे, उसके नीचे जाकर के फिर मिट्टी से ढकोगे। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप बुआई करें ना, तो हमेशा कतार में करें, बिल्कुल ऐसे छीट देने से, ब्रॉडकास्टिंग करने से ना वो उपज नहीं मिलती है आपको। बाद में कुछ एक्टिविटीज करने में, जैसे आपको वीडिंग करना है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो गए, कुछ भी करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है।
1: और मैम कई बार हमें लगता है कि बीजोपचार नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या बीजोपचार करना जरूरी होता
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल, बीज उपचार करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं, गर्मी में ना कि हमारे पर्यावरण का, जबकि मिट्टी का भी तापमान कुछ बढ़ा हुआ होता है, तो उस तरह की जो मिट्टी के तापमान होती है, तो उस केस में हमारे जो कीट हैं, मकोड़े हैं, जो हमारे डिजीज है उत्पन्न करने वाले कुछ मक्खियां हैं, तो वो उस समय इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब हम खरीफ की बात करें तो बिल्कुल ये एकदम, एक हमारा डिजीज ट्रायंगल आपने सुना होगा, होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट, ये तीनों बिल्कुल फेवरेबल होता है। हमारा होस्ट हो गया आपका जो ये क्रॉप हो गया, और पैथोजन तो बीमारी के बारे में आप जान ही रहे हो, इन्वायरमेंट हमारा टेम्परेचर भी है आपका 25 से 30 डिग्री, 35-32 डिग्री के आसपास, और ह्यूमिडिटी तो ज्यादा होती ही है, ठीक है। तो इस केस में आपको बीज उपचार करके अगर लगाएंगे, जैसे थिरम और कार्बन डजीम 2:1, 2 रेशियो आप लेंगे थिरम का, 1 कार्बन डजीम का, और 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का मिला करके, और आप ये रासायनिक उपचार करके अपने खेतों में बीज को लगा सकते हैं।
1: मैम अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: बिल्कुल, अब जैसे हम लोग तभी तक एक्टिव हो सकते हैं जब हम भोजन ले, तो वैसे ही खाद की बात जब हम करेंगे तो पौधों के लिए ये एक भोजन है। चलो मिट्टी में जितना हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम है, वो तो रूट से पौधों में जा रहा है, लेकिन हमें बाहरी जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर होता है वो भी देना आवश्यक होता है। तो अगर हम देखा जाए तो जैसे हमने शुरू में जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो कुछ लोग उसी में गोबर या FYM लगा करके ही जुताई पाटा लगवा देते हैं। उसके बाद जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो आप कह लो कि नाइट्रोजन 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस आपका 2 से 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारा यहाँ पे 40 केजी जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, उसको हम एक बार तो शुरुआत में डालें, और एक बार जब पौधा हमारा कुछ 1 महीने का करीब हो जाए, 1 से 1.5 महीने का, तब हम दूसरी बार भी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा तिलहनी फसल है, ऑयल सीड, इसके लिए सल्फर का कंटेंट ज्यादा होगा, तो ऑयल का यील्ड, ऑयल का कंटेंट ज्यादा होगा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिप्सम जो है 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका यूज कर सकते हैं, ताकि क्रॉप में जो उच्च तेल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बराबर बरकरार रहे।
1: मैम खरपतवार कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: बिल्कुल, इसमें जैसे आपको मैंने बताया, जैसे आपने बुआई करी, 7 से 8 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन हो जाता है, और बिल्कुल आपके सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उतने जैसा छोटा छोटा पौधा होता है। इस समय तो आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हो, तो आपको ठीक

0: जब से आपने बुआई की है ठीक उसके 20-25 दिन के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहली निराई और गुड़ाई का। ठीक है, 15 से 20 दिन में सबसे पहली। उसके बाद है कि जब पौधा कुछ थोड़ी दिन और हो जाए, मतलब पहली निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद फिर से आप 30 से 35 दिन के बाद आप दोबारा से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इससे ये हुआ कि आपस में जो पौधे हैं, जैसे आपने अगर एक लाइन में कतार की जो बुआई मैंने बोला जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, तो एक ही पौधे आसपास में 3-4 पौधे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको आप हटाओगे और उसके बाद जो आप जितने भी खर पतवार हैं उनको हटाओगे तो सरफेस पे पूरा अच्छे तरीके से पौधे तक धूप जाएगी। उसके बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा और आपका जो पौधा है वो बहुत हेल्दी होगा।
1: मैम, खरीफ तिल के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं और
0: बिल्कुल,
1: इनसे जी मैम, और इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
0: हाँ, जैसे आपको मैं बताऊं कि खरीफ में जैसे एक तो आप सबसे बड़ी देख लो, खरीफ तिल के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि किसान भाई ये ध्यान देंगे कि जो हमारा तिल है ये एक ऐसा तिलहनी फसल है कि जहां पानी जमाव हो गया आपके खेतों में तो बिल्कुल आप देखोगे कि पौधा जो है बिल्कुल झुक जाएगा और एकदम ऐसे अधमरा सा झुलसा हुआ हो जाएगा। बिल्कुल आप जैसे देखोगे जैसे इसमें झुलसा रोग लगती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो आप एक बार पहले देखोगे, कोई भी दवाई डालने से पहले देखोगे कि या तो बारिश की वजह से खेत में जल जमाव तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से पौधा जो है हमारा वो पीला पड़ गया है, उसमें झुलसा रोग की तरह कुछ निशानियां दिख रही हैं, तो ये कंफर्म करने के बाद ही आप जो भी प्रमुख दवाई है वो डालोगे। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं फाइलोडी डिजीज, तो फाइलोडी जो गुम्मा बीमारी है वो आपका हमारा गर्मा में और खरीफ में दोनों में होता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि खरीफ में नहीं होता, गर्मा में अपेक्षाकृत गर्मा में ज्यादा होता है, बट खरीफ के मौसम में वैसे इलाके जहां पे आपको लगातार 2-3 दिन बारिश हुई उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है 25 से 30 डिग्री, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर आप देखोगे कि 8-10-15 दिन के बाद फिर बारिश हो जाती है। तो ये जो जिस तरीके का जो से भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के इस तरीके का टेम्परेचर और क्लाइमेट का सिनेरियो बनता है वहां पे आपको गुम्मा बीमारी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ आप देखोगे कि जब पौधा हमारा बन गया उसमें फलियां बनने लगी तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वेबर की तरह होते हैं जो पत्तियों में छेद कर देते हैं, कभी कभी कैप्सूल बनने के बाद कैप्सूल में भी छेद कर देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रोग और कीट हैं जो आप खरीफ तिल में आपको देखने को मिलेंगे।
1: मैम, अब बात करते हैं कटाई और भंडारण की। भंडारण का और कटाई का सही तरीका क्या है?
0: बिल्कुल, जैसे आप किसी भी फसल को आप देखो तो आप जाते हो जब देखते हो कि पौधा हरे से थोड़ा पीला पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो जैसे आप खेत में पहुंचो और देखो तिल के पौधे जो हैं आपके पीले पड़ गए हैं और पत्ते झड़ने लगे हैं, और देखोगे इसमें जो जो फूल बनती है ना वो एक बार में पहले नीचे बनती है, नीचे से होते होते ऊपर की तरफ जाती है, तो नीचे की जो फूल हमारे पहले बन जाती हैं उनमें हमारा जो कैप्सूल होता है वो पहले बन जाता है, तो वो ज्यादा सूख जाता है, झड़ जाता है। तो अगर अभी तक इसमें कोई मशीनी कटाई का कोई इस तरीके का हमारे पास कोई प्रयोग अभी नहीं हुआ है और कोई उस तरीके की हमारे पास कोई मशीन भी नहीं है कि हम मशीन से एक ही बार में कटाई कर ले, क्योंकि इसमें जो पौधे में फलियां हैं वो नीचे में पहले पक के तैयार हो जाती हैं, ऊपर लेट से तैयार होती हैं, तो या तो आप देख लो या तो आप मैनुअली उसको जो पक के तैयार हो गई हैं उनको एक एक करके आप निकाल लो, और नहीं तो अगर उस तरीके से देखो आप कि अगर मध्य जो पौधे का मध्य भाग है और निचला भाग है वो पूरी तरीके से पत्तियां सूख गई हैं, पीला पड़ गया है, तो आप उनको काट सकते हो। काटने के बाद आप छोटे छोटे बंडलों से रस्सियों से बांध करके छोटा छोटा बंडल बना ले, बंडल बनाने के बाद उसको कहीं ऐसे जमीन पे ऐसे नहीं डाल देंगे, क्योंकि देखो आप जान रहे हो कि खरीफ का सीजन है, कि अगर आपने जून जुलाई में बुआई कर ली है तो कम से कम आप सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में काटोगे और बारिश उस समय भी होती है, तो जमीन पे आप जब डाल दोगे तो आप देखोगे कि कभी कभी अगर बारिश आ गया तो आपके कैप्सूल्स में और पौधों में एक तरीके का सफेद रंग का फफूंद लग जाता है, तो हमें वो नहीं करना। हमें कटाई करने के बाद पौधे को रस्सी से बांध करके खड़ा करके हमें जो भी हमारा थ्रेशिंग फ्लोर है उस पे रखना है, ताकि ऊपर से उस पे धूप चारों बगल से पड़ते रह जाए, ठीक है। उसके बाद फलियां, जैसे आप देखोगे कि जो बाकी बची हुई फलियां थी वो भी धूप से सूख गई हैं, अब खुलने लगी हैं, तो आप उसको तिरपाल के ऊपर डाल करके पौधे को झाड़ोगे तो सारी जो आपकी बीज

0: हैं तिल के वो बाहर आ जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी उमा कि जब भी गर्मी में आप देखोगे कि तापमान वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो जो हमारे बीज होती है ना उसको मॉइस्चर उसमें कमी होता है, लेकिन जब हम खरीफ की बात करेंगे ना तो मॉइस्चर उसमें बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे कि कटाई करने के बाद बीज जो आप रखो तो बिल्कुल कहीं बांध के किसी पोटली या बोरे में ना रख दो, उसको ध्यान दोगे कि बारिश के बीच में भी अगर कुछ कुछ ऐसा है कि अगर 10 दिन 15 दिन के बाद अगर तेज धूप आ रही है तो आप अपना जिस भी बोरे में आपने उसको रखा है उसको बाहर निकाल करके धूप में फैलाए बीच बीच में, ये बहुत जरूरी है ताकि आप के कटे हुए जमा किए हुए बीज के अंदर फफूंद ना लगे।
1: तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं किसान भाई बहनों को यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप जो किस्में चुनते हैं उसको ध्यान से चुने, कौन सा गर्मा तिल का है वैरायटी, कौन सा आपका जो खरीफ तिल का वैरायटी है, उसके बाद समय पे बुआई करें। किसी वजह से अगर बुआई लेट हो जाती है तो 15 जुलाई के बाद आप 1-2 हफ्ता ले लें, उससे ज्यादा पीछे ना जाए, क्योंकि आप देखोगे कि टेम्परेचर के हिसाब से भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और कैप्सूल जो उसमें जो फलियां बनती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जितना आपको है खाद डालने का उतना ही डालें। कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई, बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं, बोलते हैं कि, तो उस केस में क्या हो जाता है, तिल के पौधे पूरे झुलस के सूख जाते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि हो सकता है झुलसा बीमारी लग गई है। नहीं, और खरीफ के समय में एक बात जरूर बोलूंगी कि खेत में जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां जब भी आप लगाएं, या तो आप बंड ये बना करके लगाएं, बेड बना के रेस्ट बेड पे लगाएं, ठीक है, या रेस्ट बंड बना करके लगाए, जैसे आप गन्ना आलू ये सब लगाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके खेत में पानी नहीं जमेगा और आपकी तिल की जो खेती होगी वो बहुत बढ़िया होगी।
1: तो किसान भाई बहनों, जिस तरीके से मैम ने बताया उन तरीके का इस्तेमाल करके आप तिल की खेती कर सकते हैं, और कुछ बातों का ध्यान जो मैम ने कहा उन बातों का ध्यान रखिए, आपको खरीफ तिल की अच्छी फसल मिलेगी, आपका मुनाफा अच्छा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू उमा, नमस्कार।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: ये मेरा छोटा

0: भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। ये है FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। तो आज जब फिर से एक बार उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में, या फिर यूँ कहें कि मौसमी फल जो होते हैं उसका परिरक्षण हम कैसे करें, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनीता मैम। मैं आपको बता दूं, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ है KVK सबौर, और साथ ही सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद अनु।
3: मैम, मौसमी फल के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
4: सबसे बड़ी बात तो है, जो मौसमी फल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शरीर के लिए फल का नियमित सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये फल जो होते हैं विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। इन्हें विटामिन एवं खनिज का आहार में खजाना भी कहा जाता है। और लेकिन ये फल जो होते हैं वो मौसमी होते हैं
3: जी।
4: वो सिर्फ न किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, और यदि उचित रख रखाव नहीं रखा जाए तो वो शीघ्र ही खराब भी हो जाता है। उस मौसम में भी तुराई के बाद यदि हम सही प्रबंधन ना करें, उचित रख रखाव ना करें, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो डाटा है वो आंकड़ा बताता है कि लगभग 33% फल बिना प्रयोग हुए बर्बाद हो जाता है। और यह हम लोग सभी जानते हैं कि फल का उत्पादन में बहुत खर्च लगता है, लेकिन उससे काफ़ी कम लागत करके हम उसको परिरक्षित करके उपयोग योग्य बना सकते हैं। परिरक्षित फल का हम वर्ष भर सेवन करते हैं। मान लो जैसे अभी कोई सीजन है, जो कोई अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी अमरूद का सीजन है, तो हम सिर्फ मौसम भर अमरूद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके हम उत्पाद बना लें तो वर्ष भर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनावश्यक जो हमारी बर्बादी हो रहा था वो बर्बादी को बचा सकते हैं। प्लस ये जो हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि साल भर उसका हम सेवन करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो हम पौष्टिक सुरक्षा है वो भी हम हासिल कर सकते हैं। फल का विविध तरह का परिरक्षित उत्पाद, जैसे हम अचार, चटनी, मुरब्बा, सुखौता, स्क्वैश, जेली, जैम, ये सब बनाकर घर में आराम से रख सकते हैं। और इन सब के अलावा ये सब उत्पाद को यदि हम अपने प्रयोग के अलावा बेचते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी साधन होता है। और ग्रामीण महिलाएँ बड़े आराम से इन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उनको विभिन्न तरह का उत्पाद बना सकते हैं। यदि उनको अपना पेड़ बाग नहीं हो तो वो चूँकि मौसम में सस्ता होता है, वो सस्ता खरीद कर भी उसके उत्पाद को बना करके रख सकती हैं, और विविध तरह तरीके से अपने व्यक्तिगत उपयोग में या फिर बाजार में बेच करके उसका उपयोग करके फ़ायदा ले सकती।
3: जी जी मैडम, अब बात आती है कि फल परिरक्षण में उपयोग होने वाले परिरक्षक के विषय में जाना, तो क्यों कौन कौन से परिरक्षक होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
4: हाँ, कुछ जो परिरक्षक है, जो कि यदि आप फल सब्जी परिरक्षण में काम करना चाहते हैं, साल भर विभिन्न तरह के जो मौसमी फल हैं उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, परिरक्षण करना चाहते हैं, विविध तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो कुछ परिरक्षक है जिसकी की जानकारी रखना चाहिए, और आप आवश्यकता अनुसार उसे मार्केट से ले भी सकते हैं। जैसे कि एक साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड का उपयोग हम जो जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश ये सब बनाने में किया जाता है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड की जगह पर हम नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास नींबू का रस है तो नींबू का रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये इसका अचार, चटनी, सॉस ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग सॉस, चटनी, स्क्वैश तैयार करने में किया जाता है। मतलब सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग जनरली जो गहरे रंगीन खाद्य पदार्थ होता है उसको परिरक्षण में करते हैं। इसके बाद आता है पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका जो

0: हल्के रंगीन स्क्वैश वगैरह होता है उसमें हम लोग पोटासियम मेटाबाइल सल्फाइड का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः यही चार तरह के परिरक्षक हैं जो कि घरेलू स्तर पर हम लोग यदि फल का परिरक्षण करना चाहें तो इनका उपयोग होता है,
1: कर सकते हैं जी। तो परिरक्षित उत्पाद को रखना बहुत ज़रूरी होता है मैडम, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो कैसे रखें, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इन उत्पादों को रखने में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परिरक्षित उत्पाद है

0: बोतलों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़े से बर्तन में, जितना आपके पास बोतल है उसके अनुसार, वो बड़े से बर्तन में उसका ढक्कन को हटा करके, और ढक्कन हटा कर उसमें ढक्कन डाल देते हैं, और ढक्कन सही तो उसको लगभग आधा घंटा उबालते हैं, फिर उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं, और बोतल जब सूख जाता है तो उसके बाद ही उसमें हम लोग उत्पाद को रखते हैं, और हल्के गर्म अवस्था में ही उसको हम लोग सील भी करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास सीलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो पिघले हुए मोम में मोम पिघला जो दिवाली वगैरह में जो मोम बच जाता है या मार्केट में भी मोम मिलता है, उस मोम को ले आइए, उसको पिघला दीजिए, और पिघले हुए मोम का उपयोग करके हम लोग बोतल को ढक्कन को बंद करते हैं तो वो बिल्कुल शील्ड हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है उसके अंदर, और हमारा उत्पाद खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग बोतल में उत्पाद को भरते हैं तो लगभग एक इंच जगह ऊपर खाली रहना चाहिए, और मान लीजिए कभी किसी तरह का उसमें अशुद्धि रह जाता है तो फर्मेंटेशन वगैरह होता है तो उससे बोतल टूटे नहीं, इसलिए हमेशा ऊपर में एक इंच का जगह आपको खाली रखना चाहिए, और इस तरह से आप बोतल में यदि साफ सुथरा करके भंडारित करते हैं तो उत्पाद आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए धूप नहीं है, आप नहीं सुखा पा रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो आपको एक पोटासियम मेटाबिसल्फाइट है उसके घोल से भी बोतल को हम लोग अच्छे तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं तो फिर वो भी काम हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम गर्म पानी में खौला करके तेज धूप में उसको सुखा लें। इसके अलावा फल संरक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिस फल का भी हम लोग संरक्षण करें, उसका जो परिरक्षित उत्पाद बनाना चाहते हैं, वो स्वस्थ हो, अच्छे किस्म को हो, और सड़े गले या चोट खाए फल का प्रयोग ना करें। उसके बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लोहे का चाकू या बर्तन का प्रयोग ना करें, संरक्षित उत्पाद को हाथ व गीले चम्मच से ना निकालें, और बर्तन जिसमें या जार जिसमें कि आपको उत्पाद उसको बार बार ना खोलें, और बोतलें जो है हमेशा साफ धुली और सूखी रहना चाहिए, और जो मान लीजिए कि कोई बोतल का ढक्कन है यदि आप पुराना बोतल उपयोग कर रही हैं उसमें यदि छेद हो या जंग लगा हो तो उसका प्रयोग नहीं कीजिए, उसके जगह पे प्लास्टिक का जो सिंथेटिक फ्लैप है उसका उपयोग कीजिए। फिर प्लास्टिक या धातु के बर्तन में परिरक्षण ना करें, इसके लिए कांच की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए, और हमेशा एयर टाइट बोतलों का ही इस्तेमाल करें।
1: जी मैम, अब बात करते हैं अमरूद के बारे में, तो अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में बताएं, जैसे कि अमरूद के जेली भी बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी?
0: अमरूद का तो जो मुख्य रूप से जो जो प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि जनरली यूज करते हैं वो अमरूद की जेली है, और अमरूद की जेली हम लोग उसके जो जूस है उससे हम लोग बनाते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से डेवलप मैच्योर विकसित फल का चयन करते हैं, जो कि बिल्कुल जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डम्भक फल, वो डम्भक फल हमें लेना चाहिए, और इसको खूब या खूब पका भी अमरूद नहीं होना चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का जो फल हो वो डम्भक होना चाहिए, उसको थोड़ा सा काट के यदि हम खाएं तो वो थोड़ा मीठा स्वाद लगना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद उस अमरूद को अच्छी तरह से पानी से हम लोग धो लेते हैं और गोलाई में उसके टुकड़ों को काटते हैं, फिर इसमें जो बर्तन में हम उसको उबाल रहे हैं उस बर्तन में अमरूद के टुकड़ों को डाल देते हैं, उसके ऊपर से पानी इतना डालते हैं कि वो अच्छे से डूब जाए, उसके बाद उसको हम लोग पकाते हैं, जब वो पूरा सीज जाता है, पक जाता है, हम हाथ से टच करके देखते हैं कि अमरूद के टुकड़े अच्छी तरह से गलकर पानी में मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग कपड़े से उसको छान करके
1: मतलब पेस्ट बन जाता है,
0: नहीं पेस्ट नहीं, उसको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अमरूद को उबाल रहे हैं तो उसको चलाना नहीं है, उसमें पेस्ट नहीं बनना चाहिए, तब जो यदि पेस्ट बनेगा तो अमरूद का जो जेली बनेगा वो थोड़ा गंदा धुंधला टाइप का बनेगा। यह ध्यान रखना है कि अमरूद उसका टुकड़ा उसमें गले नहीं, टूटे नहीं, लेकिन वो पक जाए गलने लायक, उसको हाथ में निकाल करके हम ऐसे देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, लेकिन उसको बार बार चलाना नहीं है, यदि उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूटेगा तो हमारा जेली का गुणवत्ता खराब होगा, उतना धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट जेली नहीं बनेगा, है ना। और बीच बीच में हल्का सा चलाना है कि वो पेंदा में वो सटे नहीं, जले नहीं, आपका जो अमरूद है टुकड़ा है वो जले नहीं, उस तरह से उसको हल्का सा उसको चलाना है बीच बीच में।
1: जी।
0: इसके बाद अब इस टुकड़ों को हम लोग अच्छे से कपड़े से छान लेते हैं। छानने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि रस जितना देर लगे उतना

0: देर आपको अपने से लगने दीजिए रस को चूने में, उसको दबा करके रस निकालने की कोशिश नहीं कीजिए।
1: अच्छा,
0: वो जनरली से गांव में कुछ मेज है, टेबल है, टेबल को उलट दीजिए, उसका जो चारों पाया है उसमें कपड़े को बांध दीजिए और उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए और जो कपड़े को बांधे हैं उसमें आप अमृत के टुकड़े को डाल दीजिए, टप टप धीरे धीरे धीरे जूस नीचे जो बर्तन रखे उसमें गिरेगा और उसको रस को गार करके नहीं निकालना, इस बात को बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि यह भी यदि आप करेंगे तो भी आपका जेली का गुणवत्ता सही नहीं होगा, जेली थोड़ा गंदला हो जाएगा, ठीक है। और चाहे आपको जितना समय लगे उसको अपने से होने दीजिए, ठीक है। उसका जब पूरा रस निकल गया तो अब रस का मात्रा को ज्ञात कर ले, नाप लें कि कितना रस है। यदि आप उसके पेक्टिन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं। पेक्टिन का टेस्ट करने के लिए शीशे का ग्लास या परखनली लें, घर में तो शीशे का ग्लास ही रहता है, वो ले लीजिए। उसमें एक चम्मच रस लेते हैं, उन पर रस का दुगुना स्पीड डाल देते हैं। रस जब मिल जाए तो उसमें बाहर टेबल पर उड़ेल देते हैं। गिरा हुआ जो उसमें अवक्षेप देखेंगे, जो अवक्षेप बना है, यदि अवक्षेप बड़ा हो तो जूस में 900 ग्राम, यदि साधारण हो तो 700 ग्राम और टूटा फूटा पतला हो तो 400-500 ग्राम के लगभग चीनी डालते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह देखिए कि रस में अपने हाथ से लेके देखिए चटचटापन है क्या नहीं। यदि रस में चटचटापन है तो बरसाती अमरूद में, जैसे कहीं बरसात अमरूद का समय है, तो जनरली आप यह ध्यान रखिए कि 500 से 600 ग्राम चीनी हम लोग एक लीटर जूस में देंगे। यदि आपके पास यह साधन है कि यदि हम पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये इतना थोड़ा चीनी की मात्रा हम लोग 500 से 600 ग्राम डालेंगे, या नहीं तो आप अलग से पेक्टिन थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं तो आपका अमरूद का जेली सही जमेगा, ठीक है। इसके बाद आप हम लोग जो चीनी की मात्रा दे के उसको पकाते हैं, जब जूस और एक थर्मामीटर मिलता है, उस थर्मामीटर को से आप उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं। जब जूस का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुँच जाए तो उसमें हम लोग जितना चीनी है उसमें हम लोग डालते हैं, चीनी और रस डाल करके उसको उबालते हैं और 100 डिग्री पहुंच जाए, मान लीजिए नहीं थर्मामीटर है, तो जब अच्छे से वो खोलने लगे तो समझिए वो टेम्परेचर पहुंच गया है। तो 4-5 ग्राम साइट्रिक एसिड प्रति केजी के हिसाब से हम लोग जूस में मिला देते हैं। इसके बाद उसका जब टेम्परेचर 106-107 डिग्री पहुंच जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं। और यदि मान लीजिए थर्मामीटर नहीं है तो कैसे उतारेंगे, तो उसका है कि एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप जो जेली पका रही हैं उस जेली को थोड़ा डालिए। यदि वो उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके जम जाएगा और सॉफ्ट रहेगा, तो इसका मतलब वो रेडी है। यदि इससे ज़्यादा पका देंगी तो जेली जम जाएगा, कड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए उतारने का तापमान बहुत ध्यान से देना होता है कि इस तरह से हम लोग उसका चेक करें। दूसरा है कि यदि प्लेट में उसको डालेंगे तो उसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं होना चाहिए, तो भी हमारा जेली तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग जांच करेंगे कि हमारा जेली का उतारने लायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये दो पॉइंट पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम जेली का अंतिम बिंदु का कैसे जाँच करें, दूसरा कि जब जेली को चला रहे हों या फिर जब जेली का जब अमरूद का रस निकाल रहे हैं, पका रहे हैं जब उस वक्त, और रस जब निकाल रहे हैं तो उस तो उसको दबाए नहीं। ये दो चीज का जेली की गुणवत्ता को सही रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको उतार करके और जेली को स्वच्छ चौड़ी मुंह वाले बोतल के शीशे में भर देते हैं और उसके बाद उसमें मोम को पिघला करके उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका एक लेयर हो जाता है। और फिर जब मोम जमने वाला हो, देखिए जब जेली ठंडा जाए तब हम लोग मोम डालते हैं, और जब मोम जमने से पहले, मोम को पूरा जमने नहीं देंगे, मोम यदि पूरा जम गया तो साइड से छोड़ देता है, मोम को पूरा जमने के पहले उसके ढक्कन को लगा देते हैं और किसी सूखे व ठंडे जगह पर उसको हम लोग भंडारित करते हैं। इस तरह से हमारा अमरूद का जेली तैयार हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा यदि अमरूद का आप जो जेली का जो ऊपर आपका पल्प बच गया, इसका यदि कुछ आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, और एक दिन उसे छोड़ने के बाद उसको आटे के साथ, जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो, शक्तिमान मक्का हो या फिर मिश्रित आटा हो, उसके साथ जैसे आप घरों में खजूर बनाते हैं उस तरह से चीनी वगैरह या गुड़ डाल करके छान के बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत

0: प्रेम से खाते हैं और बहुत पौष्टिक भी है। इसके अलावा आपके पास यदि बेकिंग की सुविधा है तो इसके आप बिस्किट भी इसका बना सकती हैं, और यदि इसके किसी मच्छरदानी में डाल करके उसके बीज को हटा देते हैं तो उसका जो पल्प बचा उस पल्प से को आप चीनी के साथ पका करके जैम के रूप में भी बना सकते हैं, और पूरे उत्पाद को बीज सहित यदि उसको आप पीस देते हैं तो उसको भी आप चीनी या गुड़ के साथ पका करके संरक्षित करके रख सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद है, मतलब कि यदि आपके पास पशु है तो ये जो बचा है उसको आप पशु को भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसके उत्पाद बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारी महिलाओं खास तौर पर आप भी ये बना सकते हैं अपने घर पर ही। और तो आज का हमारा विषय था अमरूद का परिरक्षित उत्पाद, तो इसके बारे में आज आपने जाना। साथ ही गार्डन में बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके बताए हैं जिसे आप किसी भी फल का परिरक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं

बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना है, ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है।

0: है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी की, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।

0: लगन सखी पति संग लागे, लगन सखी पति संग लागे, लगन सखी पति संग।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेल बागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
2: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
1: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
2: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
2: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी बेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
3: प्रणाम गुरुदेव।
4: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
3: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कक्षों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
4: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
3: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
4: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
3: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
1: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
2: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान, मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शततल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
3: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। का धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
7: लयात्मक प्रस्तुति।
6: शीर्षक है
7: अभी न होगा मेरा अंत।
6: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों,

0: तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और कृषि में आज हम किसी फल या सब्जी के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के फसल के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती से आय के नए अवसर के बारे में। हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है लेकिन खेती नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर स्वप्नील भारती। मैम आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
8: मैम आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि फूलों की खेती आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है?
9: ये बहुत ही अच्छा सवाल है उमा, और सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में क्या हो गया है कि फूलों की खेती सिर्फ एक पारंपरिक कृषि गतिविधि नहीं रह गया है। अभी क्या है कि तेज़ी से ये जो फूलों का डिमांड है हमारा, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और ये उद्यमशीलता आधारित क्षेत्र बन चुका है। यदि हम कुछ वर्ष पहले की बात करते हैं तो फूलों का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ धार्मिक कार्यों या फिर पूजा पाठ या फिर घर की सजावट, इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता था, यहीं तक सीमित था हमारा फूलों का उपयोग। लेकिन अगर वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो समाज में जो हमारा है या फिर समाज में और बाज़ार में इसकी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं। अभी इसकी उपयोगिता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी फूलों की मांग हमारी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो हमारा शादी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट्स हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सब में हमें फूलों की सजावट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके साथ साथ कोई भी शादी होती है हमारे घर में या फिर कोई पूजा का समारोह हो रहा है, उस समय भी हमारा जो फूल है वो एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे ज़िंदगी का, जीवन शैली का। इसी प्रकार होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जो कट फ्लावर्स होते हैं, जो डेंटल वाले फूल होते हैं, जो ताज़े होते हैं, उनकी उपयोग से वातावरण जो है वो आकर्षक होता है, साथ ही साथ प्रीमियम लुक देता है वो होटल्स में। तो इससे क्या है कि जो वो होटल का जो भाव है वो भी बढ़ जाता है, जो कमरे का रेंट, वो सब चीज़ें भी हम फूलों की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें। इसके अलावा हाँ, साथ ही साथ जो फूल है उसका सिर्फ हम सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परफ्यूम या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं

0: उसमें भी इसका कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ फूलों की, गुलाब हो गया हमारा, रजनीगंधा है, जास्मिन है जिसे हमारे प्रदेश में चमेली के नाम से हम जानते हैं, तो इनका इत्र या फिर इनसे जो गुलाब जल बनाते हैं हम, जल या फिर इत्र, उसका उपयोग हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हम इसके साथ साथ गुलाब या फिर गुलाब हो गया, कार्नेशन हो गए, ऑर्किड हो गए, इन सब के डंठल भी हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अर्जित हो रही है और किसानों की जो आय है वो सिर्फ हमारा सीमित नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ देशी मुद्रा के लिए, वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसानों की जो आय है वो भी हमारी वृद्धि हो रही है। तो इसी बढ़ती मांग को अगर देखा जाए तो किसान को जो पारंपरिक फसलें हैं हमारी उसके तुलना में अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो वो आपको अधिक लाभ दे रहा है, क्योंकि ये कम समय में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और साल भर आप खेती कर सकते हैं। आप बार बार फूल तोड़ सकते हैं, 4-6 महीने में ही आपने कितनी बार डंठल तोड़े, कितनी बार आपने फूल तोड़े, तो इस वजह से जो है हमारा डिमांड जो है, जो मार्केट में जो उपलब्धता है फूलों की, हमेशा बरकरार रह रही है और हमारे किसान इसे अच्छा अर्जित कर रहे हैं, अच्छी कमाई उनकी हो रही है।
1: तो मैम, हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन कौन से फूलों की ऐसी किस्में हैं जो सबसे अधिक लाभदायक मानी जाती
0: हैं? ये सबसे ज़रूरी है हमारे किसी भी प्रकार की जब हम खेती करते हैं किसान भाई, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में हम कौन सा कहाँ पर ये अनुकूल है, कौन सा ताप, ये एरिया जो है हमारा, वो बिहार प्रदेश जो है हमारा, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हैं। तो इसमें आप कम लागत में, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे जो प्रमुख हमारा जो फसल है, जो सबसे प्रमुख जो फूल है वो है गेंदा, जिसकी मांग जो है वो हमारी पूरे वर्ष किसान भाई बनी रहती है, चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, सजावट हो, किसी भी चीज़ों में हमारा गेंदा जो है वो हमेशा उसकी मांग बनी रहती है। इसको लगाना भी, और सबसे है कि ये तीनों सीज़न में, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये तीनों सीज़न में हमें इसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसे प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो है वो है गुलाब। गुलाब भी बहुत अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका जो कट फ्लावर है वो हमारा ईस्टर में, क्रिसमस में, मदर्स डे में या फिर न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में, इन सब समय में हमारा कट फ्लावर जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे साल कोई ना कोई फंक्शंस, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, या फिर शादियों का समारोह चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उन सब में भी हमें कट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका डिमांड हमको पूरे साल मिलती रहता है। गुलाब में ही आपको जो देसी गुलाब है उसकी भी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे गुलाब जल बना सकते हैं, या फिर आप उसे एक पंखुड़ी बना सकते हैं, फिर आप उसको मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं, उसका फिर रोज शरबत बना सकते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये फसल भी। एक बार आप इस फसल को लगाएंगे और आपको 7 वर्षों तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी जो फसल है किसान भाई वो है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस साल में एक बार आप लगा सकते हैं, सितंबर माह से हम लगाना उसको शुरू करते हैं, लेकिन आप 6 से 8 महीनों तक इसके स्पाइक को काट के बेच करके आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आपका आता है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी एक बहुत प्रमुख फसल है और इसकी खेती बहुत ही आसान होती है। इसे आपने एक बार लगाने के बाद में आप 3 वर्षों तक इसमें फूल ले सकते हैं, जिसमें आप कट के फ्लावर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लूज़ में, यानी खुले यानी ढीले फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत माला बनता है शादियों में, जो हमारे वरमाले होते हैं वो भी होता है, वो आप बना करके इसको बेच सकते हैं, या फिर भगवान को अर्पित करने के लिए भी फूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये है। उसके अतिरिक्त रजनीगंधा और ग्लैडियोलस में 2 प्रमुख चीज़ें हैं, जो कि है कौर्म और इसका कंद। उसे भी आप बेच करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत प्रमुख फसल, एक ऑर्किड है, जरबेरा है। इन दोनों की खेती हम पॉली हाउस में करते हैं और ये, और ताकि पॉली हाउस में करके और फिर इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्लावर होता है, जो फूलों की गुणवत्ता होती है, वो पॉली हाउस में बहुत अच्छी रहती है, तो इसी वजह से हम इनकी खेती पॉली हाउस में करते हैं और फिर हम इसे बाज़ार में बेचते हैं, जो कि सजावट के रूप में काफ़ी काम आता है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्किड एक ऐसा फूल

0: है जिसकी जो वास लाइफ, यानी जो आप उसको रखते हैं या फिर उसको आप कहीं सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम वो 10 से 15 दिनों तक वो फूल बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब फूलों की खेती आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो मैम, क्या छोटे और सीमांत किसान भी फूलों की खेती इस

0: आप उसमें खेती करके आराम से अच्छा अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसान भाइयों के पास, हमारे क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर भूमि नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 1 से 2 बीघा भी ज़मीन है, उसमें भी आप गेंदा या रजनीगंधा जो मैंने आपको बताया, अगर उन फसलों की आप खेती करते हैं, तो जो आप पारंपरिक खेती जो आप कर रहे हैं दलहन का, तिलहन का, गेहूं, ये सब चीज़ों का, उसकी तुलना में हमारे किसान भाई आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण, सबसे ज़रूरी जो कारण है वो ये है कि इन फूलों की अगर हम तुलना करें किसी भी प्रकार की फसलों से, तो इनका जो डिमांड है, इनकी जो बाज़ार में मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मूल्य बहुत बेहतर होता है। और अगर हम सीज़न से अतिरिक्त, अगर हम किसी सीज़न से अतिरिक्त इसको हम उगा पा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छा भाव आपको बाज़ार में मिलता है। साथ ही साथ इसकी तुड़ाई, कोई फसल जब हमारा होता है जैसे दलहन या तिलहन, उसकी तुड़ाई हम एक ही बार कर पाते हैं, किंतु इन फूलों की खेती में क्या है, आप जितना उनकी तुड़ाई करेंगे आपको उतने फूल आपको प्राप्त होते जाते हैं। तो इनकी तुड़ाई आप बार बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, 3 से 4 कटाई तो आप कर ही लेंगे। तो इसकी वजह से आपको नियमित आय भी मिलते रहता है। आपको आय सिर्फ एक बार नहीं डिपेंड होना पड़ता है, आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके अलावा हम पॉली हाउस या फिर नेट हाउस के उपयोग से भी किसान हमारे जो हैं वो नियंत्रित वातावरण में, जो कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप उच्च गुणवत्ता वाले फूल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इससे मौसम जो है वो निर्भर नहीं, मौसम पे कम निर्भर करेगा हमारा फूल का जो है, और उससे आप ऑफ सीज़न जब हम उसको उगाते हैं तो आपको कीमत बहुत अच्छी मिलती है मार्केट में।
1: तो मैम, फूलों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ जी उमा, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है कि मिट्टी और जलवायु, क्योंकि मिट्टी और जलवायु का अगर वो सही चयन कर रहे हैं, तभी हमारे जो कोई भी फूल है या फिर कोई भी फूलों की फसल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस ज़मीन में। क्योंकि क्या है कि हर फूलों का जो है, हर फूल हर फसल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी को सैंडी मिट्टी, सैंडी लोम जो बोलते हैं हम, उस वो मिट्टी चाहिए, किसी को क्ले मिट्टी चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो प्रदेश है उसमें हमारी जो मिट्टी है, जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती है ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें अगर हम फूलों की खेती किसान भाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले आपको फूल प्राप्त होंगे। उससे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपके जो बीज होंगे वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही बीज होने चाहिए, या फिर बीज नहीं तो अगर आप पौधे खरीद कर ला रहे हैं मार्केट से, तो वो जो पौधा भी है उसका, वो पौधा काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब भी हम बीज या फिर पौधा लेकर आते हैं, तो एक प्रिकॉशनरी के तौर पर हम किसान भाई क्या करेंगे कि उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे कोई भी फफूंद नाशक। वैसे तो जो हम बीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो बैवेस्टीन या फिर थायरम के साथ में वो ट्रीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको एक सेफ साइड पे रहना है, तो हम पौधों को, उसके जड़ को या फिर बीज जो है उसको हम, या फिर कंद होता है हमारा, कंद बल्ब कुछ भी, जो भी हमारी जो सीड प्लांटिंग मटेरियल है, उनको हम कोई भी फफूंद नाशक के साथ में आधे घंटे तक उसमें घोल बनाकर रखते हैं। उसके बाद उसको छाया में सुखाने के बाद तभी आप इसे खेत में लगाएं, तो ये बहुत अच्छा आपका प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा, जैसे कि जो भी मिट्टी से जनित आपकी बीमारी होगी वो पौधों में आपकी नहीं लगती हैं। साथ ही आपको सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ताकि जो आपके पौधे हैं उनकी जो, उनका जो विकास है, उनकी जो वृद्धि है वो संतुलित रहे और फूलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती रहे। इसके अलावा जो आपकी एक सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाज़ार में मांग, बाज़ार में मांग और मूल्य, ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। उसी के तहत हमारी कौन सी चीज़ किस एरिया में, हमारी कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसी के बेसिस पर उसी पर्टिकुलर क्रॉप का, उसी पर्टिकुलर फसल का खेती चयन करना चाहिए करने के लिए। उसके अलावा जो है सबसे, जो लास्ट में, अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कटाई के बाद जो प्रबंधन, वो कैसे करेंगे, उसमें पैकिंग आपको करनी होती है। कटाई के बाद हम कोई भी फूल को तुरंत पानी में डालते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे दूर मार्केट में भेज रहे हैं तो आपके पास परिवहन, उसके आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए उसे दूर मार्केट में भेजने के लिए। उसके बाद तुराई का समय आपको बहुत विशेष रूप से

0: ध्यान रखना है कि कब तुराई करें। अगर आपको बहुत दूर मार्केट में भेजना है तो आप कोशिश करें कि रात में ही, शाम में ढलते ही तुराई कर ले, ताकि रातों रात आपका फूल चला जाए मार्केट में और सुबह होते ही आपकी फूल बिक्री के लिए शुरू हो जाए। अगर आप लोकल मार्केट में उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप अपनी तुराई कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसे स्थानीय मार्केट में भेज करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम, फूलों की खेती से जुड़े जो नए अवसर हैं वो कौन कौन से हैं?
0: हाँ, ये जो एक किसान भाई हमारा, जो एक सेक्टर है वो थोड़ा पीछे रह गया है, जिसके बारे में जानकारी जो है वो अब नहीं है। सिर्फ फूलों की खेती जो है वो सिर्फ फूलों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है। हमारा जो फ्लोरिकल्चर का जो क्षेत्र है वो अब आय के कई नए, आय के यानी कि जो हमारा कमाने का बहुत अच्छा अब नवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी से पैदा कर रहा है। और हमारे किसान और युवाओं इस चीज़ की थोड़ी उन्हें कम जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कट फ्लावर का इंडस्ट्री। कट फ्लावर यानी कि हमारा डंठल वाली जो फूल होते हैं, उस फूलों की आवश्यकता महानगरों में, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा मांग है उनकी। अब सब महानगरों के अलावा भी अब छोटे छोटे शहरों में भी धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलों की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसी भी फंक्शन में कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, शादी हो, गाड़ियों को ही सजावट करना हो क्योंकि शादियों में, तो उस समय अब क्या है कि लोगों को देखने के लिए, लोगों की आँखों को वो अच्छा लगना चाहिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे कट फूलों की आवश्यकता जो है वो बढ़ते जा रही है। दूसरा जो हमारा लूज फ्लावर होता है, किसान भाई, लूज फ्लावर मतलब कि जो खुले फूल होते हैं, जैसे कि हमारी ये गेंदे की, तो गेंदे का माला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक्री होता है, तो गेंदे का माला या फिर गुलाब के माले शादियों के लिए, भगवान पे चढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी त्यौहार, किसी भी समाव, किसी भी पूजे वाले कार्यक्रम में सजावट के लिए हमारा इन खुले फूलों का काफ़ी डिमांड है। तो ये दो चीज़ों की तो सब लोगों को आइडिया है कि हाँ, कट फ्लावर भी होता है, क्लूज भी होता है। पर तीसरा हमारा आता है वैल्यू एडिशन, जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही इसमें ये सबसे अच्छा आय का स्रोत है, और विशेष करके हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं जब खेत से फूल कट जाते हैं उसके बाद, उसमें वैल्यू एडिशन का यही मतलब हो गया, जब हमने तुराई कर लिया उसके बाद हम उस फूल में क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे गुलाब है तो गुलाब जल, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में आप उसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चाहे तो ड्राई करके ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि मेहंदी में, शादियों में मेहंदी में, या फिर संगीत में, या फिर हल्दियों में, हल्दी के कार्यक्रम में आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ों, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती हैं। फिर चौथा जो हमारा सेक्टर है, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी पार्क हो गया, या फिर होटल हो गया, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री भी होते हैं, या फिर सरकारी या फिर बहुत सारी जैसे हमारी परियोजनाएं हैं CPWD की, NTPC की, या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उन सबको अब सजावट चाहिए, सबको ग्रीनरी चाहिए। तो ये ग्रीनरी कैसे आएगा? ये ग्रीनरी आएगा आपका लैंडस्केपिंग करने से। तो लैंडस्केपिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिसमें हम सजावट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इनकम का। इसमें आप छोटे से एरिया को भी अगर आप सजावट करते हैं, उसका लॉन बिछाते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं। फिर एक आता है ऑनलाइन डिलीवरी का प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन डिलीवरी में फर्न्स एंड पेटल्स बोल करके भी एक है, जो कि पौधों को भेजता है, लोग गिफ्ट ऑर्डर करते हैं, लोग पौधे, अभी फ्लिपकार्ट में हो गया, सब जगह अभी जितने भी हमारे ऑनलाइन डिलीवरीज है, तो आप चाहें तो आप अपना एक अलग से भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग से भी पौधे सप्लाई कर रहे हैं, सीड सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, तो एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी हमारा बहुत अच्छा आय का स्रोत है। और सबसे लास्ट में जो है वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, अगर हमारी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता आ रही है, तो हम एक्सपोर्ट करके और हम उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम मतलब ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है, जिनके पास खास तौर से छोटे ज़मीन है, छोटा छोटी जगह है, वो फूलों की खेती से बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जिनके पास भी छोटा जगह हो, कम भूमि हो, आप छोटे मोटे फूल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें नहीं लेनी।

0: है, हमारा गेंदा हो गया, आप गेंदे से शुरुआत कर सकते हैं, आप रजनीगंधा से शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की हो रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कम कम जिसके जिसमें लागत भी आपकी ज़्यादा ना लगे वैसे फूल लेकर के आप ये व्यवसाय जो है वो शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
1: तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी ये वार्ता आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है। बस ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से डिमांड को समझें, बाज़ार को समझें और खेती शुरू करें। मैम बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें बताई।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का भी।
1: तो दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं बांका में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अनुमान है कि आगे वर्षा की संभावना

ना है। ऐसे में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान की किस्मों जैसे भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई करें। किसान भाई बहन ध्यान दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बना ले और वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। खरीफ मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी जरूर करें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन जरूर डालें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की 12x12 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। और ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में हर वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि ये समय केला की खेती करने का है, इसलिए स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 तथा बॉनी किस्मों जैसे कि ग्रैंड, नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन को बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गलघोंटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण किसी पशु में दिखाई दे तो उसे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। और ध्यान दें कि गलाघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर आपने जून महीने में अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें और पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन

0: नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय खेड़ा,
3: जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 36 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव रखते हैं। वर्तमान में डॉक्टर खेड़ा एनजेंडर हेल्थ नई दिल्ली में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने देश में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर खेड़ा ने नई दिल्ली विश्वविद्यालय से MBBS और MD की डिग्री प्राप्त की है, साथ ही गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में डिप्लोमा भी किया है। भारत के अलावा उन्होंने ओमान और म्यांमार में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कार्य किया है। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने अनुभव को साझा करने के लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाइए कि HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है और ये महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर की कैसे वजह बन सकता है।
4: थैंक यू वेरी मच यू नो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि HPV जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जैसे हमारे मालूम है कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से एक वायरस होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की ये खास बात है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको नजला जुकाम कहते हैं, कुछ वायरसेस आपके आंख में इन्फेक्शन करते हैं। तो ये जो वायरस है जिसका नाम HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। और इसकी जो वजह है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, इसका भी जो ट्रांसमिशन भी होता है ये थ्रू सेक्सुअल रूट होता है। तो इतना ही जानना काफी है कि एक तरह का ये वायरस है। और जैसे बाकी वायरसेस होते हैं जुकाम खांसी के, डायरिया के, आंख में इन्फेक्शन के, स्किन में इन्फेक्शन के, तो ये भी एक तरह का वायरस है। पर इसकी खास बात यह है कि आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अटैक करता है।
3: सर, आजकल HPV वैक्सीन की काफी चर्चा हो रही है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये टीका लड़कियों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
4: ये इसलिए लड़कियों में बहुत जरूरी माना जाता है। वैसे तो इस HPV वैक्सीन को हम लड़कों में भी दे सकते हैं, लड़कियों में भी दे सकते हैं, पर जो हमारी जो साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि ये जो HPV इन्फेक्शन होता है, यदि लड़कियों में ये बना रहता है इन्फेक्शन, तो उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लड़कों में यदि HPV इन्फेक्शन होगा तो उनको वॉट्स वगैरह होते हैं, पर लड़कियों में क्योंकि उनकी सर्विक्स होता है, उनका बच्चेदानी होती है, सर्विक्स को आम भाषा के लिए बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, तो ये एक तरह का बच्चेदानी का कैंसर है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये स्टडीज बताती हैं कि यदि HPV इन्फेक्शन हो गया है आपको, तो आपको काफी पॉसिबिलिटी है सर्वाइकल कैंसर होने की। और ये सर्वाइकल कैंसर एकदम नहीं होता, इसको कुछ समय लगता है, 8 से 10 साल इन्फेक्शन रहेगा, कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहेगा, तो उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना रहती है। क्योंकि ये भी माना गया है साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से कि 70 से 80% केसेस में जो इन्फेक्शन होता है वो अपने आप डिसअपियर भी हो जाता है, सिर्फ 10 से 20% लोगों में वो इन्फेक्शन बरकरार रहता है, और जिससे प्री कैंसरस लीजन बन जाते हैं और सर्वाइकल कैंसर बन जाते हैं।
3: तो सर, आपकी नजरों में लड़कियों को ये वैक्सीन किस उम्र में लगवानी चाहिए, मतलब आइडियली किस उम्र में लगवानी चाहिए, और उसी उम्र में लगवाना ज्यादा फायदेमंद क्यों रहता है?
4: आइडली तो देखो, जब भी आपका सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं हमारे देश के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी 10 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि 10 या 11 साल की उम्र में लग जाना चाहिए इंजेक्शन। पर जैसे अभी सरकार ने बोला है कि हम सब

0: 14 साल की लड़कियों को लगाएंगे तो वो भी ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत वेरिएशंस है ना सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, तो एक एवरेज जो है 10 से 14 साल की जो उम्र है वो बहुत ही राइट एज है, जहां पर एचपीवी वैक्सीन लगाने से आपको सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
1: और अगर सर हम आगे लगाएं जैसे मतलब 20 की उम्र के बाद, तो क्या इसका असर कम होता है, ऐसा कुछ है, या हम तभी भी लगवा सकते हैं?
0: नहीं, इसको आप बाद में भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर यही है क्योंकि आपको इन्फेक्शन यदि आपको 12 साल की उम्र में हुआ है और वो वायरस पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो फिर उसका जो असर होगा वैक्सीन का असर नहीं होगा। पर यदि आपका एचपीवी का एक्सपोजर ही 20 साल की उम्र में हो रहा है और आपने 19 साल में लगा लिया है तो आप बच जाएंगे। तो कहने का
1: जी
0: मतलब ये एचपीवी इन्फेक्शन को बचाने का तरीका है, प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीनेशन।
1: तो सर, जैसे हमारा ये इंटरव्यू हम गांव दराज में ब्रॉडकास्ट करेंगे और वहां के कम्युनिटी में ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगा, तो वहां पे अगर हम सर देखें तो माता पिता काफी झिझक महसूस करते हैं कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए, चाहे हम अभी कोविड का देख लें या अभी हम कोई भी केस देख लें, तो काफी झिझक महसूस करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, सब लोग हमारे श्रोताओं को, कि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, वो लगवा सकते हैं? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये ना वैसे मैं एक ब्रॉडली एक मैसेज देना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में और आपको बताना भी चाहूंगा कि अब कुछ सालों से हमारे देश में वैक्सीनेशन के बारे में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों की वैक्सीन एक बहुत ही आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का। जैसे आज के दिन जो बच्चों के टीके हैं हमारे देश में, 100 में से 75 बच्चों में टीके लग रहे हैं पूरे, जो आज से 20 साल पहले सिर्फ 40% बच्चों में लगते थे। तो कहने का मतलब लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, लोग ये जान रहे हैं कि वैक्सीन एक बहुत आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का, और जो भी बीमारियां यदि हम बचा सकते हैं टीकाकरण से उसको बचाना चाहिए। उसी संदर्भ में यदि हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को यदि आप बचाना चाहते हैं तो एचपीवी वैक्सीनेशन एक बहुत ही आसान तरीका है। इसका टीका लगवाने से आपको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा, जो वैक्सीन आजकल बन रहे हैं वो सब वैक्सीन बहुत ही सेफ बन रहे हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी सेफ। और दूसरा जो है, जो सरकार दे रही है वैक्सीन, उसमें काफी ध्यान दिया जा रहा है क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बन के आ जाता है, उसकी क्वालिटी का बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्शन होता है और उसकी कोल्ड चेन वगैरह मेंटेन होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो एचपीवी वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है देश में, ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होता है और ये बिल्कुल सेफ है।
1: सर, जब हम इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि काफी अफवाह और गलत फहमियां जो हैं लोगों में सुनने को मिलती हैं, तो आप ऐसे कौन से भ्रम होंगे जो जिनको आप क्लियर करना चाहेंगे, लोगों के बीच में साफ करना चाहेंगे?
0: देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंस से, काम करने से इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के एरिया में। मैं कोई 10 साल तक मैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखता रहा भारत देश में, तो अक्सर ये देखा गया है कि जैसे बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम, लूज मोशन होते हैं और जैसे उसे एक दिन पहले टीका लगता है तो लोगों को ये टेंडेंसी होती है कि उस बुखार, खांसी, जुकाम को या लूज मोशन को उससे लिंक करने की, कि हमने कल टीका लगवाया था इसीलिए मुझे खांसी हो गई। पर अदरवाइज भी तो बच्चों को खांसी हो जाती है, अदरवाइज भी बच्चों को बुखार हो जाता है। तो इस तरह के जो दिमाग में आपके जो वहम होते हैं कि हमको ये बुखार हो गया, हमको खांसी हो गई, उसका कोई टीके से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि इस टीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कुछ टीके, जैसे हम बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस का जो टीका लगाते हैं बच्चों में, उसका हमें मालूम है कि उसको लगाने के बाद बुखार आता है, पर एचपीवी वैक्सीन के बाद तो बुखार भी नहीं आता है कुछ। तो ये बिल्कुल सेफ है। और बाकी इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी दर्द हो सकती है और वो भी सबको नहीं होती, किसी को दर्द हो सकती है और वो भी हर एक का अपना अपना एक इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स होता है। कई लोगों को सुई देख के ही डर लग जाता है, कई लोगों को सुई लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। तो थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, बट फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही सेफ इंजेक्शन है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब एक्सेप्शनल केसेस में तो कोई भी चीज किसी को रिएक्शन कर सकती है ना, मतलब
1: जी
0: एक में से करोड़ों में से एक बच्चे को कोई चीज रिएक्शन कर सकती है। अब किसी को तो कोई खाने की आइटम भी खाते हैं उससे भी रिएक्शन हो जाता है, तो वो
1: बिल्कुल
0: एक्सेप्शन वाली बात है। पर यदि ऐसा होता भी है तो उसके लिए, क्योंकि अभी जो इंजेक्शन है आपका ये हॉस्पिटलों में लग रहा है, तो आपका पूरा यदि कोई रिएक्शन होता है किसी को तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है। तो इसमें

0: रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। पर यदि कोई वन इन मिलियन, वन इन करोड़, यदि कोई पॉसिबिलिटी किसी को रिएक्शन किसी चीज से होता है या इंजेक्शन के डर से एकदम रिएक्शन हो जाता है, तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है हॉस्पिटल।
1: तो सर, एक कम्युनिटी में एक जो बहुत मिथ है वो ये है कि ये वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन लगवाने से बांझपन हो सकता है। आप क्या कहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है?
0: नहीं, कोई भी जितने भी साइंटिफिक एविडेंस हैं उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ एचपीवी की बीमारी को बचाता है। इसका बांझपन से बिल्कुल भी कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक तो कोई ताल्लुकात नहीं है इसका।
1: ये बहुत जरूरी था क्लियर करना, क्योंकि अभी हम कम्युनिटी में देखते हैं तो बहुत ज्यादा झिझक इन्हीं कारणों से रहती है कि क्या पता आगे बच्चा ना हो, बांझपन हो जाए। तो धन्यवाद, आपने इसको क्लियर किया। तो पर सर, अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो अगर कम्युनिटी में, गांव दराज में इसको लोग लगा सकते हैं, ये कौन से ये सर ये वैक्सीन, और लोग कहाँ जाके इसको लगवा सकते हैं?
0: एक एक तो बड़ी खुशी की ये बात है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एचपीवी वैक्सीनेशन मुफ्त कर दिया है हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत ही महंगा इंजेक्शन है। ये प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में हैं वहां पर इस इंजेक्शन की जो कीमत है वो 2,000 रुपया है एक इंजेक्शन। पहले ये इंजेक्शन सिर्फ जो जिन लोगों के पास पैसे थे सिर्फ वही लोग लगवाते थे, आम आदमी एचपीवी वैक्सीन नहीं लगाता था। अब क्योंकि सरकार ने सोचा कि ये एक बीमारी को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, तब उन्होंने जितने भी सरकारी हमारी फैसिलिटीज हैं, चाहे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हों, आयुष्मान मंदिर जिसको हम आजकल कहते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, अर्बन हेल्थ सेंटर्स हो, सब मेडिकल कॉलेजेस, इन सब जगह में अभी एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है और आप वहां पर जा सकते हैं। और 14 साल की लड़कियों को अभी टारगेट किया जा रहा है, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की संभव ज्यादा होती है, तो इसीलिए सरकार सब 14 साल की लड़कियों को ये टीका मुफ्त मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि आप इसकी जो फैसिलिटी अवेलेबल है इसको आप अवेल करें।
1: ये तो काफी अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि गांव दराज में अभी भी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2,000 का वो वैक्सीन लगवा पाए। तो सर, इसका डोज कितना लगाना होता है? एक ही डोज इसका चाहिए होता है या और भी डोज चाहिए होते हैं इसके?
0: देखो, पहले जो वैक्सीन अवेलेबल था आज से 5 साल पहले, तब इसका 2 डोज 3 डोज लगाई जाती, पर अब नया जो वैक्सीन आया है, जो नई रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से एक वैक्सीन की डोज भी काफी है। तो अभी सिंगल वैक्सीन डोज दी जा रही है, एक वैक्सीन से आप सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं, इतना आसान तरीका है ये।
1: सर, वैक्सीन पर हम महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर के बचाव की बात करें, तो महिला मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कदम उठा सकती हैं कि थोड़ा वो सेफ रहे, सेफ साइड पे रहे फॉरएवर?
0: तो उसके लिए ना एक तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली जैसे बताया कि आप एचपीवी वैक्सीन लगा लिया आपने, तो एचपीवी वैक्सीन से आपकी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि जो जो औरतें अपना सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलो या ओवरऑल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें भी ये कैंसर की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए अपनी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें और उस समय जब पीरियड्स आते हैं पूरा सफाई का ध्यान रखें। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात है, यदि आप सर्वाइकल कैंसर को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग होती है जिसको रिकमेंड करते हैं कि हर 35 ईयर्स के एज के बाद आपको दो दो बार अपनी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करनी है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में एक पैप स्मियर लिया जाता है, ये मालूम पड़ जाता है कि आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर में, सर्वाइकल एरिया में कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहा। तो यदि आप उस लीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसका इलाज भी तुरंत हो सकता है और आपको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को वहां भी खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब सर्वाइकल कैंसर को तरीके हैं। सबसे पहले यदि आप टीका नहीं लगवा पाए किसी वजह से, अवेलेबल नहीं था, और 35 की एज है आपकी, तो 35 की एज के बाद दो बार अपने को सर्वाइकल के लिए, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए नजदीक के हॉस्पिटल में जाओ, तो वहां पर वो स्क्रीनिंग भी बिल्कुल मुफ्त होती है और वो आगे सर्विक्स का और उससे बता, वहां कुछ दाना या यदि कोई दाग मिलेगा तो उसका

0: इलाज भी हो जाता है।
1: सर आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम चाहते हैं कि जाते जाते आप अपने हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें, ताकि माता पिता हैं वो इन सब चीजों को लेके ज्यादा अवेयर हो और ये सब ये अब सही फैसला ले सकें।
0: मेरा तो एक ही मैसेज होगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले ये जो टीका था सिर्फ जिनके पास पैसे थे वो लगाते थे, क्योंकि बहुत महंगा था। अभी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा कि अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पर इस जो फ्री सुविधा है इसको अवेल करें और अपने को कैंसर से मुक्त रखें।
1: थैंक यू सो मच सर, हमारे श्रोताओं के सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें इतने इनसाइट्स दिए। थैंक यू सर।
0: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: मतलब धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखाड़ पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम

0: कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति है तो यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यूं कहें यह मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, यह भी हम कह सकते हैं।
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है, और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, और जिसे हम बड़ी आसानी से इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में किसी कोने में एक झोपड़ी बनाकर इसकी खेती बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और इसलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व पाया जाता है। इसलिए इसका यदि हमारे हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण से मुक्त रहेंगे।
0: तो ये तो आपने बताया मैम कि कुपोषित अगर बच्चे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जो उनके कुपोषण को दूर करेगा, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हुए, जो जवान लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कुपोषित नहीं हैं, तो उनके लिए क्या उपयोगिता है इसकी?
1: मशरूम की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ कुपोषण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, वैसे कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, कल कारखाने चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है। घटती हुई कृषि योग्य भूमि से हमें बढ़ती हुई आबादी के लिए उम्दा किस्म का खाद्य पदार्थ चाहिए, तो इसके लिए मशरूम काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि मशरूम ऐसी खेती है जो कि खेती बिना खेत की होती है। इसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी बंजर भूमि पर भी यदि हम एक झोपड़ी बना देते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर जगह होता है, मतलब छत और ज़मीन के बीच का जो जगह होता है, उस जगह का उपयोग करके इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम यदि भूमि नहीं भी है तो भी हम इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ रोजगार का अवसर घट रहा है, तो ऐसे मशरूम एक स्वरोजगार का उत्तम साधन हो सकता है। इसके अलावा जिसे हम देखते हैं कि हमारे युवाओं का कृषि के प्रति रुझान घटता जा रहा है, क्योंकि वो कृषि का मतलब समझते हैं कि जेठ के धूप में कृषि में काम करना, सावन के मूसलाधार बारिश में खेती में काम करना और पूस की ठंड में खेती में काम करना, लेकिन इस सारी तथ्यों को मशरूम खेती में हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति में एक्सपोज होकर खेती नहीं करना है, बल्कि किसी कमरे के अंदर मौसम की मार से बचते हुए खेती